नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 10वीं तारीख, तदनुसार 1 अगस्त 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: بقية.
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो

0: ही मेरा सपना है।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे। यहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा। स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीव इन करेगी ओलंपिक पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीव इन करेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बात कर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। कल सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेता प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और जनधन संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। संशोधित निर्णय के अंतर्गत 15 अगस्त तक पिंक टिकट जारी किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब तक कुल 23 पदक हो गए हैं जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। विविध भारती के कार्यक्रम इंटरनेट स्ट्रीमिंग, डीटीएच और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर पर उपलब्ध हैं। इन सभी साधनों के जरिए आप विविध भारती के कार्यक्रम 24 घंटे और दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं।
4: ये है विविध भारती।
3: आइए सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

0: पहले सुनते हैं आज का चिंतन।
1: मुंशी प्रेमचंद का कथन, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना ठीक नहीं, बिछा सको तो फूल बिछाओ, शूल बिछाना ठीक नहीं। भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। झरोखा सुनिए विविध भारती से आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लिखा जोखा। अब से कुछ देर बाद सुबह 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान, आज भाग 267। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से शुरू हो रही है एक नई श्रृंखला वर्षा चौमासा। कलाकार हैं गायिका शुभा मुद्गल। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर आप सुन सकते हैं संगीत सरिता कार्यक्रम। सुबह 7 भूले बिसरे की 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। 8 समाचार प्रभात, 8:15 पर त्रिवेणी कार्यक्रम दोबारा दिन में 2 सुना जा सकता है। सुबह 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम होगा। सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित है अभिनेत्री मीना कुमारी पर।

सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी। आज की कहानी है मिसमैच, लेखिका डॉक्टर जया आनंद। 11:30 पर मैटिनी शो कार्यक्रम होगा। जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर पद्मश्री सुशील दोषी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग सुनवाया जाएगा। प्रस्तुति थी श्री कांबले। 12:05 पर यादों की महफिल, दिन में 1 बजे सुरीला सफर। 2:30 पर सदाबहार नगमे कार्यक्रम होगा। 3 बजे मनचाहे गीत। 3:30 पर नाट्य तरंग कार्यक्रम होगा। आज नाटक सुनवाया जाएगा विवाह का प्रस्ताव। मूल रूसी कहानी एंटोन चेखव की, रूपांतरकार उग्रसेन, निर्देशक मधुप शर्मा। बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत शाम 4 बजे फिल्म संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। शाम 5 बजे छाया गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन। 6:45 पर जो संगीत सरिता कार्यक्रम प्रसारित होता है उसका पुनः प्रसारण होता है शाम 6:45 पर। वर्षा चौमासा श्रृंखला की पहली कड़ी सुनिएगा शाम 6:45 पर। कलाकार हैं गायिका शुभा मुद्गल, संगीतकार जयदेव द्वारा प्रस्तुत जयमाला कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 7 बजे। 7:45 पर ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा। पिसनहारी का कुआं, सुनो कहानी श्रृंखला में आज इस कहानी का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा हवा महल के अंतर्गत रात 8 बजे। वाचन अमरकांत दुबे, प्रस्तुति हर्षवर्धन कवई। 8:15 पर चित्रलोक। 9 बजे आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम होगा और ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता भगवान दादा पर। रात 10 बजे छाया गीत। 10:30 पर ढलती जाए रात। रात 11 बजे मैटिनी शो में क्रिकेट कमेंटेटर पद्मश्री सुशील दोषी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। प्रस्तुति थी श्री कांबले की। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। और अब आपको सुनवाते हैं रामचरितमानस गान, आज भाग 267।

पवन पुत्र हनुमान सुग्रीव के गुप्तचर के रूप में श्री राम लक्ष्मण के पास गए थे, किंतु उन्हें अपने इष्ट देव को पहचानने में तनिक भी देर नहीं लगी। सीता हरण की घटना सुनकर वे तुरंत श्री राम लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले आए, जिनकी असंख्य वानर सेना के लिए जगत जननी सीता को ढूंढ लेना असंभव नहीं। सुग्रीव ने विलाप करती परवश सीता को आकाश मार्ग से जाते देखा था। हाराम हाराम कहकर रोती बिलखती सीता का एक वस्त्र वहां गिरा था। श्रीराम को धीरज बंधाते हुए सुग्रीव ने वह वस्त्र खंड उन्हें सौंप दिया। इस प्रकार उन्हें श्रीराम के विश्वास और मैत्री का गौरव प्राप्त हुआ। जब श्रीराम ने सुग्रीव से उनके वन में निवास करने का कारण पूछा तो उन्होंने

व्यथा कथा सुनाई। अत्यंत स्नेही भाई बाली उनका शत्रु बन बैठा। उसने न केवल उनका राज्य बल्कि पत्नी तक छीन ली। यह सब उस मायावी राक्षस के कारण हुआ जिसका पीछा करते बाली ने यह कहकर गुफा में प्रवेश किया कि यदि वह राक्षस का वध करके 15 दिनों में लौट कर ना आवे तो उन्हें मृत मार लिया जाए। सुग्रीव ने पूरे 1 माह तक भाई की प्रतीक्षा की और गुफा से बाहर आती लहू की धार देखकर यह मान लिया कि बाली की हत्या हो गई।

0: संगीत सरिता के श्रोताओ नमस्कार। आज से हम एक श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं जिसका शीर्षक है वर्षा चौमासा। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल। शुभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए।
0: शुभा जी आपका तो हम सभी, मैं व्यक्तिगत रूप से, विविध भारती परिवार की ओर से और विविध भारती के अनगिनत श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये जो श्रृंखला हम आरंभ कर रहे हैं वर्षा चौमासा, तो इसकी भूमिका में तो मैं अगर ज्यादा बोलूं तो अच्छा नहीं रहेगा, आप ही कुछ समझाएं बताएं कि आपके मन में क्या क्या सारी बातें हैं, हम कड़ी दर कड़ी बातचीत करते जाएंगे।
1: पहले तो ये बात आपको याद दिला दूं कि उत्तर भारतीय संगीत का और उत्तर भारतीय संगीत के जो विभिन्न प्रकार हैं, चाहे वो शास्त्रीय हों या उपशास्त्रीय हों या लोक संगीत हो, सभी का ऋतु से सघन संबंध रहा है, ये सत्य है।

0: जो कि सर्वविदित है, सर्वमान्य है, तो इसे बार बार दोहराने की कोई आवश्यकता भी नहीं। और जो वर्षा का एक आप कह सकते हैं विशेष स्नेह रहा है संगीत के साथ, उसके बारे में भी सबको पता ही है। बल्कि मजे की बात यह है कि बारिश ना हो सामान्य जीवन में या कम हो तो अकाल का डर
1: तो
0: पड़ जाता है,
1: आंखों से शुरू हो जाती
0: नहीं
1: है।
0: अकाल का डर हो जाता है, यदि ज्यादा हो जाए तो बाढ़ का कहर ढा सकता है। लेकिन जो रचनात्मक लोग हैं, जो कलाकार हैं, जो कि कलाकृति करते हैं, उनके लिए बारिश हो ना हो, कम हो, बूंदाबांदी हो, मूसलाधार हो, वो उसके बारे में लिखते हैं, उसे संगीत में ढालते हैं और अलग अलग प्रकार का साहित्य, अलग अलग प्रकार की रचनाएं हमें मिलती हैं। तो इससे लगता है कि वर्षा और ये जो चार मास हैं जिसमें कि बारिश हमको मिलनी चाहिए, यदि कृषियों के लिए लाभदायक हम मानते हैं इसे, तो इस दौरान शायद इतनी प्रेरणा मिली है कलाकारों को कि आप समझ सकते हैं कि एक एक ऐसा खजाना है हमारे पास जिसके जिसमें कितने भी आप गोते लगा लें तो कभी उसका अंत नहीं मिलता, इतनी इतना गहरा है वो खजाना।
1: और इसी खजाने को हम टटोलते जाएंगे कड़ी दर कड़ी। शुभा जी, वर्षा काल या बारिश या वर्षा ऋतु कहने से बंदिशें जो आपसे अब हम सुनेंगे, बहुत से ऐसे कुछ शब्द जो मन को बड़ा मोह लेते हैं। आप तो कह रही थी कि बरखा हो ना हो, बूंदाबांदी हो या अकाल हो, तो ये जो साहित्यिक रूप है शास्त्रीय संगीत में, उपशास्त्रीय संगीत में या लोक संगीत में बारिश का, उसको लेके कि घने बादल, बादलों की उमड़ घुमड़, काली घटा, दादुर मोर पपीहे की बोली और बिजरी छाने वाली बदरी, और ये बदरी न सिर्फ आकाश में, आंखों में भी बदरी छा जाती है वाली बात, तो संयोग और वियोग, श्रृंगार की बातें, काफी सारी चीजें आप हमसे बतियाते जाएंगी और हमारे सभी श्रोताओं को ये श्रृंखला बहुत ही पसंद आएगी। आज हम किस राग से या किस पद से आरंभ कर रहे हैं?
0: मैंने सोचा है कि आज जो पहली प्रस्तुति मैं करूं वो राग शुद्ध मल्हार की एक मध्यलय रचना आपको सुनाना चाहूंगी। शुद्ध मल्हार न केवल रागांग राग है, यानी कि शुद्ध मल्हार के जो अंग हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं, उनको ध्यान में रख के अलग अलग मल्हार के प्रकार, जो कि बहुत विभिन्न प्रकार हैं हमारे पास, इसका कुछ अंश लेके उनकी रचना की गई है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जनक सा साधक माना जा सकता है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, इसके जो विशेष स्वर संगतियां हैं, वो आपको अन्य मल्हारों में मिलेंगी। प्राचीन राग भी है, जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें भी इसका उल्लेख मिलता है। कुछ में इसे मल्हार कहा गया है, कुछ में मलार कहा गया है, कुछ में मल्लारी कहा गया है, कुछ में मेघ भी कहा गया है, मेघ मल्हार भी कहा गया है। लेकिन जो मुझे तालीम में बताया गया है कि राग शुद्ध मल्हार जो है वो ही रागांग राग है, और इसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बताना चाहूंगी। बिलावल थाट का राग है ये, और इसमें जो विशेष स्वर संगतियां हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। मल्हार का आप कह सकते हैं कि जो प्राण स्वर समूह है वो एक ये है।

0: तो ये शुद्ध मल्हार का स्वरूप हमें बताया गया है और इसमें एक तीन ताल में निबद्ध रचना मैं सुनाना चाहूंगी, धूम धाम ते आई बदरिया।
1: तो धूम धाम हाँ, ते आई बदरिया, वाह।
0: जो स्वर में जो इसके जो अक्षर हैं इसमें ही एक एक भारी भरकम एक चीज है, धूम धाम ते आई बदरिया, गरज बरसे झहरे झूम झूम।
1: झहरे
0: जी मतलब जो एक झरने की तरह जैसे फूटता है उस तरह, गरज बरसे झहरे झूम झूम। अंतरा कहता है मोरवा शोर करे पपिहा पुकारे,
1: वही जो मोर शोर करत है।
0: जी
1: जी
0: मोरवा शोर करे पपिहा पुकारे, तापे पवन चलत सूम सूम।
1: आ हा हा हा हा हाँ
0: तो ये रचना सुनाऊंगी।
1: जी ये ताल कौन सी?
0: तीन ताल,
1: तीन ताल में निबद्ध है। और शुभा जी, शुद्ध मल्हार किस जाति का राग है?
0: इसमें पांच स्वर लगते हैं तो

0: श्रोता मित्रों, आज की कड़ी हम यहीं समाप्त करते हैं। शुभा दीदी से हम अगली कई कड़ियों में मुलाकात करेंगे। आज शुभा जी को भी नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

0: आइए सुने भूले बिसरे गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। अगस्त की पहली तारीख, और आप जानते हैं कि जब पहली तारीख होती है तो भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में पहला गाना कौन सा होता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि इस गाने को बनाने वाले लोग कौन हैं? कमर जलालाबादी, बेमिसाल गीतकार जिन्होंने ये गाना लिखा और इसे स्वरबद्ध किया, हिंदी और मराठी के बहुत ही शानदार संगीतकार सुधीर फड़के ने किशोर कुमार की आवाज, और अगस्त के महीने का आगाज इस गाने के साथ कर रहे हैं। ये भी जरा गौर कीजिए कि 8 महीने 7 महीने बीत गए और 8वां महीना शुरू हो गया साल का।
1: दिन है सुहाना आज पहली।

ओ पैसा जरा लाना, ओ पैसा जरा लाना, लाना लाना, ओ पैसा जरा लाना, आज पहली तारीख है, खुश है जमाना।

0: मजेदार है जी, खेल मजेदार है। आगा है भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है।
1: पाचने का दसाना, पाचने का दसाना, पाचने का दसाना।
0: अरे वापस नहीं जाना, जाना जाना, वापस नहीं।

0: दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है, कुछ है जमाना आज
1: खुश है जमाना, आज पहली तारीख है। पहली तारीख फिल्म का ये गाना और अगस्त की ये पहली तारीख कुछ बड़ी हस्तियों की याद दिलाती है, और उनमें से एक याद आती है महजबीन बानो की, जो मीना कुमारी के नाम से फिल्मी दुनिया में जानी गई और उनका आज जन्मदिन है। बस इतनी सी बात कि

भाभी की चूड़ियां फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर के स्वर में आपने सुना। पंडित नरेंद्र शर्मा की बोल थी और संगीत सुधीर फड़के का था। आशा भोसले का स्वर, साहिर रुझानवी, रवि, फिल्म का नाम है काजल।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और आज का दिन याद का दिन है जाने माने शायर अली सरदार जाफरी का भी। यूं तो फिल्मों से उनका बहुत ज्यादा लंबा नाता नहीं था। अली सरदार जाफरी वो शायर हैं जिन्होंने वो नज्म कही, जब नहीं आए थे तुम तब भी तो तुम आए थे, आंख में नूर और दिल में लहू की सूरत। पर भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में एक ऐसा गाना जो जाफरी साहब और मजरूह सुल्तानपुरी ने मिलकर लिखा है, फिल्म का नाम फुटपाथ। तलत महमूद की आवाज, संगीत खयाम का।

फुटपाथ फिल्म का ये गीत आपने सुना। बोले बिस्तरे गीत कार्यक्रम आप विविध भारती से सुन रहे हैं। और आपको बता दें कि बोले बिस्तरे गीत कार्यक्रम के अलावा आज सदाबहार नगमे कार्यक्रम होगा दिन में 2:30 बजे, और आप उस कार्यक्रम में भी पुराने गाने सुन सकते हैं। आज जाने माने अभिनेता भगवान दादा का भी जन्मदिन है, और ये गाना है उनकी पहचान। सन 1951 फिल्म अलबेला।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

भई अलबेला फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना, लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजें थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत सी रामचंद्र का था। इसी के साथ आज का बोले बिसरे गीत कार्यक्रम हम यहीं खत्म कर रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम है हम हैं राही प्यार के, ठीक सुबह 7:30 पर उसका आगाज करेंगे। दिन की इस भागदौड़ में विविध भारती के संग बने रहिए, देश की सुरीली धड़कन।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे

0: लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटे,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में दिल एक मंदिर फिल्म का ये गीत आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत शंकर जयकिशन का था। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में पूर्णिमा फिल्म का गाना, गुलजार के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

पार चलो। पाकीज़ा फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपने सुना। कैफ भोपाली के बोल थे, संगीत गुलाम मोहम्मद का था। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में काजल फिल्म का गाना। साहिल लुधियानवी के बोल रवि की तर्ज़।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर, वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को

0: सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्टैग अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूर सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुर्नूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। वे अनंतपुरम में 2,500 मेगावाट और कुर्नूल में 1,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसंख्या के आंकड़े एकत्र करना है। 2 चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
4: पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल se.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले

0: इस साल फरवरी में होगा जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक घर के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथा कथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। जैगथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
3: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद कनक। जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान अनेक अखबारों की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर आप बीती शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है, वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है, पिता को भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटे।

0: आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज की अंतर आत्मा को झकझोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीदें बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया जिसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो है, पर इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। कुलगांव में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, जूडो में अस्मिता हर्ष की स्वर्ण गाथा, जीते 2 गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह और अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है, 92 साल में पहली बार देश को जूडो में स्वर्ण, पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत, लोक सत्य में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों, त्रिवेणी की धाराएं आज मिल रही हैं बारिश की बूंदों पर। थोड़ी खुशी थोड़ा गम अपने आगोश में समेटे बारिश जब आती है तो गर्मी से निजात दिलाती है, नहीं आती तो परेशानियों का पहाड़ ठेल देती है धरती पर। लोग बूंद बूंद के लिए तरस उठते हैं। हर मौसम में छिपा होता है थोड़ा न थोड़ा कहर, ये प्रतीक है इंसानों का। हर इंसान में खामियां और अच्छाइयां होती हैं। स्वीकार कीजिए अच्छाइयां, दूर फेंकिए बुराइयां। बरसात के मौसम की खूबियों से खुशी पाइए, इसके कहर से बचने का उपाय सोचिए, तभी बरसात के मौसम की खूबसूरती को आप महसूस कर पाएंगे।

मखमल की चादर सी बिछ जाती है जब होती है बरसात। पानी से नहाए पेड़ पौधे हरे रंग की पोशाक पहनकर झूमने लगते हैं। क्या आपने सोचा है, अगर बारिश न हो तो जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं का क्या हो, जिनका जीवन यापन ही पेड़ पौधों और जलाशयों से होता है। अगर बारिश नहीं हो तो नदी तालाब सूख जाते हैं, जंगल के पशु पक्षी प्यासे ही दम तोड़ने लगते हैं। अब आप सोचेंगे, हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम पेड़ पौधों को जिंदा रख सकते हैं, नए पेड़ पौधों की नई पीढ़ी तैयार कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण हमारी तरह स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ पर्यावरण से संतुलित बारिश होगी। हम बरसात के गीत यूं गाएंगे।

0: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
1: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, उनको उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण भवन सुयो विनायक करो ये नीति मारा दिलीप सेन जीव धारी।
0: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में सुनिए चित्रलोक।

आइए सुनें चित्रलोक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। 1 अगस्त की ये सुबह और मोनाली ठाकुर की आवाज। गीत अमिताभ भट्टाचार्य, संगीत अमित त्रिवेदी, फिल्म का नाम लुटेरा।

श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह, इरशाद कामिल के बोल विशाल शेखर की तर्ज। फिल्म का नाम है हैप्पी न्यू ईयर।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। 1 अगस्त की ये सुबह के दिन लोकमान्य तिलक को भी हम याद कर रहे हैं, जिन्होंने ये कहा था कि आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा।

0: हम मीना कुमारी और भगवान दादा को याद कर रहे हैं सुबह 9:30 पर। आज के फनकार कार्यक्रम अभिनेत्री मीना कुमारी पर केंद्रित होगा और रात 9:30 पर अभिनेता भगवान दादा को। इसके अलावा
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय
4: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
5: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
4: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटे,
6: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
4: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
7: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
4: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
9: फोक कहते हैं आमद को, हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, उनको सब कोई राइटर तो होता नहीं था, तो गडरण भवन सु आयो विनायक करो ये नसीती विन धरी मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
8: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
10: ओले, ओले, ओले, ओले, ओले, ओले।
0: कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल

0: पीरियड था -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती से चित्रलोक, नेहा भसीन की आवाज, इरशाद कामिल के बोल, विशाल शेखर की तर्ज है। फिल्म है सुल्तान।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू

0: जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
1: और आ गया।
0: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।
4: फिल्म का नाम है वीर जारा।
5: देख

0: चित्र लो। दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जब नहीं आए थे तुम, अभी आपने ये गाना सुना, देव फिल्म का ये गाना था। आज अली सरदार जाफरी की याद का दिन है और ठीक इसी तरह की एक नज्म है उनकी, जब नहीं आए थे तुम। ये गीत देव फिल्म में निदा फाजली ने लिखा था और अली सरदार जाफरी लिखते हैं, तुम नहीं आए थे जब तब भी तो मौजूद थे तुम, आंख में नूर की और दिल में लहू की सूरत, दर्द की लौ की तरह, प्यार की खुशबू की तरह, बेवफा वादों की दिलदारी का अंदाज लिए, तुम नहीं आए थे जब तभी तो तुम आए थे। अली सरदार जाफरी की याद को हमारा नमन। और चित्रलोक का अगला गाना ए आर रहमान, फिल्म हाईवे।

एआर रहमान की आवाज थी हाईवे फिल्म का एक गाना था। और इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम हम खत्म कर रहे हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब

0: अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता। जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। बहते हुए आंसू ने आंखों से कहा थमकर, जो मैं से पिघल जाए वो जाम नहीं होता।

कार्यक्रम में आज दास्तान उस अदाकारा की जिसे बचपन में महजबी बानो कहा गया और बड़ी होकर वो कहलाई मीना कुमारी।

मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1932 को हुआ था। बचपन से ही मीना कुमारी बतौर बाल कलाकार फिल्मों की दुनिया में चली आई थीं। उनके बचपन का नाम था महजबी बानू। अली बख्श और इकबाल बेगम की तीसरी बेटी थी महजबी। इसके अलावा बाकी 2 बेटियां थीं खुर्शीद और मधु। परिवार की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए नन्ही महजबी को फिल्मी दुनिया में ला दिया गया। मीना कुमारी तब तकरीबन 5 बरस की थी और उनके पिता अली बख्श रूपतारा स्टूडियोज में एक्टर बनने के लिए जद्दोजहद किया करते थे। अपनी पत्नी के जोर देने पर उन्होंने महजबी को भी फिल्मों में आने के लिए प्रेरित किया। हालांकि नन्ही महजबी अभिनेत्री बनना नहीं चाहती थीं, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थीं। लेकिन परिवार की हालत ऐसी नहीं थी। 7 बरस की उम्र में नन्ही महजबी ने फिल्म फर्जंदे वतन में काम किया। फिल्मी दुनिया में आने के लिए नन्ही महजबीन का नाम बदलकर मीना कुमारी रख दिया गया। प्रकाश स्टूडियोज की फिल्म फर्जंदे वतन सन 1939 में आई थी और इसके निर्देशक थे विजय भट्ट। इसके बाद नन्ही मीना कुमारी ने कई फिल्मों में काम किया, जैसे वीर घटोत्कच, श्री गणेश महिमा और अलादीन और जादुई चिराग। प्रकाश स्टूडियोज में इस नन्ही कलाकार ने अपनी अभिनय प्रतिभा के जरिए लोगों का दिल जीत लिया था। इसीलिए फर्जंदे वतन के निर्देशक और निर्माता विजय भट्ट ने जब बैजू बावरा बनाने का फैसला किया तो बतौर हीरोइन मीना कुमारी को मौका दिया। बैजू बावरा मीना कुमारी की पहली कामयाब फिल्म थी। सन 1953 में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मीना कुमारी ने इस फिल्म में अभिनय के लिए हासिल किया।

तुम्हारा। इसके बाद मीना कुमारी की एक की बाद एक कई कामयाब फिल्में आईं। परिणीता 1953, फिल्म दायरा 1953, बीआर चोपड़ा की फिल्म एक ही रास्ता में भी उन्होंने अभिनय किया। सन 1957 में आई शारदा।

मीना कुमारी ने ज्यादातर वो फिल्में की जिनमें वो एक दुखियारी स्त्री थी, समाज और हालात की सताई हुई एक दुखियारी स्त्री जिसके हिस्से में सिर्फ गम आए हैं, आंसू आए हैं, तकलीफें आई हैं और आई हैं ठोकरें।

0: मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन का खिताब दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने हल्की फुल्की फिल्में ना की हों। सन 1955 में आई सी रामचंद्र के नायाब संगीत वाली फिल्म आजाद
1: कितने

0: आधे घंटे के इस कार्यक्रम में अदाकारा मीना कुमारी के पूरे करियर को समेटना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये तो मुमकिन है कि हम उनकी सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं की बातें करें। सन 1962 में आई फिल्म साहेब बीवी और गुलाम, गुरुदत्त की ये फिल्म मीना कुमारी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कही जा सकती है।
1: मुझे यहाँ क्यों बुलाया?
2: कुछ भी नहीं देख पाए।
1: क्या बकवास करती हो, मैं यहाँ बैठा तुम्हारा मुंह देखा करूं? इतनी फुर्सत नहीं मुझे।
2: सुनो तो, मेरा मुंह देखना तुम्हें पसंद नहीं तो ना देखो, पर आज तुम वहां ना जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ।
1: ना जाओ? वो क्यों? इस हवेली के मर्दों को तुमने निकम्मा समझा खाया क्या?
2: पत्नी के पास रहने से मर्द निकम्मा तो नहीं हो जाता जी? धर्म को साक्षी मानकर तुमने मुझसे ब्याह किया, क्या मेरी तरफ तुम्हारा कोई भी कर्तव्य नहीं?
1: जिस मर्द को अपना कर्तव्य जोरों से सीखना पड़े, लाना तो
2: रोज ही तो जाते हो वहाँ, एक दिन मेरे पास भी रह गए तो।
1: मैं मर्द हूँ छोटी बहू, चाबियों का ये गुच्छा नहीं जो सदा तुम्हारे पल्लू से बंधा रहूं।
2: सदा की कौन कहता है जी, सिर्फ आज, कभी तो सेवा का मौका दो मुझे। हंसे क्यों?
1: सेवा करना जानती हो तुम लोग?
2: स्वामी को खुश करने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ।
1: मुझे खुश करने के लिए गाना गा सकोगी? जैसे चुन्नी दासी गाती है, गा सकोगी? गा सकोगी मेरे सामने?

कई लोगों ने ये भी कहा कि फिल्म साहिब बीवी और गुलाम की ये भूमिका, जिसमें मीना कुमारी छोटी बहू बनी थी, असल में उनकी असली जिंदगी से बहुत मेल खाती है। दरअसल मीना कुमारी कमाल अमरोही से अपनी शादी से खुश नहीं थी। शादी के 6 साल के अंदर ही वो और कमाल अमरोही अलग हो गए थे। मीना कुमारी ने तलाक के समय लिखा था, तलाक तो दे रहे हो नजर कहर के साथ, जवानी भी मेहर के साथ लौटा दो। मीना कुमारी के अंदर एक ठोकरें खाई हुई स्त्री थी, जिसका दिल छलनी छलनी था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मीना कुमारी शायरा भी थीं। उनकी मौत के बाद जाने माने शायर, गीतकार और फिल्मकार गुलजार ने उनकी गजलों की किताब छपवाई और उसका संपादन किया। अपनी एक गजल में मीना कुमारी लिखती हैं, चांद तन्हा है आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, हम सफर कोई गर मिले कभी, दोनों चलते रहे कहां तन्हा। ये सच है कि मीना कुमारी में कमाल का सौंदर्य था, भला की खूबसूरती थी, लेकिन उनकी खासियत थी उनके चेहरे पर झिलमिलाते भाव। उनकी खासियत थी दर्द को अपने चेहरे पर लहर की तरह छा देना। जरा फिल्म दिल एक मंदिर का ये गाना सुनिए और जहन

कहते हैं कि अपनी निजी जिंदगी की परेशानियों की वजह से मीना कुमारी ने शराब पीना शुरू कर दिया था और यही वजह थी कि जिंदगी उनके हाथों से फिसलती चली गई। सन 1962 मीना कुमारी के करियर का सबसे महत्वपूर्ण साल था। इस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए तीनों नॉमिनेशन मीना कुमारी को मिले। फिल्म आरती

फिल्म साहेब बीवी और गुलाम। जाहिर है कि कोई प्रतियोगिता थी ही नहीं, मीना कुमारी का मुकाबला खुद से था और साहेब बीवी और गुलाम के लिए उन्होंने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1965 में आई फिल्म काजल।

लेखक और गीतकार गुलजार शायरी की वजह से मीना कुमारी के करीब आ गए थे। उनकी शायरी की दुनिया को गुलजार ने जाना पहचाना था। सन 1971 में जब बतौर निर्देशक गुलजार ने फिल्म मेरे अपने के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ाया तो फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका मीना कुमारी को सौंपी।

मीना कुमारी के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म थी पाकीज़ा। इसे बनने में कुल 14 साल लग गए, लेकिन फिल्म पाकीज़ा के जरिए पर्दे पर कमाल अमरोही और मीना कुमारी ने रचा एक तिलस्म।

एक जगह मीना कुमारी ने लिखा था, तुम क्या करोगे सुनकर मुझसे मेरी कहानी, बेलुत्फ जिंदगी के किस्से हैं फीके फीके। एक अदाकारा जिसके भीतर था दर्द का समंदर, जो गहरी तन्हाई की शिकार थी, 31 मार्च 1972 को महज 39 बरस की उम्र में इस फानी दुनिया से चली गई। उनके अपने अल्फाज हैं, आगाज तो होता है अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता, दिन डूबे हैं या डूबे बारात लिए किश्ती, साहिल पे मगर कोई कोहराम नहीं होता।

0: गीतों भरी कहानी, आइए सुनते हैं डॉक्टर जया आनंद की लिखी गीतों भरी कहानी मिस मैच, उन्हीं के स्वर में।
1: तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं के इन अदाओं पे।

0: यहाँ रख दिया मैंने। कितना सोचा था कि आज की पार्टी में नया वाला सलवार सूट पहनूंगी, पर इसका दुपट्टा पता नहीं कहाँ रख दिया। ज्यादा संभाल कर रखो तो भी चीजें नहीं मिलती, पर दुपट्टा कोई छोटी चीज तो है नहीं, अच्छा खासा 2.5 मीटर का दुपट्टा है। सौम्या ढूंढ ही रही थी कि आलोक, सौम्या के पति ने आवाज दी। कितना टाइम लगाती हो सौम्या, 7 बजे पहुंचना है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। आ रही हूं आलोक, बस 5 मिनट। क्या करूं, कहीं टेलर के पास ही तो नहीं छूट गया, दुपट्टे का पीको करने दिया था। उफ, मैं अब जा रहा हूं। तुम्हारा हर बार का यही हाल है, कभी जो समय से तैयार हो जाओ, पहले से कोई प्लानिंग ही नहीं। आलोक झुंझला पड़ा। कितनी तो प्लानिंग की थी, रात ही में सोच लिया था क्या पहनना है, अम्मा के लिए खाना बनाकर रख दिया था, दोनों बच्चों को प्रीति के यहां छोड़ आई थी, जब तक हम आए तब तक वे दोनों उनके बच्चों के साथ खेलेंगे खाएंगे, उनके लिए केक बिस्किट वगैरह सभी तो दे आई थी, आलोक की भी ड्रेस निकाल कर रखी थी, सब कुछ तो प्लान किया था। अब और कितना प्लान करूं, इस दुपट्टे ने सारा गड़बड़ कर दिया। सौम्या अलमारी में ऊपर के नीचे के रैक सब खंगालते हुए सोचती जा रही थी, इतना सब करने के बाद भी काम सही से नहीं हो रहा है।
1: कौन जाने मैं क्या हूँ, सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।

बात उन दिनों की है जब सौम्या का पहली बार आलोक के साथ मूवी देखने का प्रोग्राम बना था। नई नई शादी के बाद अपने पति के साथ फिल्म देखने जाना बहुत उत्साह से भर रहा था सौम्या को। उसने अच्छी सी साड़ी पहनी, हल्का मेकअप किया था, लेकिन तैयार होने में केवल 5 मिनट की देरी हो गई थी। बस आलोक मूवी तो ले गए लेकिन एक शब्द नहीं बोला। सौम्या का इस तरह मूवी देखने का अनुभव बड़ा ही अलग था। अपने मायके में तो जब भी कोई मूवी देखती थी तो उस पर सभी कितनी चर्चा करते थे, उसके गाने गुनगुनाते थे, पूरी समीक्षा कर डालते थे, पर यहां तो अंदाज ही जुदा था। इस तरह पहली बार चुपचाप नाराज होकर कोई मूवी दिखाए तो कैसी लगेगी मूवी। खैर, रूठे हुए पति के संग सौम्या ने जैसे तैसे पूरी फिल्म देखी, फिर कोई चारा भी तो नहीं था।

सौम्या, तुम ना पार्टी का पूरा मूड बर्बाद कर रही हो। लोकल ट्रेन छूट गई तो कैब से जाना पड़ेगा और इतना ट्रैफिक होता है कि शाम को पहुंचते पहुंचते 9 बज जाएगा और तुम्हारी गाड़ी है कि खिसक ही नहीं रही है। 5 मिनट में तैयार हो, नहीं तो तुम अपनी पार्टी यहीं मनाती रहना। आलोक की तलखी से सौम्या चिड़सी गई। पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है आलोक के पास। अभी मैंने कुछ बोल दिया तो मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे और एक हफ्ते बात ही नहीं करेंगे। कितने भी नए साल आ जाएं, इनमें कुछ बदलाव नहीं आने वाला। हे भगवान, तुमने पूरब पश्चिम की जोड़ी बनाई है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरी याददाश्त भी तो माशाल्लाह है, ऐसी जगह दुपट्टा रख दिया कि वक्त पर मिल ही नहीं रहा। यही सब सोचते हुए सौम्या ने गोल्डन कलर का दूसरा दुपट्टा पहन लिया। अब क्या करे, नहीं मिल रहा है तो मिसमैच करना पड़ेगा। सौम्या गोल्डन दुपट्टे के साथ तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई और दोनों लोकल ट्रेन के लिए ऑटो से स्टेशन की ओर निकल पड़े। रास्ते भर आलोक कुछ नहीं बोला। सौम्या को भी गुस्सा आ गया था। जाओ, मत बोलो। मैं भी नहीं बोलूंगी, बहुत मना लिया।

ठाणे स्टेशन पर ट्रेन आते ही आलोक जनरल डिब्बे में चढ़ा और सौम्या लेडीज डिब्बे में। सौम्या ने चढ़ते समय देखा आलोक का मुंह अब भी फूला हुआ था। सौम्या का भी मन बुझ सा गया। कितना सोचा था नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, खूब एंजॉय करेंगे, पर ये तो 5 मिनट की देरी भी नहीं आलोक को बर्दाश्त। मिस्टर शर्मा अपनी वाइफ का कितना इंतजार करते हैं, जरा भी झुंझलाते नहीं, और एक हम दोनों बिल्कुल मिसमैच। सौम्या को मन बहुत खाली खाली सा महसूस हो रहा है।

लोकल ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। बैठने की जगह तो नहीं मिली, लेकिन आराम से खड़े रहने भर की जगह सौम्या को मिल गई थी। लोकल ट्रेन का लेडीज कंपार्टमेंट, जैसे कि एक रंग बिरंगी दुनिया वहां समा गई हो। कोई महिला बैठे हुए हाथ में माला लेकर जप रही थी, तो दूसरी मोबाइल में खुद को देखते हुए लिपस्टिक लगा रही थी। कई सारी महिलाएं दफ्तर से लौटने के बाद चेहरे पर थकान लिए घर जाने की प्रतीक्षा में निढाल सी खड़ी दिख रही थी। इन सब की जिंदगी में भी क्या सब कुछ मन मुताबिक होगा? कुछ न कुछ अभाव तो सबके जीवन में होता ही है। इनके जीवन में भी कुछ झगड़े झंझट होते ही होंगे, खासकर पति से। यही सब सौम्या सोच रही थी कि उसे लेडीज डब्बे में पीछे की ओर बैग टांगे, जीन्स टॉप स्कर्ट टॉप पहने उत्फुल्लता से बतियाती हुई कॉलेज जाने वाली लड़कियां दिखी। वैसे तो वे सब कॉलेज से वापस आ रही थी, लेकिन उनके दमकते चेहरे इसका तनिक भी आभास नहीं दे रहे थे। हल्का मेकअप तो जरूर था उनके चेहरे पर इससे कहीं अधिक भविष्य को लेकर बुने गए सपनों की चमक इन लड़कियों के चेहरे की रौनक को आबाद कर रही थी। ये लड़कियां कितने आत्मविश्वास से परिपूर्ण नजर आ रही थी। इन्हें स्पष्ट पता है कि इन्हें क्या चाहिए।

सचमुच ये लड़कियां अपनी मंजिल खुद तय करती हैं, और एक मैं थी। करियर, कपड़े, बाहर जाना, सब में किसी न किसी की अनचाही सलाह, और स्वयं भी तो वो कंफ्यूज रही। शादी की उम्र पर भी नहीं पता चल रहा था कि शादी किसके साथ की जाए, इसलिए तो सब मिसमैच। एताई पुड़े चला ना, यह आवाज सुनकर सौम्या की सोच को विराम लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक कान के झुमके वाला बांगड़ी वाला आवाज दे रहा था। कुछ महिलाएं उससे झुमके, कंगन वगैरह खरीदने लगी। सौम्या को फिर याद हो आया कि किस तरह उसने सपने संजोए थे कि उसे उसका पति झुमके लाकर पहनाएगा। शायद हिंदी फिल्मों का असर रहा हो, पर यहां तो पासा ही पलट गया। सौम्या के पतिदेव जी को फिल्में देखने का कोई खास शौक ही नहीं था, तो फिर ये झुमके वाला रोमांस तो बहुत दूर की कौड़ी थी।

0: अंतराल के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। लीजिए सुनिए मिस मैच इस कहानी का शेष भाग।
1: सौम्या को साहित्य संगीत से प्रेम और आलोक गणित का पहाड़ा पढ़ने वाले। सौम्या ने अगर आलोक को पकड़ के कोई कविता सुना भी दी तो कहेंगे, अच्छा तो तुम बताओ कि इस कविता के लिए क्या कहूं, या कविता सुनते सुनते कहते, वो तुमने दूध वाले का बिल दे दिया। सौम्या अपना सर पकड़ के रह जाती। कविता की ऐसी रस निष्पत्ति होगी उसने कभी नहीं सोचा था। नई नई शादी के बाद पहली बार सौम्या ससुराल में आरती कर रही थी। बड़े ही भाव के साथ आरती गा रही थी कि ओम जय जगदीश का अलग ही सुर या असुर कानों में सुनाई पड़ा। ये बेसुरा संगीत आलोक के मुखार बिंद से सुनाई पड़ रहा था। ये सुनते ही सौम्या की हंसी छूट पड़ी। ऐसा सुर संगम जिंदगी में उसने पहली बार सुना था। ये सब याद करते हुए सौम्या के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और फिर आसपास लोकल ट्रेन में अन्य महिलाओं को देखते हुए स्वयं को फिर से गंभीर मुद्रा के साथ बांध लिया। उसे अपने आप में मुस्कुराता देखकर वे क्या सोचेंगी, पर मुंबई में कहां किसी को फुर्सत किसी के विषय में सोचने की। अच्छा भी है, इससे आप बेपरवाह रह सकते हैं, और अच्छा नहीं भी, क्योंकि कभी कभी मन को कितना भाता है जब कोई आपकी परवाह करता है। हां, करता था ना परवाह, बिना बोले सिर्फ अपनी आंखों से, और कभी बोला भी तो सबके बीच सौम्या की प्रशंसा करते हुए, बहुत अच्छा गाती है सौम्या, और लिखती कितना अच्छा है, और ओह कहां से कहां बात लेकर चली गई। सब पुरानी बातें जिन्हें बस याद करके मन झूम उठता है।

मोबाइल की रिंग से सौम्या वर्तमान में आ गई। देखा तो आलोक का फोन था। हेलो, सौम्या ने फोन उठाते हुए कहा। क्या सौम्या, कितनी बार कॉल किया और तुम हो कि उठा ही नहीं रही हो, लगभग चिल्लाते हुए आलोक बोले। अरे ट्रेन में इतना शोर हो रहा है, कैसे सुनाई पड़ेगा, और फिर मोबाइल पर्स में रखा है। कुछ नहीं, तुम्हारा ध्यान बस इधर उधर रहता है, एक बार में कभी फोन उठाना ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हाँ हो तो बहुत कुछ सकता है, बस आगे बढ़ने से खुद को रोक लेती हूँ, सौम्या कहना चाहती थी पर कहा नहीं। अच्छा सुनो, दादर आने ही वाला है, 3 स्टेशन के बाद ही उतरने के लिए तैयार हो जाओ। आलोक की आवाज में अब भी तलखी थी। जरा मिठास से नहीं बोल सकते हैं क्या, छोटी छोटी बात पर गुस्सा होना अच्छा नहीं। कबीर ने कहा है ना, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। पर साहित्य तो पढ़ा ही नहीं आलोक ने, तो कैसे समझ आएगी ये सब बातें। सौम्या मन ही मन बड़बड़ाती जा रही थी।

दादर उतरना है ना? सौम्या ने फिर आगे खड़ी महिला से पूछा। उस महिला ने हां में सिर हिलाया। सौम्या उसी लाइन में खड़ी हो गई। ऐसे भी मुंबई में कोई काम बिना लाइन के चलता ही नहीं। थोड़ा भी तलविचल हुए कि सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। जब सौम्या आलोक के साथ मुंबई पहली बार आई थी तो ऐसा ही कुछ अस्त व्यस्त सा माहौल हो गया था। आलोक के हिसाब से बहुत बड़ी गलती थी और सौम्या के हिसाब से ये तो कोई गलती ही नहीं। फिर अगर गलती मान रहे हैं तो वो गलती क्या थी? तो बात ये थी कि सौम्या साबुन लाना भूल गई थी। एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर होने में कुछ चीजें भूलना तो सामान्य बात है। इतना सामान पैक करना है तो कुछ ना कुछ छूट सकता है, पर आलोक को ये सब आधारभूत गलती लगती थी। साबुन कैसे भूल सकती हो? अब भूल गई, इतना पैक करना था सब कुछ, लेकिन साबुन कैसे कोई भूल सकता है? ओफो, साबुन ही है ना, ले आएंगे यहीं से। पर तब तक आलोक का मूड बिगड़ चुका था, यानी मुंबई पहुंचते ही सौम्या की लाइन में विचलन आ गया था। सौम्या यही सोचती रहती कि जिंदगी में ये गणित और साहित्य का संगम आखिर भगवान जी ने कैसे कर दिया।

ए ताई, दादर उतराए से तुला? पीछे आती हुई आवाज से सौम्या की सोच को विराम लगा। सौम्या ने हां की मुद्रा में सिर हिलाया और फिर सोचते हुए मुस्कुरा दी। मंजिल तक पहुंचने के लिए लाइन में रहना जरूरी है। अब जो है जैसा है सब ठीक है। आलोक अगर पक्के गणितज्ञ तो मैं पक्की साहित्यिक, और फिर साहित्य वाले तो निश्चित रूप से अधिक समझदार होते हैं। कब कहां कैसे व्यवहार करना है उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। और फिर व्यवहारिक जोड़ गुणा भाग भी तो उसे खूब आता है। चला न ताई, लेडीज डिब्बे में फिर से आवाज गूंज गई। दादर स्टेशन आ गया था। लेडीज डिब्बे में भी बहुत भीड़ हो गई थी। सौम्या 8-10 लेडीज के बाद उतरी। ट्रेन से उतरते ही सौम्या अपना दुपट्टा संभालते हुए अपने बाल ठीक करने लगी। आलोक दूर खड़े होकर सौम्या को देख रहे थे। सौम्या आलोक के पास पहुंची। आलोक ने गंभीर स्वर में कहा, ये कौन सा दुपट्टा डाल लिया? आलोक की बात बीच में काटते ही सौम्या बोली, वो मिसमैच किया है। मिसमैच पर अच्छा लग रहा है, अभी मैंने गौर किया। आलोक रूखे से ही बोले। और मैं कैसी लग रही हूं? सौम्या ने धीरे से पूछा। पता नहीं, आलोक का रूखा सा जवाब था पर आंखें मुस्कुरा रही थी। सौम्या ने उन मुस्कुराती आंखों को देख लिया था, उसे हंसी आ गई। हम दोनों, व्हाट अ मिसमैच। पर जो भी है शायद अच्छा ही है। इतनी बड़ी दुनिया में उसका हाथ पकड़कर साथ चलने वाले आलोक ही तो हैं। भले सुर साहित्य से उतना जुड़ाव नहीं, लेकिन उसके जीवन को पूर्णता के साथ सुरम्य बनाने वाले आलोक ही तो हैं। और फिर आलोक से जुड़ने के बाद भी न उसके अपने छूटे न उसके सपने। सौम्या का हृदय भाव से लबालब हो चुका था। वह अपना दुपट्टा संभालते हुए आलोक के साथ स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ने लगी।

गीतों भरी कहानी। आज आप सुन रहे थे डॉक्टर जया आनंद की लिखी गीतों भरी कहानी मिस मैच, वाचन स्वर था जया आनंद का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: मौजूद है जिसने क्रिकेट कमेंट्री की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया और इनकी आवाज के हम सब दीवाने रहे हैं। हमारे बीच हैं पद्मश्री सुशील दोषी। ये है इस बातचीत का पहला भाग। आइए स्वागत करते हैं सुशील जी का।
1: धन्यवाद यूनुस और सभी श्रोताओं को एक बार फिर से नमस्कार। ये आवाज तो आप बरसों कमेंट्री में सुनते रहे होंगे और मुझे खुशी है कि एक बार फिर से आपसे मुखातिब हो रहा हूं और अच्छा लग रहा है। जीवन की कहानी की यात्रा किस तरह गुजरी इन तमाम चीजों पर बातचीत होगी, तो जिगर थाम कर बैठिए, बहुत लंबी बातचीत होगी अब।
2: क्या बात है, क्या बात है। मैं ना सर बहुत रोमांचित हूं और एक चीज और है कि आपके सामने बैठने पर थोड़ा घबराया हुआ भी हूं कि इतना विराट और लंबा अनुभव आपका रहा है। मुझे लगता है यात्रा इंदौर से शुरू करते हैं, अपने बचपन के बारे में बताइए।
1: नहीं देखिए, वैसे तो गरीब परिवार से हम थे, 15 रुपए महीने के मकान में किराए से रहते थे।
2: कौन सा मोहल्ला था वो?
1: वो इतवारिया बाजार, जिसे अब हुकमचंद मार्ग इंदौर जी कहते हैं, वहां रहते थे। और 4 भाई हम लोग और माता पिता, मैंने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी संघर्षरत थे। वहां से शुरुआत की यात्रा और टाटपट्टी वाले स्कूल में पढ़े
2: जी जी,
1: मास्टरों की रोज मार खाई और मुर्गा बने।
2: हाँ,
1: लेकिन ऐसा नहीं कि अगर दिल में इच्छा हो ना तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, और माता पिता का आशीर्वाद रहा तो फिर आप सही दिशा की तरफ प्रवृत्त भी हो सकते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपने कहा कि परिवार जो है वो थोड़ा अभावों के रास्ते पर था, और जैसे स्कूलों में आपने पढ़े, सब आज के बच्चों को तो पता भी नहीं है कि मुर्गा कैसे बनाया जाता है, मास्टर जी कैसे मुर्गा बनाते हैं। ये जो बचपन था, इस बचपन में किताबें बहुत सारी थी। मैंने ये जाना है कि आप लाइब्रेरीज में ब्लेड लेके जाते थे।
1: अब क्या बताएं, देखिए उस समय पैसे तो थे नहीं
2: जी,
1: क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी थी, तो हम करते ये थे कि लाइब्रेरीज जाते थे और बहुत कम बड़ी पत्रिकाओं में फोटो आते थे। एक पत्रिका में कभी बड़ी मुश्किल से क्रिकेटर का किसी का फोटो, और मैं एल्बम में क्रिकेटर्स के फोटो इकट्ठे किया करता था
2: जी,
1: और पैसे थे नहीं कि पत्रिकाएं खरीद सकें। तो मैं और मेरा एक दोस्त है, विनय उसका नाम था, मेरे साथ पढ़ता था, तो हम दोनों जाते, ब्लेड ले जाते और चुपके से वो फोटो काट कर घर ले आते।
2: वाह,
1: एक दिन पकड़े गए।
2: अरे बाप,
1: पकड़े गए तो मेरे दोस्त को आप ये समझिए कि उसने 2 चपत लगाई और अब कहा कि इस तरह के काम करते हो, शर्म नहीं आती। तो हम वापस आ गए और बड़ा छोटा मुंह हो गया। लेकिन देखिए पुराने दोस्त कैसे होते हैं, उसने ये कहा कि यार घर पर मत बताना कि आज हमको चपत पड़ी है, क्योंकि घर पर बताएंगे तो ये काम जो हम कर रहे हैं ना, ये कल से नहीं कर पाएंगे
2: जी।
1: तो देखिए कई बार मैं सोचता हूं कि आज जब पद्मश्री मिल गया या जिंदगी में आप हम व्यावसायिक तौर पर इतने आगे बढ़ गए, इतना नाम कमाया, लोग इज्जत कर रहे हैं, शोहरत प्राप्त हो गई, सब कुछ है, लेकिन हम उस दोस्त को कैसे भूल सकते हैं जो कि पद्मश्री मिलने के बाद भी उसका हक भी तो कुछ है उस उपाधि पर, जिसने हमें ऐसे वक्त जबकि दुनिया हमारे साथ नहीं थी वो हमारा साथ देने को तैयार थे। तो ऐसे ऐसे दोस्त हुआ करते थे
2: जी,
1: बचपन की ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो आज भी मुझे भावुक कर देती हैं
2: जी। बहुत प्यारी बात है, इंदौर बहुत प्यारा शहर है, संस्कारों वाला शहर है, पारंपरिकता और आधुनिकता को साथ लेके चलता है। जिन दिनों में आप पढ़ रहे थे, क्रिकेट मैच के बारे में जानने का जरिया सिर्फ अखबार थे, कमेंट्री अंग्रेजी में सुना करते थे?
1: बिल्कुल, और मैं आपको बताता हूं कि जैसे आप लोग बाथरूम में जाते हैं और गाने गुनगुनाते हैं ना
2: जी,
1: मैं बाथरूम में जाता था तो कमेंट्री गुनगुनाता था। मतलब आप समझिए कि लोग अंग्रेजी में कमेंट्री आती थी, हिंदी में तो आती नहीं थी। FPS सिस्टम का खेल, यानी कि फुट पाउंड सेकंड, 22 यार्ड से जो खेल शुरू हुआ, लोग कहते थे हिंदी का इसमें क्या काम, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। तो अंग्रेजी में ही कमेंट्री करते थे और उनकी शैली में, जॉन ऑर्लट हो, एलन मैकगिलवरी हो, या ऐसे बड़े बड़े कमेंटेटर्स जिनके हम नाम जानते
2: हैं, उनकी बैरिटोन एकदम,
1: हाँ, उनकी मोटी आवाज में वैसे ही निकालकर मैं वैसे ही कमेंट्री करता था, लोग बड़े प्रभावित होते थे। और स्कूलों में भी कोई मैच चलता था ना, मैं एक झाड़ के नीचे बैठकर कमेंट्री करने लग जाता था।
2: वाह,
1: तो ये एक वहां से शौक हुआ। और बचपन से मुझे पता नहीं था कि मैं कमेंटेटर बनूंगा
2: जी,
1: लेकिन कहीं से कहीं बुनियाद जो पड़ी ना मेरी, शायद वहीं से पड़ी होगी, क्योंकि वही चीज आगे जाकर विकसित हो गई।
2: बिल्कुल, तो पिताजी का क्या रवैया था?
1: नहीं देखिए, गरीबी के बावजूद, देखिए मैं पढ़ने में सबसे कमजोर, दुबला पतला, 48 किलो, जब मैं कॉलेज में भी जाता था ना, 48 किलो

0: वजन था, तो मेरे प्रति उनको एक अलग से ज्यादा प्यार था। हमारे दूसरे तीन भाई हैं, तीनों भाई एमटेक आईआईटी से,
1: जी जी
0: मतलब इतने विद्वान और पढ़े लिखे, हमेशा प्रथम श्रेणी में आने वाले, मैं सप्लीमेंट्री लाकर पास होने वाला। उसके बावजूद भी वो इस कारण पिताजी प्यार करते थे कि ये कमजोर है, इसको हमारी मदद की जरूरत है।
1: ओके
0: और दूसरी बात ये कि उनको लगा कि ये अगर इसको हिंदी में और इसमें ज्यादा शौक है, तो उनको लगा कि मैं क्रिकेट की तरफ प्रवृत्त हूं, तो क्रिकेट मेरी किताबों में वो भी एल्बम में चिपकाते थे खुद बैठकर।
1: अरे गजब।
0: और बड़ी मदद की, और उस समय तो पता नहीं था, लेकिन एक बार मुझे याद है कि 1959-60 में ऑस्ट्रेलिया की रिची बेनो की टीम भारत आई।
1: हाँ।
0: वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो थी रिची बेनो की, वो विश्व विजेता टीम थी और
1: बिल्कुल
0: दुनिया में उसका कोई जोड़ी नहीं था। बड़े बड़े खिलाड़ी, रिची बेनो, लिंडवाल और नॉर्मन ओनील, नील हार्वे जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी जिनके फोटो में एल्बम में इकट्ठे किया करता था, तो वो आए हुए थे। और मैंने पिताजी से जिद पकड़ी, मैं 13 साल का था, 8वीं कक्षा में पढ़ता था,
1: जी
0: मैंने जिद पकड़ी कि मुझे बम्बई टेस्ट मैच देखना है। और पिताजी, पता नहीं क्यों, मैं पिता होता तो कभी भी अपनी बेटे की ये बात स्वीकार नहीं करता,
1: जी
0: लेकिन वो उन्होंने कहा कि बेटे की जिद पूरी करनी है, तो वो
1: वाह,
0: मुझे बम्बई ले गए टेस्ट मैच दिखाने।
1: इंदौर से बंबई आए
0: इंदौर
1: आप
0: से
1: लोग।
0: बम्बई ले गए, पैसे थे नहीं, जैसे तैसे टिकट कैसे जुगाड़ किया होगा, यहां से बम्बई, बम्बई कहते थे जब बम्बई जाने का, बम्बई गए। उनको पता नहीं था कि अगर 50,000 लोग बाहर प्रतीक्षा करते हैं, तो 50,000 लोग अंदर भी बैठे हैं और 50,000 लोग अंदर घुसने की प्रतीक्षा में बाहर खड़े हैं। तो उनको लग रहा था कि बम्बई जाएंगे, टिकट दिलाएंगे। वो पिता थे, उनको ये बेटे में दिलचस्पी थी, क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो मुझे ले गए। और वहां जाकर हम पिता पुत्र 4 दिन तक स्टेडियम, ब्रेबोन स्टेडियम
1: जी जी
0: के चक्कर काटते रहे, और टिकट का जुगाड़ हुआ नहीं। चौथे दिन एक पुलिस वाले को हम पर दया आ गई,
1: जी
0: उसने कहा कि अरे मैंने आपको पहचान लिया है और जुगाड़ नहीं हुआ क्या? तो बाबूजी, बाबूजी कहता था पिताजी को, उन्होंने कहा कि देखिए मेरी तो कोई दिलचस्पी नहीं है, ये बच्चे का दिल टूट जाएगा, हम बहुत दूर से आए हैं, इंदौर से आए हैं, तो जैसे तैसे ये मैच देख ले। तो उन्होंने कहा एक काम करता हूं, चाय पान के समय जो बाहर आता है ना रेला, चाय पीने और मूंगफली खाने, तो मैं जब वापस जाएगा रेला तो मैं इस बच्चे को अंदर ठेल दूंगा, लेकिन आपको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, आपको अंदर नहीं जाने दूंगा।
1: अरे बाप रे।
0: तब देखे आदरणीय पिताजी बाहर खड़े रहे, मैं 13 साल का था, इतनी संवेदना भी नहीं थी कि पिताजी बाहर खड़े हैं।
1: जी जी
0: मैं अंदर फुदकता हुआ चला गया खुशी में।
1: गजब।
0: और अंदर जाकर जो दृश्य देखा, मैंने देखा 50,000, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा है, कोई भारत माता की जय के नारे लगा रहा है, कोई तरह तरह के फोटोग्राफ्स लेके ऊंचे दिखा रहा है, प्ले कार्ड्स दिखा रहा है, और ढोल मजीरे बज रहे हैं, तरह तरह की ड्रेसेस पहनकर लोग खड़े हैं। तब मेरी निगाह पड़ी कमेंट्री बॉक्स पर,
1: वाह
0: तो मैंने
1: वाह।
0: किसी से पूछा कि यार ये कमेंट्री कौन कर रहा है यहाँ पर? तो उन्होंने कहा बॉबी तेलियारखा और विजय मर्चेंट यहाँ पर कमेंट्री कर रहे हैं,
1: लेजेंड लोग।
0: मैंने जगह देखी तो मेरे दिल में एक हुक सी उठी कि यार क्या जगह है, राइट इन लाइन विद द विकेट, बिल्कुल विकेट की लाइन में है, बर्ड्स आई व्यू, पक्षी जैसे मैच देख रहा है, सीधी लाइन में स्विंग और सीम और सब कुछ दिखाई दे रहा है, गजब की जगह। मन में एक विचार आया कि क्या कभी यहां बैठने का मौका मिलेगा। और देखिए जंगली सपने भी कभी कभी कैसे सच होते हैं, कि मैंने अपनी जिंदगी का पहला टेस्ट मैच उसी ब्रेबोन स्टेडियम से, उसी कमेंट्री बॉक्स से, सन 1972-73 में तब किया जब टॉनी लुइस की टीम भारत आई।
1: 12 बरस लग गए।
0: तो 12 बरस लग गए। आप देखिए कि कैसे ये काम हो, इसलिए जो कलाम साहब कहते हैं ना कि सपने देखो तो खुली आंखों से देखो,
1: वाह वाह,
0: अगर
1: वा,
0: बंद आंखों से सपने देखोगे तो सपना टूटने के बाद वो बिखर जाएगा, लेकिन जब आप खुली आंखों से सपना देखोगे तो उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो शायद वही बात थी कि वो सपना मैंने देखा कमेंट्री बॉक्स का, वो जाकर अब पूरा हुआ। अब इसमें दो बातें हुई साहब, देखिए यूनुस जी, मैं कहना चाहता हूँ, एक तो ये कि खुली आंखों से सपना देखा, और दूसरी बात उस पिता का सहयोग जो 90 मिनट तक बाहर खड़ा रहा और वापस आने की प्रतीक्षा में इसलिए उसी जगह खड़ा रहा जो कि कहीं बच्चा गुम न हो जाए वापस आने पे, इतने भीड़ भड़के में,
1: जी जी
0: बम्बई के बारे में कुछ जानता ही नहीं, ये वापस आएगा तो भीड़ में गायब हो जाएगा, तो वहीं खड़े रहे। और जब मैं वापस आया तो मुझसे ज्यादा खुश मेरे पिताजी थे,
1: कितनी
0: कि चलो बच्चे ने मैच देख लिया। तो मैं हमेशा आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि दुनिया में दो ही ऐसे व्यक्ति होते हैं, माता पिता, जो कि आपसे किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में

0: नहीं रहते, वो चाहते हैं कि उनसे भी बेहतर आप करें, ऐसे दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होता। तो जब भी आप बड़े हो जाएं, कॉलर ऊंचे मत करिए, माता पिता को कभी मत भूलिए।
1: क्या सुंदर बात कही है। और आपने कहा कि पिताजी को आप बाबूजी कहा करते थे, तो मुझे गुलजार साहब का गाना याद आया, बचपन के एक बाबूजी थे, अच्छे प्यारे बाबूजी थे, एक था बचपन। तो इस गाने की यहां पर जगह बनाते हैं।

0: सुशील जी, 1959-60 में हम हैं, जहां पर आप ब्रेबोर्न स्टेडियम में 90 मिनट मैच देखते हैं और पिताजी बाहर इंतजार करते हैं और आप एक रोमांच लेकर बाहर लौटते हैं। यहां से आगे की कहानी?
1: नहीं, उसके बाद तो क्या, फिर वक्त बीतता गया, क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी बढ़ती रही जैसे आपने कहा,
0: और पढ़ाई साथ में चलती,
1: पढ़ाई साथ में चलती रही। विज्ञान का विद्यार्थी था, मेरा हिंदी का विद्यार्थी नहीं रहा
0: जी,
1: लेकिन अपने खुद की खुशी से मैं बड़े बड़े उपन्यास यानी कि जयशंकर प्रसाद का छायावाद, महादेवी वर्मा है ना, या सुमित्रा नंदन पंत, इन सबका खूब अध्ययन किया मैंने, और धर्मवीर भारती जी की किताबें पढ़ी, सारे उपन्यास उनके पढ़े, गुनाहों का देवता, ये सब महादेवी वर्मा की सारी किताबें पढ़ डाली।

0: तो ये तमाम चीजों से मेरी हिंदी बराबर बनी रही, हिंदी के प्रति मेरा एक विचित्र तरह का प्रेम बना रहा, एक रिश्ता बना रहा, मुझे लगा कि हिंदी मुझे खींच रही है, तो यहां से मेरी हिंदी की बुनियाद पड़ी। और
1: यहां बीच में थोड़ा सा रुकूंगा, आगे चल के धर्मवीर भारती से एक नाता बना, उसका जिक्र थोड़ा सा फ्लैश फॉरवर्ड करके करते हैं।
0: हाँ जी,
1: जब वो धर्मयुग के संपादक थे।
0: नहीं बिल्कुल, धर्मयुग में मैं जब लिखना शुरू किया 1968-69-70 के आसपास, तब उनको लगा कि हिंदी, देखिए धर्मवीर भारती जी से हमारा कोई रिश्ता तो था नहीं, उनको लगा कि मुझे उस तमाम व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए, उस हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए जो हिंदी का काम कर रहा हो। उनके दिल में बस एक ही तमन्ना थी, तो जसदेव सिंह और मुझे उन्होंने काफी प्रोत्साहित किया, उन्होंने काफी लिखवाया भी, तब धर्मयुग घर घर में धर्मयुग जाता था, प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी, तो उन्होंने हमसे काफी लिखवाया। और बाद में जब 1979 का, जिसका मैं जिक्र बाद में करूंगा, जब वापस आया ना, उन्होंने मुझे गले लगाया, घर बुलाया और कहा कि भाई आज तुमने हिंदी का नाम रोशन कर दिया।
1: वाह वाह,
0: तो ये जो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलता कि धर्मवीर भारती जी जैसा व्यक्ति, जिनसे मिलने को लोग लालायित होते थे, वो मुझे स्वयं घर बुला रहे हैं, उस समय बहुत बड़ी बात होती थी।
1: बिल्कुल, तो हम वापस स्कूल के जमाने में चलते हैं, जहां आप धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत वगैरह को पढ़ रहे हैं, और हिंदी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रुचि है, लेकिन धारा विज्ञान के छात्र की है और रास्ता इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा है।
0: हाँ, उस समय क्या होता था कि गरीबी के दिन थे, मैंने आपको बताया, किताबें थी नहीं, पैसा था नहीं, हमको लगता था कि भाइयों के जो स्लाइड रूल है, उनकी जो किताबें हैं, उनके जो कपड़े हैं, वो हमारे काम आ जाएंगे। तो एक मुद्दा ये भी था कि पैसे खर्च नहीं होंगे और ये कमजोर है तो बड़े भाई पढ़ा भी देंगे इनको, और उन्होंने पढ़ाया भी खूब, मेरी खोपड़ी में बहुत कुछ घुसाने की कोशिश की इंजीनियरिंग की, जैसे तैसे मैं पास भी हुआ, लेकिन ये समझिए कि 5 साल सप्लीमेंट्री लाकर पास हुआ, मैं बड़ी मुश्किल से पास हुआ, लेकिन इंजीनियर मैं बन गया। शक्ल सूरत से मैं लगता नहीं कि पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं इंजीनियर हूं।
1: जी जी,
0: तो इंजीनियरिंग पढ़ने से एक बात हुई कि मुझे तकनीकी चीजें समझने में बहुत सहूलियत हुई। क्या होता है, जो शिक्षा होती है ना, ये आपके दरवाजे खोलती है।
1: बहुत सही,
0: तो ये आपको चीजों को ग्रहण करने में मदद देती। तो इंजीनियरिंग पढ़ने से क्या हुआ कि गेंद का एरोडायनामिक्स बहुत आसानी से समझ में आ गया, कि कोई गेंद स्विंग होती है तो क्यों होती है, सीम के सहारे कट क्यों होती है, सीम पर पड़ती है तो उसका व्यवहार कैसा रहता है, पिच में नमी रहती है तब क्या होता है, तमाम चीजें समझने में बहुत आसानी हुई। तो इंजीनियरिंग कि पढ़ाई में भले ही मैं बहुत बड़ा विद्वान न रहा, लेकिन उससे बहुत सारी चीजें समझ में आई। और दूसरी बात ये कि जो आसपास के दूसरे कमेंटेटर्स होते थे ना, उन पर दबदबा रहता था कि भाई ये तो इंजीनियर है,
1: वाह
0: ये गलत बात नहीं करेंगे। तो ये भी एक जरा एहसास रहता था मन में
1: जी,
0: कि भाई हम जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं।
1: जी, आपके बचपन किशोरी युवा वाले दिनों में इंदौर क्रिकेट का एक गढ़ था, कुछ बड़े क्रिकेटर वहां से आते हैं, उनसे किस तरह का कनेक्शन रहा या देखना रहा उनको?
0: बिल्कुल ठीक है, आपने कर्नल सीके नायडू साहब, उनसे मेरी मुलाकात, पद्मभूषण, जो अकेले पद्मभूषण क्रिकेट के उस समय, पहले वाले पद्मभूषण उस समय, तो उनके घर पे भी काफी जाता था, उनके परिवार से काफी रिश्ता था, और उनका आखिरी इंटरव्यू मैंने किया था जो स्पोर्ट्स एंड पास टाइम में कवर स्टोरी के रूप में छपा था उस समय, इलस्ट्रेटेड वीकली में भी मैंने उनके बारे में लेख लिखा था। तो मैं हिंदी में लिखता था, मेरे बाबूजी जो थे वो अंग्रेजी में अनुवाद करते थे, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, अपने समय के भी काम थे। जिस गांव से वो आते थे, प्रतापगढ़ राजस्थान से, जहां मेरा जन्म हुआ, लेकिन बाद में मैं इंदौर आ गया, लेकिन वहां पर कोई अकेले भी काम रहे होंगे, तो उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी थी कि उसका मुझ पर भी बहुत प्रभाव पड़ा कि छोटे वाक्य, ग्रामेटिकली सही वाक्य, व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य। उनका हमेशा यह कहना था कि हिंदी भी अगर बोलो या लिखो तो व्याकरण की दृष्टि से सही बोलो या लिखो। ये चीज मेरे मन में गहरे तक समा गई थी, और इसी कारण मैं जब भी लिखा या बोला ना, जब भी मैंने कमेंट्री भी जब की, तो मैंने व्याकरण को बड़ा ध्यान रखा, और इसी कारण मेरी हिंदी, जो लोग कहते हैं, काफी शुद्ध रही। तो अब लोग कह रहे हैं तो मैं मानता हूं कि शायद शुद्ध रही होगी।
1: जी, अपने बचपन के जमाने में फिल्मों से कैसा कनेक्शन था? क्योंकि इंदौर में मुझे याद है कि मैं एक दिन सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम साहब का इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने पूरी टॉकीजों का बताया, ये यहां थी, यहां अंग्रेजी फिल्में लगती थी, यहां हिंदी फिल्में लगती थी, यहां मॉर्निंग शोज होते थे। आपका फिल्मों से कैसा?
0: नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत। मैं तो शाम को 8-9 बजे के सेकंड

0: शो देखने ही चला जाता था कुछ ना कुछ, मतलब पिक्चर तो एक आदत की तरह हो गया था कि कोई भी, या तो बाद में जब शादी हो गई तब भी पत्नी को भी काफी शौक था फिल्मों के प्रति, तो हम लोग शाम पड़ते ही हमारे कदम ऐसा लगता था कहीं जाकर देखें, ज्योति टाकेज या प्रकाश टाकेज या फिर एलोरा टाकेज, जहां अब तो रहे नहीं टाकेज, या तो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन गई हैं, लेकिन वहां जाकर फिल्में देखने का बहुत शौक रहा। और सलीम साहब से तो मेरी मुलाकात भी हुई
1: जी,
0: कई बार मुलाकात हुई, एक इंदौर में एक समारोह में साथ में मिले थे, और मुझे बहुत बहुत जीवंत व्यक्ति है। जावेद साहब से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सलीम साहब से जरूर मेरी दो तीन बार मुलाकात हुई। और एक बार मुंबई शहर में भी करसन घावरी साहब के बड़े मित्र हैं जो पुराने क्रिकेटर हैं, तो जब एक बार कमेंट्री के लिए आया तो घावरी साहब ने कहा कि यार अपन लोग बैठते हैं, सलीम साहब भी याद कर रहे हैं, इंदौर का लड़का कमेंट्री करने के लिए आया है। तो सलीम साहब के तो और क्या दिलकश आदमी,
1: वाह,
0: मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि कोई इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, और बिल्कुल उसी तरह से कि हमारे साथ बैठकर उन्होंने गाने भी गाए,
1: वाह वाह,
0: और क्या आवाज उनकी, बिल्कुल लंबा खींचते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता कहीं गला फटता ही नहीं उनका
1: जी।
0: वो दुनिया के रखवाले वाला गाना उन्होंने सुनाया था,
1: क्या
0: तो वो कितना उसमें लंबी खींच जो आती है ना तान, वो पूरा उन्होंने वैसा के वैसा सुनाया।
1: तो दो इंदौरी लोग मिल गए थे,
0: बहुत बहुत मजा आया। और मुझे लगता है कि इंदौरी लोग जब भी मिलते हैं ना आपस में, मालवा के लोग, इंदौर भोपाल के लोग, तो जब भी
1: मिलते आप मुझे शामिल कर रहे हो
0: तो बड़ा मजा आता है, ऐसा लगता है कि कोई घर के लोग मिल गए और इनके साथ खूब बात करनी चाहिए, और ऐसी भाइयों की एक बढ़ोतरी हो गई है भाइयों में।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो सलीम साहब से ये जो मुलाकात का आपने जिक्र किया, इस मुलाकात की याद के नाम वो दुनिया के रखवाले सुनते हैं।

0: सुशील जी, बहुत आनंद आ रहा है आपके बचपन के गलियारों में हम घूम रहे हैं। एक चीज जो मुझे हमेशा लगती रही, आप एक बहुत नामी क्रिकेट कमेंटेटर रहे और हिंदी क्रिकेट कमेंट्री के संस्कार जैसे बुनियाद आपने गढ़ी है। आपने स्वयं कितना क्रिकेट खेला है ये जानना मेरे लिए बहुत दिलचस्प।
1: देखिए, स्कूल में टीम में था, स्कूल में जाकर क्रिकेट खेलता था। वैष्णव हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा हूं इंदौर में, वहां जाकर खेलता था। और उस समय गरीबी के दिन थे, मैं बार बार बताना चाहता हूं कि क्रिकेट का बल्ला खरीदने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इतना शौक था कि क्रिकेट खेला। इतना समझ में आया कि जब मिड ऑफ की जगह मिड ऑन पर गेंद जाती है तो होता क्या है, बल्ला जो बल्ले का हैंडल हाथ में घूम जाता है, इस कारण मिड ऑफ का मिड ऑन में जाता है। तो ये तमाम चीजों की समझ जब आप थोड़ा बहुत खेलते हैं ना तो आपको समझ में आता है।
0: यस,
1: तो ये जरूरी है कि आप थोड़ा बहुत खेलें। ऐसा नहीं होता, सब कुछ सैद्धांतिक रूप से काम नहीं होता है इसमें, थोड़ा महसूस करते भी आना चाहिए कि कोई चीज कितनी मुश्किल या कितनी सरल क्यों होती है। तो ये एक फायदा हुआ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि ये रॉकेट साइंस नहीं है। क्रिकेट का खेल जो है ना, ये एक, अगर आप इंजीनियर हैं, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, हाई डिग्री ऑफ कॉमन सेंस अगर आप में है या क्रिकेटिंग सेंस आप में है, तो फिर आप इस खेल की बारीकियों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आजकल के कई क्रिकेटर्स ये बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास भाषा नहीं रहती है, वो कमेंट्री करते हैं तो वो कहने की कोशिश करते हैं कि साहब क्रिकेट तो हमको ही आता है, ये सब जो है ना बाकी के लोग। लेकिन ऐसी बात नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए उनको पता नहीं कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, एक बहुत मामूली विज्ञान है जो अगर आप क्रिकेटिंग सेंस है तो आप उसको समझ सकते हैं।
0: जी,
1: तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूं कि भाई आप अपनी विधा पर ध्यान दीजिए और साथ ही भाषा पर भी ध्यान दीजिए।
0: yes.
1: और ऐसा मत करिए कि हिंदी में बोल रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं। अरे भाई, देश की भाषा है, अगर आप बोल रहे हैं तो वो एहसान नहीं कर रहे हैं, या आपकी खुद की भाषा है।
0: बिल्कुल.
1: इसको सही बोलिए, और सबसे बड़ी बात व्याकरण की दृष्टि से सही बोलिए। क्रिकेट खेली नहीं जाती, क्रिकेट खेला जाता है। विकेट गीली नहीं होती, पिच गीला होता है। तो ये तमाम चीजें अगर आप सही ढंग से नहीं बोलेंगे तो देश की भाषा खराब होती है।
0: yes.
1: और मैं तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी ये कहता हूं कि भाई आपने

0: देश के क्रिकेट की बागडोर या उसके राइट्स आपने अधिकार बेचे हैं, भाषा को खराब करने के अधिकार नहीं बेचे हैं, तो ये एक देश की भाषा के प्रति उनको भी ध्यान रखना चाहिए। कोई विदेशी चैनल से इसका मतलब ये नहीं है कि देश की भाषा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखें। और क्रिकेटर्स का तो बड़ा स्वागत है, अगर वो क्रिकेट कमेंट्री के क्षेत्र में उभर रहे हैं या आ रहे हैं तो मैं तो चाहता हूं कि क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं मालूम रहती वो बता सकते हैं, जैसे ड्रेसिंग रूम में क्या वातावरण चल रहा होगा, कप्तान क्या सोच रहा होगा, तीन स्लिप और एक गली रखे थे, शॉर्ट थर्ड मैन क्यों रखा है, शॉर्ट फाइन ले का फील्डर अंदर रखा है तो बॉलर को लेग साइड में बॉलिंग नहीं करनी चाहिए अन्यथा चौका हो जाएगा, ये तमाम चीजें हमसे पहले वो समझते हैं, तो अपनी समझ को बरकरार रखें। लेकिन साथ ही भाषा के प्रति अन्याय नहीं करना चाहिए, देश की भाषा खराब करने का, ये नहीं समझे कि हिंदी भी कोई भाषा है क्या, कुछ भी बोल लेंगे चल जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी में कभी आपने सुना है कि आई इज गोइंग
1: नहीं नहीं
0: या फिर दे इज कमिंग, तो आप कितने भी बड़े आदमी हो लोग आपको सहन नहीं करेंगे। लेकिन हिंदी में हर तरह की भाषा चल रही है तो ये ठीक सहन नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूं कि जो इसको सहन कर रहे हैं ना उनका भी अपराध उतना ही बड़ा है, क्योंकि गलत चीज को और खास करके भाषा के साथ अन्याय को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही, आपने बहुत बड़ी और जरूरी बात कही है। अब मैं उस जगह पर आ रहा हूं जहां पहली बार हिंदी में कमेंट्री की परंपरा शुरू होने का ऐलान होता है और सुशील जी उस रास्ते पर बढ़ने की कोशिश करते हैं।
0: नहीं, सच बात है, आपने तो भावुक कर दिया। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में चौथे साल में पढ़ता था
1: जी,
0: और उस समय खबर आई कि पहली बार हर जगह से हिंदी कमेंट्री जरूरी है, और तब रणजी ट्रॉफी मैचों की भी हिंदी कमेंट्री, मध्य प्रदेश और राजस्थान का मैच था और 15 दिन पहले कहीं से घोषणा हुई कि वो हिंदी में कमेंट्री होनी है। बड़ी ढूंढ मचाई, सबने कहा कि बेवकूफी की बात है, हिंदी जो FPS सिस्टम का खेल 22 yards से जो शुरू होता है उसमें हिंदी का क्या काम, तो लोगों ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता। तो मैं पहुंच गया वहां पर स्टेशन डायरेक्टर के पास कि
1: आकाशवाणी इंदौर में,
0: हाँ मैं समझिए कि ये मामूली रहन सहन था, और मैं वहां पहुंचकर मैंने स्टेशन डायरेक्टर से कहा कि मैं हिंदी में कमेंट्री कर सकता हूं और आप मुझे मौका दीजिए। तो उन्होंने मुझे देखा, मुझे याद है उनकी मुस्कुराहट अभी भी याद है
1: जी,
0: उन्होंने कहा कि बॉय सिंपली गेट आउट, क्योंकि पुट ऑन सम ग्रे हेयर्स एंड देन कम, और उनका सोच बिल्कुल सही था। उस समय कमेंटेटर्स 50, 55, 60 साल के होते थे
1: और आप 18 के थे।
0: मैं 18 साल का था तो तजुर्बे का थोड़ा लेकर तो आइए ज्ञान, उसके बाद फिर बात करिए, तो वो ठीक कर रहे थे। उन्होंने मुझे वापस भेज दिया, मुझे अपमानजनक भी नहीं लगा क्योंकि आदत थी, गरीब थे तो शायद अपमान की आदत थी, तो वापस चले गए, कोई बात नहीं, टहलते हुए वापस आ गए। फिर वो दिन आ गया जिस दिन कमेंट्री होनी थी, कोई मिला ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि एक पागल सा लड़का आया था जो कमेंट्री करने की कोशिश कर रहा था, उसको बुलाकर पूछते क्या वो कर सकता है, तो मुझे ढूंढकर फिर बुलाया, तो मैं गया वहां पर और उन्होंने कहा इमेजिनरी कमेंट्री करके बताइए जरा। अब मैं तो धारा प्रवाह अंग्रेजी में करता ही था, तो मैंने कहा किसकी शैली में बताऊं,
1: अरे
0: जॉन ऑर्नॉट की शैली में बताऊं, एलन मिगलवेरी की शैली में बताऊं या ब्रायन जॉनसन की शैली में बताऊं, तो बोले अच्छा करके तो बताइए। तो मैंने अंग्रेजी में तीनों अलग अलग तरह की शैली में कमेंट्री करके बताइए, वो लोग इतने प्रभावित हुए, यार क्या गजब कमेंट्री करते हो तुम तो, लेकिन एक काम करो कि हमें तो हिंदी में कमेंट्री करनी है। अब मैं तो इसके लिए तैयार नहीं था, मुझे पता नहीं था, तो मैंने हिंदी में कुछ करने की कोशिश की, अच्छी नहीं की होगी निश्चित रूप से, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था, किसी की सुनी ही नहीं थी कभी, अच्छा हुआ नहीं सुनी थी, अगर सुनता तो शायद किसी की नकल करता, क्योंकि इतना बुद्धिमान तो था नहीं मैं, कोई नकल करने को मिल जाती तो नकल करता मैं, लेकिन जब नकल करने को नहीं मिली तो फिर अकल लगानी पड़ी।
1: क्या बात,
0: तो उसमें यह हुआ कि फिर कमेंट्री की और उन्होंने कहा कि नहीं ये चलो चला तो लेगा ये लड़का काम, तो मैं कमेंट्री की और कमेंट्री की तो ये समझिए कि खाली प्याले में एक तूफान सा आ गया। लोगों ने कहा कि ये तो क्रिकेट की हत्या हो गई, किसी ने कहा कि ये जिंदगी भर कमेंट्री सीखें तो भी कमेंटेटर नहीं बन सकते, और मैं उन्हें दोष नहीं देता, शायद अच्छी नहीं की होगी निश्चित रूप से, क्योंकि एक तो उम्र भी कम थी और परिपक्वता भी नहीं थी, लेकिन कुछ था जो स्टेशन डायरेक्टर को प्रभावित कर गया, उसकी बात मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जब ये हुआ ना इतनी ज्यादा

0: कुछ ना हुई तो पिताजी नाराज हो गए कि देखिए अपने पास पैसा तो है नहीं और अब तुम नाम के बजाय बदनामी ज्यादा मोल ले रहे हो, या तो गंभीरता से काम करो और सोचो, अच्छा काम करो। क्रिकेटर करता क्या है, उसके व्यवहार की तरफ दृष्टि डालो, उसके हाव भाव, उसका चाल चाल कैसी चलती, क्या करता है स्ट्रोक खेलते वक्त, ये सब सोच के फिर हिंदी में सोचो। अंग्रेजी में सोचना बंद करो, अंग्रेजी कमेंट्री का भूत अपने सिर से निकालो और फिर अगर करना हो दिल से महसूस करके दिलों को छूने की कोशिश करो। जब उन्होंने ये कहा तो फिर मैंने सोचा कि जैसे स्क्वायर कट करता है तो क्या करता है खिलाड़ी, मैंने सोचा कि पहले शॉर्ट पिच गेंद आती है, ऑफ स्टंप के बाहर आती है, बल्लेबाज अपने आप को गेंद की लाइन से अलग करता है, स्ट्रोक के लिए जगह बनाता है और फिर स्क्वायर कट कर देता है चार रन के लिए।
1: वाह वाह,
0: ऐसा जब सोचा ना तो मैंने देखा कि ये तो एक वाक्य भी बन गया,
1: रिदम आया,
0: शैली भी बन गई। शैली मतलब जो कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह की शैली बन जाएगी। आज मैं चार वाक्य बोलता हूं लोगों को पता चल जाता है कि कमेंटेटर कौन है ये। तो ये जो पहचान बनी ना इस कारण बनी कि हिंदी में मौलिक रूप से मैंने सोचना शुरू किया और इसका ही फल है कि आज हिंदी में जितनी भी भाषा, जितनी भी शब्दावली बहुत सारी जो चल रही है, जैसे कि कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी के लिए मैं शंका का गलियारा मैं कहता था कि किसी ने भी कभी सोचा नहीं था।
1: बिल्कुल,
0: कई इस तरह के शब्द जैसे अपनी नजरों के ठीक नीचे खेल रहे हैं, ये तकनीकी शब्द लेकिन बिल्कुल सरल हिंदी में, तो बिल्कुल तकनीकी रूप से बिल्कुल सही खेल रहे हैं, नजरों के ठीक नीचे खेल रहे हैं। तो ये जो सिर बिल्कुल स्थिर रख रहे हैं जब खेलते हैं, ड्राइव करते हैं,
1: सीमा
0: तो ये तमाम चीजें, ये सब तकनीकी चीजें हिंदी में कभी थी नहीं।
1: आपने सीमा रेखा जैसा शब्द भी गढ़ा।
0: क्यों याद दिलाते हैं। मेरी पत्नी का नाम रेखा है।
1: अच्छा,
0: तो क्रिकेट में तो उनकी इतनी ज्यादा दिलचस्पी रही नहीं। लेकिन वो क्या हुआ कि मैंने सोचा कि पहले मैं बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए ऐसा बोलता था। मैंने सोचा कि बाउंड्री लाइन भी क्यों बोलूं, सीमा रेखा, इसका हिंदी में अनुवाद करो, सीमा रेखा के बाहर चार रन के। ये जब बोला तो पत्नी ने आड़े हाथों ले लिया घर में आते ही।
1: अच्छा,
0: बोले रेखा तो मैं हूं, ये सीमा कौन है।
1: क्या बात है, शानदार बात है। यहां ना एक गाने की जगह बन रही है पर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, गाना थोड़ा आगे करेंगे, लेकिन एक दिलचस्प चीज मुझे समझ में आई कि आपने अंग्रेजी में कमेंट्री करके सुनाई थी, मैं वो थोड़ा सा सुनना चाहता हूं।
0: अब क्या वो इमेजिनरी कमेंट्री करते थे कि
1: जी जी, तो किसकी शैली में है वो भी बताइएगा।
0: नहीं, जॉन ऑर्लेट बोलते थे जैसे जी, के फ्रेडी ट्रूमैन कमिंग इन फ्रॉम द वेक्सल एंड कम्स इन एंड बोल्स टू सुनील गावस्कर एंड गावस्कर फॉरवर्ड डिफेंसिवली बैक टू द बॉलर नो रन।
1: वाह, क्या ग्रेन्स, और वो जो रिदम है ना इस कमेंट्री का, ये टिपिकल अंग्रेजी रिदम है, इसको आपने नहीं अपनाया था। और इसकी बात आगे करते हैं, यहां गाना लेके आता हूं, इम्तिहान फिल्म का गाना जो आपकी जिंदगी से मेल खाता है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, सुंदर गाने की जगह बनी।

0: मैं वो बात कर रहा था कि अंग्रेजी कमेंट्री का एक माइलस्टोन तय था, एक पैमाना तय था कि ये ऐसी होती है। हिंदी कमेंट्री का आप अपना एक संसार रच रहे थे, वहां किस तरह की चुनौतियां आपके सामने थी?
1: नहीं देखिए, बहुत बड़ी चुनौतियां। एक तो कारण ये कि बहुत बड़ा वर्ग आपको सुन रहा है,
0: जी
1: 70% आबादी के प्रति आप जिम्मेदार हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी, राज सिंह डूंगरपुर ने मुझे बात बताई थी कि कभी भी कोई गलती करो ना, ये मत सोचो कि रेडियो कमेंट्री है, किसने देखा कि क्या हुआ था। आप अगर गलत भी कुछ बोल दिया तो उस पर टिके रहो, लोग ऐसा कहते हैं, कई हिंदी कमेंटेटर ऐसा सोचते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी को समझो कि आप ईमानदारी से बात करो, कि अगर लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी सत्य की इतनी ज्यादा है कि आप गलती करो तो विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो। एक किस्सा है, कानपुर टेस्ट मैच में मुझे याद है कि प्रणव रॉय बोल्ड हो गए थे, क्लीन बोल्ड हो गए थे एक गेंद पर, और किसी कमेंटेटर ने कहा कि ऑफ स्टंप से मिडिल स्टंप की तरफ गेंद आई। तो मैंने कहा कि राज भाई, वो मुझे लगता है कि मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ आई, और बैट के बाहरी किनारे को भी छोड़ती हुई ऑफ स्टंप उड़ गया था। तो बोले यार चलो, राज सिंह जी ने तो वो बोला नहीं था, किसी तीसरे ही कमेंटेटर ने कहा था। लेकिन उन्होंने कहा एक काम करते हैं, लंच के समय अपन प्रणव रॉय से ही पूछते हैं कि क्या हुआ था। तो हम लोग लंच के समय गए, राज सिंह जी कितने बड़े आदमी थे, देखिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट भी रहे। तो वहां जाकर प्रणव रॉय से पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ बाहर की तरफ निकल गई थी।
0: गजब।
1: तो देखिए, उस कमेंटेटर ने क्षमा नहीं मांगी, लेकिन राज सिंह डूंगरपुर ने ऑन बिहाफ ऑफ द कमेंट्री टीम उन्होंने कहा कि हम क्षमा चाहते हैं, हमसे ये गलती हो गई थी कि हम अंदर की तरफ आई और बैट और पैड के बीच में निकली, ऐसा हमने कहा था, लेकिन गेंद दरअसल बाहर की तरफ निकली।
0: उल्टा हुआ था।
1: हाँ, तो सत्य के प्रति उनकी जो आस्था थी वो मेरे दिल में घर कर गई कि
0: जी
1: आज भी मुझसे कुछ गलती होती है तो मैं तुरंत स्वीकार कर लेता हूं। और सच मानिए, लोगों को ये बात पसंद आती है
0: बिल्कुल।
1: कि आप अगर विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो, क्योंकि आपकी इच्छा तो झूठ बोलने की है नहीं, आपसे कोई गलती, आप भी तो इंसान है ना, बैट्समैन से गलती हुई तो वो आउट हो जाता है, अंपायर से गलती हुई तो गलत आउट दे देता है, आप भी तो आखिर इंसान है, आपसे गलती हो सकती है, आप विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो।
0: क्या बात है। पहला बहुत ही बड़ा मैच जिसकी कमेंट्री करने का आपको मौका मिला था, वो यादें हमारे साथ बांटिए।
1: नहीं, 1972-73 का जो मैं
0: जी
1: आपको जिक्र कर रहा हूं,
0: ब्रेबोन
1: ब्रेबोन स्टेडियम, तो वो तो मैं भूल नहीं सकता कि हमारे सामने ऋषि कपूर बैठे हुए थे, डिंपल कापड़िया, उस समय बॉबी फिल्म साइन नहीं की थी, तब तक फिल्म आई भी नहीं थी,
0: जी,
1: दोनों दिख रहे, विनोद खन्ना को हमने देखा, फिर सामने बैठे थे डेविड, बिल्कुल गंजे
0: डेविड अब्राहम।
1: हाँ,
0: जी
1: तो डेविड वो अपनी भीड़ के साथ नारे लगा रहे थे भारत माता की जय, और मतलब अद्भुत दृश्य था। विनोद खन्ना को देखा हमने
0: जी
1: कि अपने मतलब इतने आकर्षक ये लोग, कि अब मैं भी छोटा था ना, 24-25 साल का ही था, तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती थी, पहला टेस्ट मैच करता था। और सच मानिए, मुझे पता ही नहीं था कि मैं अच्छा कमेंटेटर हूं या नहीं, मुझे लग रहा है कि मौका मिल रहा है कर लीजिए।

0: तो कोई एक सपना था कि अच्छे काम की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं माता पिता की सलाह से, तो उस काम की तरफ बढ़ गए। तो ये वो एक पहला मौका, बहुत बड़ा मौका था। और कुछ गलतियां मैं करता था, जैसे 39, जैसे मालवा के लोग बोलते हैं ना,
1: जी जी
0: है ना, 69, 69 को, तो
1: हाँ
0: वो शुरू शुरू में गलतियां होती थी, लोगों ने काफी प्रताड़ित भी किया फिर उसको, लेकिन सीखने की, देखिए हमेशा मैंने ये रखा कि सीखने की इच्छा रखी, गलतियां की तो सीखने की इच्छा रखो। कम उम्र थी, सीखने का मौका मिला, लेकिन धारा प्रवाह कमेंट्री करता था।
1: जी जी
0: और धारा प्रवाह तो कई बार मेरी पत्नी से लोग, उनकी सहेलियां पूछती हैं कि इतना धारा प्रवाह ये कमेंट्री करते हैं तो क्या आपके सामने भी बोल पाते हैं? और उन्होंने उन्होंने कहा, बेचारे बोल पाते होते तो वहां पर इतनी धारा प्रवाह कमेंट्री करने की जरूरत क्या पड़ती। तो ये धारा प्रवाह का सिलसिला चलता रहा, तो एक रिदम था, सही शब्द सही जगह।
1: बिल्कुल।

0: पाते हैं, उन्होंने कहा बेचारे बोल पाते होते तो वहां पर इतनी धारा प्रवाह कमेटी करने की जरूरत क्या पड़ती है। तो ये धारा प्रवाह का सिलसिला जी चलता रहा। तो एक रिदम था, सही शब्द सही जगह।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्रिकेट कमेटी में सबसे बड़ी बात सही शब्द सही जगह। तो चूंकि इसमें साहित्य बहुत काम आता है,
1: बिल्कुल,
0: आजकल के क्रिकेटर्स के साथ दिक्कत यह है कि साहित्य नहीं पढ़ते हैं, पढ़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो रोमन लिपि पढ़ते हैं, उनको पता नहीं हिंदी साहित्य तो पढ़ते ही नहीं है अधिकांश। उसमें 90% लोग जो आज कमेंट्री कर रहे हैं
1: जी,
0: टेस्ट क्रिकेटर्स जो कर रहे हैं, उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हिंदी पढ़े भाई,
1: बिल्कुल,
0: साहित्य पढ़ते हैं तो आपको क्या होता है कि संवेदनशीलता आती है, संतुलन की भाषा, संतुलन आप कैसे आएगा। जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, सहवाग की सबसे बड़ी बात क्या थी कि संतुलन, बॉडी बैलेंस। तो ये संतुलन कमेंट्री में भी बहुत होता, संतुलन कैसे आएगा, निष्पक्ष कमेंट्री कैसे आएगी। आज हम देखते हैं कि पक्षपातपूर्ण कमेंट्री होती है, भारत ऐसा कर देगा तो अच्छा हो जाएगा। भाई आप निष्पक्ष कमेंट्री के लिए बैठे हो।
1: बिल्कुल,
0: रिची बेनो ने भी कहा है कि आप निष्पक्षता बरती है, कमेंट्री हमेशा निष्पक्षता का काम है, आप किसी पक्ष के नहीं है। तो ये एक बात समझने की है।
1: बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है आपसे बातें करके सुशील दोषी जी। और अब मुझे लगता है कि ड्रिंक्स ट्रॉली जैसे आती है ना क्रिकेट में, वैसे यहां पर गाना आएगा।

जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग आज आपने सुना मैटिनी शो कार्यक्रम में। सुशील जी से बातों का ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। अगले हफ्ते यानी 8 अगस्त को इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, तो जरूर सुनिएगा मैटिनी शो 8 अगस्त को दिन में 11 बजे। आपको बता दें इस कार्यक्रम के लिए संपादन और प्रस्तुति तीर्थी कामले की। मिलेंगे अगले हफ्ते, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

0: ये विविध भारती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश में विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसे 5,640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने प्रधानमंत्री को हवाई अड्डे की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी। श्री मोदी आज राज्य में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी

0: थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाई जानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। श्री जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। वहीं मुक्केबाजी में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक में रजत, जबकि यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर ने डेकथलॉन में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने अब तक 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 23 पदक जीत लिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, इस कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: मदन मोहन की तर्ज पर लता मंगेशकर और साथियों को आपने सुना साहिर लुधियानवी के बोल थे, गजल फिल्म की ये प्यारी सी गजल आपने सुनी।
1: देख लिया कहां रहता हूं, जहां मौत जिंदगी पर हंसती है।
2: वो दिन दूर नहीं दीपक जब जिंदगी मौत पर हंसेगी।
1: लेकिन कब, कैसे
2: मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो।

सुमन कल्याणपुर और सखियों को आपने सुना फिल्म पूर्णिमा में। भरत व्यास के बोलों को शुरू में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: लता मंगेशकर की आवाज में हसु जयपुर का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन की बनाई तर्ज थी, फिल्म थी दिल एक मंदिर।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और साथियों को आप सुन रहे थे। शैलेंद्र का लिखा गीत था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी, फिल्म थी दिल अपना और प्रीत पराई। आज कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं श्रोताओं अभिनेत्री मीना कुमारी पर फिल्माए गए गीतों को।

0: गुलाम मोहम्मद की तर्ज थी मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म पाकीज़ा से।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है,
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: में काम किया।
1: ऐसे प्यार को क्या कहिए
2: मैं चुप रहूंगी। इस फिल्म का गीत था लता मंगेशकर मोहम्मद रफी का गाया, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था। यादों की महफिल कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, विविध भारती की सुर लहरियों पर आपके रेडियो सेट पर जब ये कार्यक्रम शुरू होता है तो हम लेकर आते हैं बहुत से ऐसे नगमे जो आपके दिल में समाये हुए हैं। तो आज भी कुछ ऐसे ही नगमे हैं। वैसे हमारे श्रोताओं ने फेसबुक पर इबारत पढ़ी है और वो समझ ही चुके हैं कि आज इस कार्यक्रम में

किस हसीन नाज़नीन और मशहूर अभिनेत्री के गीत हमने शामिल किए हैं। ये इबारत जो आज हमने पोस्ट की है फेसबुक पर, आपके लिए एक बार फिर से पढ़ देते हैं। उनका आना था, मौसम आशिकाना हो गया, हुस्न का वो नाज़ो अंदाज देख चांद जाने कहाँ खो गया, कुदरत ने न जाने कहाँ से छिलकाई ये बदरिया, सौंदर्य ऐसा जैसे सावन के मौसम की रात, नगमा और शेर से छलकते हुए जज्बात उस महज़बीन के, नरगिस के फूल सी जैसी आंखें, फिर प्यार हो जाए तो हम क्या करें, दो सितारों ने कहा ये कौन हुस्न परी आई है जिसने तन मन की सुदबुद को बेगाना कर दिया, वक्त आज भी वहीं ठहरा है खामोशी में, कभी धड़कनों में कभी दुआओं में तेरा इंतजार रहता है, गुलों में रंग भरे जब बाद नौबहार चले, चांद चमके खुदा करे उस रोज तू आए। श्रोताओ, आज बात है एक नाज़नीन चेहरे की जो जब भारतीय सिनेमा के रुपहले पर्दे पर नजर आता तो लोग देखते ही रह जाते। ये थी अभिनेत्री मीना कुमारी, जिन्होंने अपने अभिनय के फन से सबके दिलों में एक ऐसी जगह बनाई जो उनकी याद से कभी खाली न हुआ। मीना कुमारी की याद को आज भी दिल कहीं ढूंढता है। आज उनकी जन्म जयंती है। उनकी फिल्मों के चंद नगमे हमने सुरीला सफर कार्यक्रम में लिए हैं और इन्हीं नगमों से इस कार्यक्रम को आज सजाया है। तो बताइए कि फिल्मों में आपको मीना कुमारी की अदायगी कैसी लगती थी, उनकी फिल्मों की कौन सी यादें हैं जो आपके साथ आज भी हैं, उन पर फिल्माया गया कौन सा प्यारा सा गीत है जो आपको आज भी बहुत पसंद आता है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर हम सभी श्रोताओं का। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार, और आपको बताना है इस गीत के संगीतकार।

ये परिंदों की आवाज और ये कौन सी खास जगह है श्रोताओ, जहां मीना कुमारी पर ये गीत फिल्माया गया, यानी स्क्रीन पर जो दिखाई देता है वो आपको बताना है। और फिल्म पाकीज़ा का ये गीत था, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, गुलाम मोहम्मद की तर्ज थी। तो फिल्म पाकीज़ा जो थी वो अपने डायलॉग्स के लिए भी बहुत जानी जाती थी। इस फिल्म का कौन सा डायलॉग है जो आपको बहुत पसंद आता है, ये आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख कर भेज सकते हैं। हमारी श्रोता ने लिखा है कि आज सुरीला सफर ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी को समर्पित है। मीना कुमारी हिंदी फिल्मों की एक ऐसी महान अभिनेत्री थी जिनके अभिनय में भावात्मक गहराई और संजीदगी थी। वे अभिनेत्री होने के साथ साथ एक उम्दा शायरा और पार्श्व गायिका भी थी। फिल्मों में उनका योगदान अमूल्य है। वे केवल एक कलाकार नहीं बल्कि एक युग थी जिन्होंने अभिनय को भावनाओं की सच्ची अभिव्यक्ति के साथ पिरोया यानी बनाया। उनका नाम आज भी भारतीय सिनेमा में आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। और इन्होंने कुछ गीत भी अपनी पसंद के भेजे हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि आज मीना कुमारी जी के फिल्मों के गीत से सजेगी महफिल सुरीला सफर कार्यक्रम की। एक और श्रोता ने लिखा है कि अभिनेत्री मीना कुमारी जी को परिभाषित करता ये गद्यांश नजर आ रहा है जिन्होंने अभिनय को अलग आयाम से नवाजा। जी हाँ, मीना कुमारी जी की जो अदायगी थी श्रोताओं वो बहुत ही अलग थी। वैसे उन्होंने बहुत कम समय काम किया फिल्मों में, लेकिन जो सिल्वर स्क्रीन पर उनकी एक पहचान बनी वो आज भी कायम है। मीना कुमारी की जो फिल्में थीं, कौन सी फिल्में आपको बहुत पसंद आती हैं और कौन सा किरदार पसंद आता है, ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की भारत में कुछ गीतों के नगीने सजे हैं जो एक महान कलाकार की याद का दिन है। मीना कुमारी जी को शत शत नमन, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने उन्हें नमन किया है इस कार्यक्रम में अपने जो उनकी प्रतिक्रियाएं हैं उनके द्वारा। ये गीत आपको पहचानना है श्रोताओं और बताना है इस गीत के गीतकार कौन हैं और मीना कुमारी जी के साथ कौन नजर आते हैं।

शंकर जयकिशन की तर्ज थी श्रोताओं लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये गीत आपने सुना दिल अपना और प्रीत पराही फिल्म से। आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, पहले फिल्म में गुलाम मोहम्मद साहब की तर्ज थी और इसमें शैलेंद्र की रचना थी। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि दद को अगर कभी कोई चेहरा मिला तो वो मीना कुमारी थी। उनकी आंखों की खामोशी और अभिनय की गहराई सीधे दिल को छू जाती थी। उन्हें यूं ही ट्रेजेडी क्वीन नहीं कहा गया, शरत और सफलता के बीच भी उनके जीवन का अकेलापन उनकी शायरी और अदाकारी में साफ झलक था। आज भी उनका नाम संवेदनाओं और दर्द की एक अमर दास्तान बनकर याद किया जाता है। लेकिन उनकी आप जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखेंगे श्रोताओं, तो वो इतनी खूबसूरत नजर आती हैं मीना कुमारी के, और उनका नृत्य भी जैसा कि आपने इस गीत में भी देखा बड़ा ही खूबसूरत है। तो मीना कुमारी ठीक है ट्रेजेडी क्वीन के रूप में जानी तो जाती हैं, लेकिन उनकी जो मुस्कुराहट थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप चाहें तो जरूर लिखें इस बात को, क्योंकि वो मुस्कुराते बड़ी खूबसूरत लगती थी। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि कुछ गीत जो हैं वो समझ में आ रहे हैं, इतने गीत तो याद नहीं आ रहे फिर भी, लेकिन अब देखना है कि इनमें से कौन सा गीत हमारे जो है वो लिस्ट से मैच होता है। एक और श्रोता लिखती हैं कि इनकी फिल्में केवल देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। वो हर पीढ़ी को ये सिखाती हैं कि महान अभिनय ऊंची आवाज या भव्य दृश्यों से नहीं बल्कि आंखों में उतर आए सच्चे एहसासों से जन्म लेता है। मीना कुमारी जी आज हमारे

अभिनेता सुनील दत्त के साथ ये फिल्म थी मैं चुप रहूंगी। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में राजन कृष्ण का लिखा ये गीत आपने सुना। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस फिल्म के बारे में, इस गीत के बारे में, जो इन गीतों के बारे में जो मीना कुमारी पर फिल्माया गया उसके बारे में लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं, दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म में उनका किरदार बहुत कम बोलता है, लेकिन करुणा के मन की पीड़ा मौन समर्पण और त्याग उनकी आंखों से स्पष्ट झलकते हैं। बिना कुछ कहे भी राजकुमार सुशील के प्रति उनके प्रेम और समर्पण को स्क्रीन पर महसूस किया जा सकता है। जी हाँ, तो श्रोताओं, मीना कुमारी जी पर तो बहुत सारे डायलॉग हैं, आपको उन पर फिल्माया गया कौन सा डायलॉग सबसे अच्छा लगता है? एक और श्रोता ने लिखा है फिल्म के बारे में कि अजीब दास्तां है, लता मंगेशकर जी की आवाज और ऑन स्क्रीन उदासी और प्रेम की पीड़ा को अमर आवाज देता है ये गीत। इस गीत के बारे में इन्होंने लिखा है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझसे कोई ये पूछे कि मीना कुमारी जी की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, मेरा जवाब होगा मुझे उनकी सभी फिल्में बहुत अच्छी और लाजवाब लगती हैं। जी हाँ, मीना कुमारी

ये गीत आप सुन रहे थे जो मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया जिंदगी और ख्वाब फिल्म का ये गीत था और प्रदीप की ये रचना आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मीना कुमारी एक ऐसी अभिनेत्री जो अपने आप में एक भारतीय फिल्म में एक युग हैं। अभिनय में मीना कुमारी जी का कोई तोड़ नहीं था और साथ ही साथ वो एक बहुत अच्छी शायरा भी थी। उनकी मनमोहक आंखें संवाद खासकर दर्द में डूबे तो दर्शकों के दिल में छा जाते। मीना कुमारी जी अभिनेत्री यदा कदा ही उनकी तरह होती हैं और चित्रलेखा और आरती फिल्म वगैरह के बारे में इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि जब फिल्म का प्रसिद्ध गीत चलते चलते रिकॉर्ड किया जा रहा था तब स्टूडियो में ये गीत सुनकर मीना कुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि ये गीत सिर्फ साहिबजान का नहीं बल्कि उनके अपने दिल की गहराइयों की आवाज और उन्होंने संगीतकार गुलाम मोहम्मद को बधाई दी। तो ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं श्रोताओं जो मीना कुमारी जी के बारे में जुड़ जाती हैं। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि पाकीज़ा मूवी का गीत जो है वो अच्छा लगता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, पूरा जीवन इसी तरह ख़त्म हो गया चाहे पाकीज़ा हो या साहब बीबी और गुलाम। तो साहब बीबी और गुलाम फिल्म की कुछ यादें आपके साथ हों तो आप उसे बांट सकते हैं। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं फिल्म मैं चुप रहूँगी, मीना कुमारी हैं इसमें, सुनील दत्त हैं इसमें और तमाम इन्होंने डिटेल लिखी है उन गीतों की।

उस फिल्म की। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी पर आज का कार्यक्रम है और मैं बचपन से ही मीना कुमारी जी का फैन रहा हूँ, तो आपने कौन कौन सी फिल्में उनकी देखी हैं? और हमने आपसे पूछा भी था कि कौन सा वो प्यारा सा डायलॉग है जो मीना कुमारी पर फिल्माया गया और आपको बहुत पसंद है और इस गीत को आपको पहचानना है।

मीना कुमारी पर फिल्म आया गया ये गीत था आजाद फिल्म से। आजाद फिल्म में उनके को स्टार कौन थे श्रोताओं? और अगर आप किसी जो खास उनके को स्टार रहे किसके साथ, यानी आप जोड़ी मीना कुमारी की पसंद करते थे या किन के साथ वो सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी, ये आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। हमारी श्रोता लिखती हैं कि मीना कुमारी को अपने अभिनय के लिए कई बड़े सम्मान मिले। उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। बैजू बावरा, परिणीता, साहब बीवी और गुलाम और काजल जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। एक और श्रोता लिखती हैं, मीना जी की छोटी छोटी मगर नशीली आंखें बेहद खूबसूरत लगती थीं। वो दर्द से भरी आंखें जैसे बहुत कुछ कह रही हों, उनको मेरा शत शत नमन। एक और श्रोता ने लिखा है, आपने मीना कुमारी पर फिल्माए गए गीतों में सबसे पसंदीदा गीत की चॉइस पूछी है, जो गीत दिल एक मंदिर फिल्म से है और हमें सबसे ज्यादा पसंद है, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पाकीज़ा का संवाद जो है वो आपके पांव मैंने देखे, बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पे मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। ज्यादातर श्रोताओं ने इसी डायलॉग के बारे में लिखा है। एक और श्रोता लिखती है कि मीना कुमारी अपने कलामों में

नाम का इस्तेमाल करती थी और उनके निधन के बाद उनकी कविताओं का संग्रह तन्हा चांद नाम से प्रकाशित हुआ। जी हाँ, नास नाम से वो लिखा करती थी। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मीना कुमारी को हंसते हुए बहुत कम देखा गया है, अतः मुस्कुराहट पर टिप्पणी मुश्किल है। वैसे जो गीत हमने आपको सुनवाया आज़ाद फिल्म का, उसमें तो मीना कुमारी बहुत ही प्यारी नज़र आती हैं और खिलखिलाती हुई नज़र आती हैं। तो आपको बताना है कि जब वो छोटी थी यानी बाल कलाकार के तौर पर उनकी पहली कौन सी फिल्म थी, और फिल्म जो रिलीज हुई और रातों रात जिससे मीना कुमारी स्टार बन गई, ये फिल्म कौन सी थी? आपकी सहूलियत के लिए बता दें, 1952 में रिलीज ये फिल्म थी।

श्रोताओं कि इस गीत को किसने गाया। नूरजहां फिल्म का ये गीत था, शकील बदायूं ने लिखा, रोशन की तरज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि दिलीप कुमार जी को ट्रेजेडी किंग नायक के रूप में प्राप्त था ये कह सकते हैं कि तमगा, कि मीना कुमारी जी को नायिका के रूप में प्राप्त था। जितनी आसानी से वो किसी किरदार को बखूबी निभाती थी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। छोटी बहू, साहब बीवी और गुलाम फिल्म का दर्द उनकी भावना को जिस तरह से प्रकट करता है वो बहुत ही सराहनीय है। एक और श्रोता ने लिखा है कि कुछ चेहरे समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, कुछ चेहरे यादों की चांदनी बनकर हमेशा चमकते रहते हैं। मीना कुमारी उन्हीं विरली शख्सियतों में से एक थी। उनकी मुस्कान में मासूमियत, आंखों में अनकहे जज्बात और अदाकारी में ऐसी सच्चाई थी कि हर किरदार एक एहसास बन गया। शायद इसीलिए आज भी उनका नाम आते ही दिल में गजल सी नरमी और पुराने गीतों की मधुर गूंज उतर जाती है। अभिनेता राजकुमार के साथ मीना कुमारी की कितनी फिल्में हैं श्रोताओं? इस फिल्म में एक और मुख्य कलाकार हैं जो मीना कुमारी के साथ हैं, वो कौन है?

दिल एक मंदिर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। मीना कुमारी पर फिल्माया गया और इस फिल्म में दो कलाकार थे, राजकुमार और राजेंद्र कुमार। यही हमने आपसे पूछा था और हमारे श्रोताओं ने बताया भी है। और बतौर बाल कलाकार जो मीना कुमारी की फिल्म आई पहली, ये थी लेदर फेस। इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं ने लिखा है, बेबी मीना।

के नाम से प्रसिद्ध हुई। वो 1946 में बच्चों का खेल, 1952 में बैजू बावरा फिल्म थी, जिसके बारे में हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि ये फिल्म ऐसी थी जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। 1953 में रिलीज हुई परिणीता, ये भी व्यावसायिक रूप से सफल थी। और बैजू बावरा फिल्म में क्या किरदार था श्रोताओं मीना कुमारी का, ये आप जरूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज मीना कुमारी जी का जन्मदिन है, उनको अभिवादन करते हुए सुरीला सफर कार्यक्रम में ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के साथ कहना चाहूंगा कि उनकी जो फिल्में थीं उनमें आजाद कोहिनूर बहुत कामयाब रही। आज इन दो सितारों का जमीन पर मिलन है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि दुनिया के खूबसूरत ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी को समर्पित है कार्यक्रम। उनकी फिल्मों में संवाद, अदायगी, अभिनय और ऐसा तालमेल था कि उनकी आवाज में खास खनक और रूहानी दर्द छिपा हुआ था जो साधारण संवादों को भी असरदार बना देती थी। वो केवल मुंह से संवाद नहीं करती, बोलती, बल्कि उनका पूरा जो शरीर था, उनकी आंखें अर्थों का बयां करती थी। और प्रतिभा के बारे में लिखते हैं कि उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो कोई अभिनय नहीं बल्कि अपने दिल की बातों को साझा कर रही हैं। फिल्म बैजू बावरा में कौन थे मीना कुमारी के साथ,

भारत भूषण मीना कुमारी के साथ थे श्रोता, और इसकी इस फिल्म के जो गीत थे वो भी बहुत मकबूल हुए थे। वैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि मीना कुमारी की किसी एक फिल्म को अगर आप चुनना चाहें जो आपको सबसे अच्छी लगती है, तो उस फिल्म का नाम आपको बताना है जो आपको सबसे अच्छी लगती है। एक श्रोता ने लिखा है कि मीना कुमारी भले ही ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर हुई, लेकिन उनकी कॉमेडी भी बहुत अच्छी थी। तब हालांकि उन्हें कॉमिक रोल करने का बहुत कम मौका मिला। जी हाँ, मीना कुमारी कॉमेडी रोल में भी बहुत अच्छी लगती थी, और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनमें उनका किरदार बहुत ही चुलबुला है, खासकर उनकी जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में हैं। तो उनकी कलर फिल्में भी हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में भी हैं। वो उनकी

सी जो फिल्में हैं वो आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं? यानी मीना कुमारी किन फिल्मों में ज़्यादा अच्छी लगती हैं? ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा सुंदर लगती हैं आपको या कलर में? और आपको कोई एक फिल्म बतानी है

मीना कुमारी जी बड़ी खूबसूरत लगती हैं इस गीत में, यानी इस गजल में। श्रोताओं, नगमा शेर की ये सौगात उन्होंने किसके लिए पेश की फिल्म में, ये आपको बताना है। और ये भी आपको बताना है कि मीना कुमारी की आखिरी फिल्म कौन सी थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मीना कुमारी जी को समर्पित ये कार्यक्रम उनसे जुड़ी सत्य घटना का जिक्र करना चाहूंगा, जरूरी हो गया है, जिससे मीना कुमारी जी की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। बात फिल्म पाकिजा की शूटिंग के दिनों की है। मीना जी और कमाल अमरोही जी की कार का मध्य प्रदेश के शिवपुरी के जंगलों में पेट्रोल खत्म हो गया, तो कुछ इन्होंने जो है वो इनकी बातें लिखी है उस समय की, जो शायद ये वाकया इनके साथ हुआ होगा। और अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं उसमें ये बताना है आपको कि ये गीत एक और गायक की आवाज में है, ये फिल्म कौन सी है और वो आवाज कौन सी है, मीना कुमारी जी की आखिरी फिल्म कौन सी है।

इस गीत को मोहम्मद रफी साहब ने भी गाया है श्रोताओं, और आप सुन रहे थे भीगीरात फिल्म का ये गीत। हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा था कि मीना कुमारी जी को तो मुस्कुराते हुए कम ही देखा है, तो फिर आप इस गीत के बारे में क्या कहेंगे जो आपने सुना अभी अभी? कितनी प्यारी लगती हैं मीना कुमारी जी इस गीत में, ये आप जब इसका पिक्चराइजेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो मीना कुमारी की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जिनमें उनकी खूबसूरती देखते ही बनती है, तो वो अपने चेहरे के भावों से भी जबरदस्त एक्टिंग करती थी। ऐसा लगता था जैसे वो किरदार को जी रही हो।

सितारों को आपने पहचाना होगा श्रोताओं, इन दो सितारों की कौन सी वो फिल्म है दूसरी जो आपको अच्छी लगती है?

कोहिनूर फिल्म के इस गीत की झलक आपने सुनी श्रोताओं, और ये गीत किस फिल्म का है इसकी भी एक झलक आपको सुनवा देते हैं।

हमारी श्रोता ने लिखा है कि साहब बीवी और गुलाम एक बहुत ही सराहनीय मार्मिक भावपूर्ण फिल्म है, जहाँ तक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के शौकीन लोग हैं इसे बहुत पसंद करते हैं। जहाँ इसमें बहुत सुंदर लगती है मीना कुमारी। सिने जगत की मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी के गीत आज शामिल थे सुरीला सफर कार्यक्रम में। श्रोताओं, आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरीला सफर ये कार्यक्रम अब यहीं सम्पन्न हो।

दोस्तों, त्रिवेणी की धाराएं आज मिल रही हैं बारिश की बूंदों पर। थोड़ी खुशी थोड़ा गम अपने आगोश में समेटे बारिश जब आती है तो गर्मी से निजात दिलाती है, नहीं आती तो परेशानियों का पहाड़ ठेल देती है धरती पर। लोग बूंद बूंद के लिए तरस उठते हैं। हर मौसम में छिपा होता है थोड़ा न थोड़ा कहर, ये प्रतीक है इंसानों का। हर इंसान में खामियां और अच्छाइयां होती हैं। स्वीकार कीजिए अच्छाइयां, दूर फेंकिए बुराइयां। बरसात के मौसम की खूबियों से खुशी पाइए, इसके कहर से बचने का उपाय सोचिए, तभी बरसात के मौसम की खूबसूरती को आप महसूस कर पाएंगे।

मखमल की चादर सी बिछ जाती है जब होती है बरसात। पानी से नहाए पेड़ पौधे हरे रंग की पोशाक पहनकर झूमने लगते हैं। क्या आपने सोचा है, अगर बारिश न हो तो जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं का क्या हो, जिनका जीवन यापन ही पेड़ पौधों और जलाशयों से होता है। अगर बारिश नहीं हो तो नदी तालाब सूख जाते हैं, जंगल के पशु पक्षी प्यासे ही दम तोड़ने लगते हैं। अब आप सोचेंगे, हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम पेड़ पौधों को जिंदा रख सकते हैं, नए पेड़ पौधों की नई पीढ़ी तैयार कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण हमारी तरह स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ पर्यावरण से संतुलित बारिश होगी। हम बरसात के गीत यूं गाएंगे।

बरसात के सुहाने मौसम का गुणगान करना और बारिश की खूबसूरती पर फिदा होना सिर्फ इतना काफी नहीं है, हम सबकी एक जरूरी जिम्मेदारी है बारिश के पानी को इकट्ठा कर संग्रह करना। वर्षा जल के संग्रहण के अंतर्गत घरों की छतों पर पड़ने वाले वर्षा जल को एकत्रीकरण के लिए बनी टंकियों से जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा पत्थर से विशेष तरह की नालियां बनाकर जल संग्रहण किया जाता है। खोद कर बनाए गए तालाबों का निर्माण, पत्थरों और सीमेंट से किनारा बनाकर बीच में गड्ढा खोद कर जल संग्रहण और भी बहुत सारे तरीके इजाद किए जा चुके हैं। चलिए खुद से पूछें, वर्षा जल के संग्रहण में हमारा अपना कितना योगदान है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के

0: दूसरे फेज की शुरुआत की, इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।
3: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2,738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई, इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। एक रिपोर्ट।
4: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर इस समय सारणी में संशोधन किया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, इसका ऐलान किया था। वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक

0: लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतोहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत से एक से अधिक लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में वृद्धि संभव होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग ने बताया है कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और चालन तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा और खुर्दा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केंदुझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गाँव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, केरलम और माहे में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसुन को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन्ह गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी, विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले चार दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है।

0: सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्षों से रुका हुआ था। इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने, व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। ये हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: आप सुन रहे थे फिल्म यहूदी में लता मंगेशकर और सखियों को शैलेंद्र के बोलते शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

नवनिगार शकील बदायूं मासूकार हेमंत कुमार गीता दत्त की आवाज में साहब बीबी और गुलाम फिल्म का गीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम सदाबहार।

फिल्म अर्धांगिनी में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला वसंत देसाई ने। और अब आपकी नजर कर रहे हैं दिल एक मंदिर फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: अलबेला फिल्म का गीत था लता मंगेशकर, चितलकर और साथियों की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण के लिखे और सी राम चंद्र के सुरबद्ध के इस गीत के साथ ही श्रोताओं आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम मनचाहे गीत, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। वक्त दोपहर का, बारिशों की रिमझिम इन हल्की ठंडी फुहारों के साथ साथ लीजिए। आपके रेडियो सेट पर शुरू हो रहा है प्रोग्राम। श्रोताओं, आप ही के पसंदीदा गीतों का प्रोग्राम मन चाहे गीत, तो सुनिए प्रोग्राम। देखिए कहीं आपकी पसंद का कोई गीत तो नहीं आज। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

सावन की ठंडी ठंडी फुहारों की तरह ये गीत हैं श्रोताओं, जो बंद हैं आपकी चिट्ठियों में, और उन्हीं में से ये गीत हमने आपको सुनवाया। दो रास्ते फिल्म का ये गीत था, जो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आप सुन रहे थे। इस गीत को पसंद किया मालीवेस बीड शहर से किशोर उबाले, मंगला उबाले, और इस गीत में आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ से। श्रोताओ, आइलैंड नगर केटगांव से इसी गीत को पसंद किया भाऊ साहब नवथर, अक्षय चंदन, जय कुमार चंदन, सुचिता चंदन, और बसमत रोड परभणी से रणजीत कारेगांवकर, कंचन सृष्टि, समरजीत कारेगांवकर की ये फरमाइश थी। शीतला नगर दुर्ग से

राहुल देव बर्मन की तर्ज, गुलजार के बोल, किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, फिल्म आंधी में आप सुन रहे थे ये गीत आंधी का। और बागपत उत्तर प्रदेश से इस गीत को पसंद किया संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया ने। वारुंगा फाटा जिला हिंगोली से वैष्णवी, अश्विनी, कुंडलिक और पांडु रंग की ये फरमाइश थी। श्रीकांत श्रीवास्तव, श्रीमती प्रमिला श्रीवास्तव, ये दो नाम हैं पीरनगर गाजीपुर के। और इसी गीत को सुनना चाहा बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव शशिकला, सुमेध कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल ने। और इसी गीत के लिए कानपुर उत्तर प्रदेश से फरमाइश आई अहमद और मान

सिंह की ये फरमाइश है ईदगाह कॉलोनी कानपुर उत्तर प्रदेश से। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत।

मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत की धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मोहम्मद रफी की आवाज में मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म के इस गीत को पसंद किया। न्यू मार्केट टीटी नगर भोपाल से।

अजय और शीतल ने, और GCF स्टेट परेल लाइन से ये चिट्ठी आई है। इनके नाम हैं सुरेश राजपूत, सुमित, शानू, अभय राजपूत, मन्नत राजपूत, पुष्पा सुदेशना और निम्मो की ये फरमाइश है। शीतलानगर दुर्ग से शिव और भगवान चंद्राकर, और नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, केरव, ज्योति रानी और गुरमंत की ये फरमाइश थी।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत मेरे हम सफर। इस फिल्म का ये गीत है, लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल हैं कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।

कालीगांव जाफराबाद से इस गीत को सुनना चाहते थे श्री सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत संचित मोताला से कुमार प्रथमेश प्रणाली, कड़ा रोड से कुमारी सानवी देशमुख की ये फरमाइश थी और कुमार सरवत देशमुख भी यहीं से। विमल निकेतन अकोले की ये फरमाइश है। महेंद्र नागेश, पारस जयेश, ऋषभ संयम, सिद्धांत जैन और साक्षी जैन और इनके परिवार के सभी सदस्य मछली गोदाम कौदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ, प्रियंका, पूजा और ऋतु की फरमाइश आपने सुनी।

दो कलियां फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, साहिल लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था। विनायक नगर निजामाबाद से इस गीत को सुनना चाहा ज्योति श्रीहरि, राजकमल, विनोद कुमार, रामानंद और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा, पूनम वर्मा ने। मोहाली पंजाब से ये पत्र आया है। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल की ये फरमाइश थी।

लेकिन हम तो जानते हैं श्रोताओं के, हमारे श्रोताओं की नजरें कभी खफा नहीं हो सकती। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आपके ढेरों पत्र आए, और इसी तरह से आप पत्र लिखते रहिए, हमें रहता है आपके पत्रों का इंतजार। तो मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को कार्यक्रम मन चाहे गीत से। आप सभी का कार्यक्रम के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: यह है विविध भारती।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एंटन चेखव की रूसी कहानी द प्रपोजल का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर विवाह का प्रस्ताव। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं कामिनी कौशल, विनोद शर्मा और कमलाकर दाते। ये नाटक मधुप शर्मा के निर्देशन में विविध भारती के स्टूडियो में 1966 में रिकॉर्ड किया गया था। आइए सुने नाटक विवाह का प्रस्ताव।

0: माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ दस्तक देकर ही अंदर चला आया।
1: और हम भी तुम्हें यूं ही बाहर नहीं जाने देंगे। आओ बैठो आइवन लोमोव।
0: धन्यवाद।
1: आइवन, तुमने तो हमें भुला ही दिया।
0: जी, एक उलझन के कारण मैं इधर आ नहीं पाया, इसके लिए बहुत लज्जित हूँ। लेकिन विश्वास कीजिए, आपकी याद सदा मेरे साथ रहेगी।
1: ये तुम्हारा स्नेह है जो तुम हमें अपना समझते हो। मगर आइवन, आज खैर तो है। ये फर का नया कोट, ये रंग बिरंगी कराकली टोपी और ये सफेद दस्ताने, आज तुम जा कहाँ रहे हो?
0: जी कहीं भी तो नहीं। बात यह है कि मैं आपकी सेवा में एक प्रस्ताव लाया हूँ।
1: अच्छा,
0: आपसे कैसे कहूँ?
1: तो और कौन कहेगा?
0: ये भी ठीक है, और कौन कहेगा? जी मैं ही कहूँगा, मैं ही कहूँगा। लेकिन थोड़ा पानी पिलवा दीजिए पहले मुझे।
1: अभी लो।
0: मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। डरता हूं अगर आपने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया तो मेरा क्या होगा?
1: पानी।
0: धन्यवाद।
1: अब ये मुझसे कुछ रुपया उधार मांगेगा और मैं इसे अंगूठा दिखा दूंगा।
0: देखिए, मैंने कई बार देखा है, महसूस किया है कि इस दुनिया में जितना आपको मेरा ख्याल रहता है किसी को नहीं रहता। मैं आपके इस अपार स्नेह के योग्य तो नहीं हूं।
1: आइवन, आज तो तुम्हारी बातें भी तुम्हारी पोशाक की तरह बिल्कुल नहीं है।
0: जी जी जी, ये बात नहीं है।
1: तो वो बात क्या है?
0: वो बात ये है। अभी कहता हूँ।
1: कहो।
0: बस मैं कहने ही जा रहा हूँ।
1: अच्छा,
0: जहाँ हालत तक तो आ गई है
1: तो जबान पर ले आओ।
0: अच्छा,
1: शाबाश।
0: अपनी बेटी नतालिया का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए।
1: आइवन, मेरे प्यारे आइवन, एक बार फिर कहो
0: जी,
1: कहीं मेरे कानों ने वो तो नहीं सुन लिया जो पिछले कई वर्षों से मेरे दिल में था। कहो ना आइवन।
0: फिर किस मुंह से कहूं? कहां आप इतने बड़े जमींदार और कहां मैं आपका एक पड़ोसी छोटा सा जागीरदार।
1: ऐसा न कहो आइवन, ऐसा न कहो। जो जहां है वो वहीं रहेगा। लेकिन तुम पहले मेरे गले से लग जाओ।

0: मैंने सदा तुम्हें अपनी बेटी निताली की तरह चाहा। अरे मैं अभी तक यहीं क्यों खड़ा हूँ? आयमन तुमने देखा, मारे खुशी के मैं ये भी भूल गया कि मुझे निताली को तुम्हारे आने की खबर करनी चाहिए।
1: तो क्या निताली मुझे पसंद कर लेगी?
0: क्या कहते हो आयमन, तुम जैसे स्वस्थ सुंदर और नए नए कोट पहनने वाले गुलगुले जवान को भला कौन पसंद नहीं करेगा। मैं अभी निथालिया को भेजता हूं।
1: जी चुबोकोव चले गए, अब निताली आएगी।
0: ये क्या, अरे
1: मैं तो सिर से पांव तक कांप रहा हूं। अरे बाप, मेरा सारा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हुआ जा रहा है।
0: ये क्या,
1: मेरे होंठ कांप रहे हैं, मेरी मेरी बाई आंख भड़क रही है।
2: अरे यहाँ तो आयवन लोमो विराजमान है।
1: आपको आपको आश्चर्य हुआ कुमारी निताली?
2: जी हाँ।
1: क्या,
2: आप पर नहीं, बाबा की बात पर।
1: बाबा की बात पर?
2: जी हाँ, बाबा बोले कोई मटर खरीदने आया है।
1: ओह।
2: और मैं जल्दी में इन मैले कपड़ों में यहाँ चली आई। अंदर आंगन में मटर की फलियों में से दाने निकाल रही थी।
1: जी
2: आपके लिए कुछ खाने को लाओ।
1: जी जी जी, जी, जी। आप कष्ट न करें, मैंने अभी खाना खाया है। आप कृपया बैठ जाएं तो।
2: लीजिए, बैठ गई।
1: जी
2: आज तो आप अपने घर से खूब बन ठन कर निकले हैं।
1: जी
2: सच, इन नए कपड़ों में तो आप देखने में बहुत भले लगते हैं।
1: कुमारी निताली
2: जी,
1: मेरी मेरी मेरी आपसे एक प्रार्थना है।
2: कहिए।
1: जी मैं, आज बहुत ठंड पड़ रही है,
2: आपके लिए कंबल लाऊं?
1: जी नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता था।
2: बात क्या है, आप इस तरह घबरा क्यों रही हैं?
1: देखिए कुमारी निताली, मैं आपके बाबा को तब से जानता हूँ जब आप अभी पैदा भी नहीं हुई थी, और ये तो आप भी जानती हैं कि आज मैं जिस जागीर का मालिक हूँ वो मुझे मेरे नाना नानी से मिली थी। मेरा मतलब है, मैं कहना ये चाहता था कि मेरे नाना नानी भी आपके बाबा को बहुत चाहते थे, और आज भी हमारे घरों के आपसी संबंध बड़े अच्छे हैं। देखिए ना, आपके घर की दीवार मेरे घर की दीवार के साथ लगती है, आपके खेतों के साथ मेरे खेत हैं, आपकी सफेदा जमीन के किनारे मेरा चेरी का बगीचा खड़ा है।
2: क्षमा कीजिए
1: जी,
2: क्या वो चेरी का बगीचा आपका है?
1: जी हाँ, क्यों?
2: यूं नहीं, सोच कर बताइए।
1: आप भी कमाल करती हैं, भला इसे सोचने की कौन सी बात है? और फिर क्या मेरे सोचने पर मेरा वो बगीचा किसी दूसरे का बन जाएगा?
2: लेकिन जो बगीचा हो ही दूसरे का, वो आपका कैसे बन सकता है?
1: मैं समझा नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
2: इसलिए कि वो बागीचा हमारा है।
1: अजी, मैं चेरी को उस बागीचे का जिक्र कर रहा हूँ जो आज तक कभी हरा नहीं हुआ, जिसके एक सिरे पर आपकी सफेदा जमीन है और दूसरे सिरे पर खाई है।
2: जी हाँ, मैं भी उसी बागीचे के लिए कह रही हूँ कि वो हमारा है।
1: कमाल है, ये तो मैं आज ही सुन रहा हूँ कि वो बागीचा आपका है।
2: और मैंने भी आज पहली बार सुना कि वो आपका है।
1: लेकिन मेरे बगीचे पर आप अपना कब्जा कैसे जता सकती हैं?
2: अरे मगर वो बागीचा आपका कब से हुआ?
1: जब से मैंने होश संभाला।
2: फिर जब से आपने होश संभाला है, आप झूठ को सच समझते हैं।
1: जी नहीं, आप अब सच को झूठ समझ रही हैं। देखिए कुमारी निताली, मेरे पास ऐसे कागजात हैं जिनमें ये साफ साफ लिखा है कि मेरी नानी की दादी ने वो बागीचा आपके दादा के काश्तकारों को बिना पट्टा लिखवाए खेती करने के लिए दिया था, और आपके दादा 40 साल तक हमारी उस जमीन की कमाई खाते रहे, और फिर आप ही की तरह जब आपके दादा ने भी हमारी उस जमीन का मालिक बनने की कोशिश की तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी।
2: देखिए मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ जो मैं आपकी इस मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास कर लूं।
1: मैं जानता हूँ कुमारी निताली, आप इतनी बुद्धिमान भी नहीं है जो किसी दूसरे की संपत्ति पर अपना हक जताना छोड़ देंगी।
2: आयवन, इस प्रशंसा के योग्य केवल आप हैं।
1: जी
2: आपका मुंह बंद करने के लिए मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि वो सूखा सड़ा बागीचा जिसकी कीमत 300 रूबल से किसी भी हालत में ज्यादा नहीं है, मैं आपको भेंट कर सकती
1: हूँ। कुमारी निताली, मैं आपकी उदारता का कायल हूँ, लेकिन आपको मेरी ही संपत्ति मुझे भेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। वो बगीचा तो मैं आपको भेंट कर सकता हूँ, मगर अब प्रश्न सिद्धांत का है, न्याय का है।
2: अन्याय भी ये है कि न्याय आप कर रहे हैं। 300 साल से जो बागीचा हमारे अधिकार में चला आ रहा है, आज उसे आप अपना बता रहे हैं।
1: फिर वही बात, आप किसी दूसरे की सुनती भी तो नहीं है। कुमारी निताली, हुआ यूं था कि आपके परदादा के काश्तकारों ने मेरी नानी की दादी को मकान बनाने के लिए ईंटें पकाकर दी थी, इसलिए कुछ बख्शीश के तौर पर मेरी नानी की दादी ने उन्हें
2: फिर वही दादी की नानी, नाना के दादा। अब मैं

0: से और कितनी बार कहूँ कि वो बागीचा हमारा है, हमारा
1: जी
0: है।
1: जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, वो मेरा है। आप सुनिए तो, वो हुआ यूं था।
0: आइवन, अगर आप लगातार दो दिन तक इसी तरह बहस करते रहेंगे और अपने घर से एक बढ़िया कोट पहनकर आते रहेंगे तो भी ये बागीचा हमारा ही रहेगा।
1: देखा है ना सीना जोरी, कुमारी निकालिया, मैंने आज तक कभी किसी की संपत्ति पर अपना हक नहीं जताया, मैंने आज तक कभी किसी की जमीन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश नहीं की।
0: इसीलिए आप अपनी ईमानदारी का सिला हमसे वसूल करना चाहते हैं?
1: ओह, मेरे गले में कांटे उगाए हैं। ठहरिए, जरा पानी पी लूं तो बताता हूँ आपको। मैं फिर कहता हूँ कि वो बागीचा मेरा है, मेरा है।
0: ये चीख आपकी है, मगर बागीचा हमारा है।
1: जी नहीं, वो मेरा है।
0: वो बागीचा हमारा है और मैं आज ही अपने कारिंदों को वहाँ की सारी घास काटने के लिए भेजती हूँ।
1: क्या?
0: हाँ, मेरे आदमी अभी वहाँ पहुँच जाएंगे।
1: तो कान खोल कर सुन लीजिए, अगर मेरी धरती पर किसी ने कदम रखा तो मैं उसकी खाल में भूस भरवा दूंगा।
0: इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने अंजाम से वाकिफ हैं?
1: मैं कहता हूँ इन बातों में कुछ नहीं रखा। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो बागीचा मेरा है, मेरा है, मेरा है।
0: आइवन, अगर ये घर मेरा ना होता तो आप इससे भी कहीं ज्यादा ऊंची आवाज में चीख सकते थे, चिल्ला सकते थे, दहाड़ सकते थे।
1: कुमारी निताली, कुमारी निताली, अगर मुझे दिल का रोग ना होता, अगर मेरे पुट्ठों में दर्द ना होता तो आज मैं आपको बता देता कि किसी की संपत्ति पर आंख रखने का क्या परिणाम होता है। देखिए, अब भी भलाई इसी में है कि सीधी तरह से मान लीजिए कि वो बागीचा मेरा है।
0: नहीं, हमारा है।
1: जी नहीं, मेरा है,
0: हमारा है।
1: मैं कहता हूँ मेरा है।
2: ये क्या हो रहा है
0: बाबा? आप जरा इनकी समझ में ये बिठाइए कि हमारा वो चेरी का बगीचा किसका है।
2: हमारा है और किसका?
1: आप अपनी बेटी की बोली में बोल तो रहे हैं, मगर कुछ पता भी है कि मेरी नानी की दादी ने यह बगीचा आपके दादा के काश्तकारों को थोड़ी सी मुद्दत के लिए ऐसे ही खेती करने के लिए दिया था और फिर 40 वर्ष तक वे अपना पेट और आपके दादा का घर भरते रहे।
2: आइवन, तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि उन काश्तकारों ने तुम्हारी दादी को उस बगीचे के पट्टे की सारी रकम चुका दी थी। विश्वास न हो तो गांव के पटवारी से या तहसीलदार की कचहरी से जाकर मालूम कर लो कि उस जमीन का लगान आज तक कौन भरता रहा।
1: फिर तो आप सरकार को भी धोखा देते रहे।
2: धोखा? हाँ, अपनी जमीन का लगान तुमसे सरकारी खजाने में भरवा के हम तुम्हें अवश्य धोखा दे सकते थे,
0: लेकिन हमने ऐसा भी नहीं किया।
1: मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता कि वो बागीचा मेरा है और मेरे पास इसका सबूत है।
2: नहीं आइवन, तुम ये साबित नहीं कर सकते।
1: क्यों नहीं कर सकता?
2: आइवन, तुम इस भ्रम को अपने दिल से निकाल दो कि हम तुम्हारा वो बगीचा हड़प कर जाना चाहते। और अगर तुमने यूं ही चिल्लपो मचाकर यह साबित करने की कोशिश की कि वो बगीचा तुम्हारा है तो मैं उसे तुम्हारे हवाले करने की बजाय अपने किसी काश्तकार को यूं ही दे।
1: जी हाँ, जी हाँ, क्यों नहीं। बेटी भेंट करने की बात कहती है और बाप किसी और को दे डालने की धमकी देता है। मैं पूछता हूँ, किसी दूसरे की संपत्ति को आप इस तरह कैसे लुटा सकते हैं? क्या अधिकार है आपको?
2: ये तो मैं ही जानता हूँ मुझे अधिकार है या नहीं, लेकिन तुम अपनी जबान को काबू में रखो। मैं ऊंची आवाज सुनने का आदी नहीं।
1: तो हो जाएंगे, अब आपका वास्ता मुझसे पड़ा है।
2: आइवन, यूं ही आवेश में मत आओ।
1: वाह वाह, आप तो पड़ोसी होने के नाते मेरा बागीचा हड़प कर जाएं और मैं आवेश में भी नहीं।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, तुम चुप हो जाओ।
1: मैं तो जैसे आपके इस आदेश की प्रतीक्षा में ही था। मैं कह देता हूँ, आप मेरे पड़ोसी नहीं है, मेरे पड़ोस में रहने वाले डाकू है।
2: क्या कहा?
0: बाबा, बाबा, इन्होंने आपको डाकू कहा?
2: अब मैं इसे क्या कहूँ?
1: जो मैंने आपको कहा है आप वही अपनी बेटी से भी कहिए।
0: बाबा, आप कुछ कहने के बजाय कुछ कीजिए।
2: मैं कुछ करूँ?
0: हाँ,
2: लेकिन मैं क्या करूँ?
0: आप अपने कारिंदों से कहिए कि वो बागीचे की सारी घास खोद लाएं।
1: खोद लाएं? कुमारी निकालिया, घास खोद लाना इतना आसान नहीं है।
2: इस बारे में आप अधिकार से बात कर सकते हैं।
1: आप मेरी यूं खिल्ली ना उड़ाइए, मैं अब इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा।
0: और जब इंसाफ होगा आप अदालत का दरवाजा तोड़ डालेंगे।
2: क्योंकि तुम इंसाफ उसे मानते हो जो इंसाफ के साथ खुद बड़ी बेइंसाफी।
1: हाँ, इसका फैसला अदालत में ही होगा।
2: आइवन, मैं तुम्हारी मुकदमेबाजी की लत से वाकिफ हूँ और मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पुरखों की सारी जिंदगी अदालतों में ही।
1: देखे, मेरे पुरखों का अपमान मत कीजिए, उनकी ईमानदारी के चर्चे आज भी लोगों की जबान पर हैं। हाँ, आप अपने चचा की ईमानदारी का डंका जरूर बजाइए जो गबन के अपराध में आज भी जेल में आटा पीस रहे हैं।
2: तुम्हारा तो दिमाग चल गया।
0: इनके घराने में ठीक किसका था?
2: हाँ, इसका दादा संकी।
1: दादा संकी था? आपकी माँ का भी तो ऊंट की तरह कोहान निकला हुआ था। मेरा दिल पानी।
2: अरे, तुम्हारा तो बाप पत्तेबाज था, क्रॉसवर्ड पजल भरा करता था।
0: आपकी नानी के मुंह में जबान नहीं ततैया मिर्च थी और वो हर किसी को काटने को दौड़ती थी।
1: मेरी बही ढंग था जनरा लगे और आप मीठी जबान से हर किसी का गला काट रहे हैं। अरे दिल, और ये कौन नहीं जानता कि चुनाव से पहले मुझे कुछ नहीं सुझाई।

0: जरा मेरी टोपी कहाँ है?
1: अरे तो मक्कार, अरे भी
0: लेकिन आपसे कोई मुकाबला नहीं है। ओ, मेरा दिल, यही मेरी टोपी। अब दरवाजा किधर है? मेरी टांग सुनो,
1: घसीट कर ले जाओ अपने आप को यहाँ से।
0: हाँ हाँ जा रहा हूँ।
1: इतना और सुनते जाओ, हमारे घर फिर कभी पांव रखा तो हाथ से टांग, नहीं नहीं टांग से हाथ धो बैठोगे। हाँ
2: और अब यहाँ से सीधे अदालत में ही जाना। हाँ
1: चला गया कमीना कहीं का।
2: हमें इस रीच पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, इससे सदा चौकन्ना रहना चाहिए।
1: और आस्तीन के सांप का हमें सर कुचल देना चाहिए।
2: हाँ नहीं तो ये हमारी संपत्ति पर कुंडली मार कर बैठ जाएगा।
1: निर्लज्ज का दुस्साहस तो देखो।
3: बोला आपकी सेवा में एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ।
2: कैसा प्रस्ताव?
1: अरे ब्याह का प्रस्ताव। कमीना जलील गुंडा कहीं का मेरी बेटी से ब्याह करना चाहता था।
2: बताया?
1: अरे मैं क्या बताता, तुमने खुद नहीं देखा कि वो रीच का बच्चा कैसा छैला बनकर आया?
2: वो मुझसे ब्याह करना चाहते थे।
1: अरे अरे क्या हुआ बेटी नितालिया, क्या हुआ?
2: बाबा बाबा उन्हें बुला लाइए, अभी बुला लाइए।
1: क्या अब उसे मैं बुलाने जाऊं?
2: हाँ बाबा अभी जाइए, अभी जाइए बाबा। ओह मेरा सर चकरा रहा है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है।
1: अरे मगर बेटी अभी हमने उसे यहाँ से इतने शानदार स्वागत से निकाला और अब वो दोबारा यहाँ आने के लिए कभी नहीं मानेगा।
2: बाबा आप अभी जाकर उन्हें किसी भी तरह मना लाइए, मैं उनके
1: अरे बेटी मिथालिया होश में आओ, ये क्या पागलपन है? हे भगवान अब मैं कहाँ डूबने जाऊँ?
2: इससे पहले उन्हें बुला लाइए।
1: जाता हूँ बाबा, जाता हूँ, जा रहा हूँ।
2: आज उन्होंने फर का कैसा बढ़िया कोट पहन रखा था, फिर भी हमने उनका ऐसा सम्मान किया, कौन जाने अब वो आएंगे भी या नहीं।
1: नितालिया बेटी हेलो, अब तुम अच्छी हो जाओ, वो आ रहा है। कम वक्त अभी सीढ़ियों पर ही था, मगर अब मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा। हाँ अब मैं तुम्हारे मामले में कभी नहीं बोलूंगा, तुम जानो और वो जाने।
2: वो कब आएंगे?
1: अरे भाई उसके पर नहीं, पैदल आ रहा है।
2: आप उन्हें उठा कर क्यों नहीं ले आए?
1: ओ भगवान तुम एक अच्छे भले आदमी को बेटी का बाप क्यों बना देते हो? मेरी तो मिट्टी खराब हो गई।
2: कैसे?
1: तुम्हारे कारण पहले मैंने उसे जली कटी सुनाई, उसे अपमानित किया और फिर उसे खड़े खड़े अपने घर से बाहर निकाल दिया। और अब
2: क्या क्या मेरे कारण?
1: और नहीं तो क्या?
2: बाबा अब आप मेरे साथ तो ऐसा व्यवहार ना कीजिए।
1: अच्छा बाबा अच्छा, सारा दोष मेरा ही था। एक बेटी का बाप निर्दोष हो ही कैसे सकता, और फिर वो भी अपनी बेटी की नजर में। लो वो आ गया और मैं अपने कमरे में जा रहा हूं।
0: मेरा दिल बड़े शोरों से धड़क रहा है
2: और मेरे दिल को बड़ा चैन मिला है आपको यहाँ अपने पास देखकर।
0: वो बागीचा मेरा है।
2: जी हाँ वो बागीचा सचमुच आप ही का है, आपके जाने के बाद मुझे याद आया।
0: मेरी टांगें सुन्न हो गई हैं, लेकिन वो बागीचा मेरी नानी की दादी से पहले भी हमारा था।
2: जी हाँ जी हाँ, हमसे भूल हो गई, आप कृपया क्षमा कर दी।
0: बात असूल की थी, सिद्धांत की थी, नहीं तो आप जाने सूखा हुआ बागीचा जो कभी हरा नहीं हुआ चीज ही क्या है।
2: आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, अब कोई और बात कीजिए।
0: तो ठीक है, लेकिन देखिए ना इसके अतिरिक्त मेरे पास ऐसे कई प्रमाण पत्र हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि मेरी नानी की दादी ने आपके दादा के काश्तकारों को।
2: जाने दीजिए, मैं अपनी भूल पर पहले ही बहुत लज्जित हूँ। ये बात कैसे चलाऊं? हाँ आप शिकार खेलने के लिए कब जा रहे हैं?
0: मैं फसल की कटाई

0: ये बात, मैं मुर्गाबी का शिकार खेलने जाऊंगा, लेकिन लेकिन अब मैं क्या शिकार खेलूंगा?
1: क्यों?
0: अपने डब्बू को तो आपने देख ही रखा है ना, उस बेजबान की अब टांग भी टूट गई है।
1: ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। मगर उसकी टांग टूट कैसे गई?
0: ठीक से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है मेरे डब्बू की टांग किसी कुत्ते ने ही तोड़ी है, क्योंकि कुत्ता कुत्ते का बैरी होता है। और मेरे डब्बू की टांग क्या टूटी, मुझे यूं लगता है जैसे मेरी ही कमर टूट गई हो। मैंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था, और अब जब मुझे उसकी जरूरत थी वह बेचारा अपाहिज हो गया। भाग्य पर किसी का जोर नहीं चलता।
1: डब्बू आपने लिया किससे था?
0: अजी, ये पहले मेरो नोव के पास रहता था, तब ये अभी ढंग से भौंकना भी नहीं सीख पाया था कि इत्तफाक से इस पर मेरी नजर पड़ गई, और मैं इस पर अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हो गया। उधर मेरो नोव इससे

0: ये मेरो नोव के पास रहता था तब ये अभी ढंग से भौंकना भी नहीं सीख पाया था कि इत्तफाक से इस पर मेरी नजर पड़ गई और मैं इस पर अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हो गया। उधर मेरो नोव इससे बिछुड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने मेरो नोव के सामने 125 रूबल का ढेर लगा दिया तो वो कुछ न कह सका।
1: 125 रूबल?
0: हाँ, आपको अचंभा हुआ?
1: जी हाँ, इतने में तो हाथी आ जाता।
0: कुमारी निथालिया, मैं इसे हाथी का बच्चा ही समझ कर लाया था।
1: तब आपने कुत्ते के नहीं अपनी समझ के दाम चुकाए थे, नहीं तो मेरे बाबा मेरे लिए कालू 50 रूबल में लाए थे। और हमारा कालू आपके डब्बू से 1000 गुना अच्छा है।
0: मुझे तो इस पर भी संदेह है कि आपको 1000 तक गिनती आती है, नहीं तो आप अपने कालू का मेरे डब्बू से कभी मुकाबला नहीं करती।
1: मुकाबला हो ही कैसे सकता है, शेर का भेड़ से क्या मुकाबला।
0: जी
1: आइवन, हमारा कालू अभी बच्चा है। एक पूरा कुत्ता बनने में उसे कुछ समय लगेगा, लेकिन अब भी हमारे सारे प्रांत में ऐसा कोई कुत्ता नहीं जो जीदारी और फुर्ती में हमारे कालू का सामना कर सके।
0: तो सुन लीजिए कुमारी मितालिया, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके कालू का जबड़ा बहुत छोटा है और ऐसे कुत्ते बच्चों की गेंद भी उठाकर नहीं ला सकते।
1: जबड़ा छोटा है?
0: जी,
1: ये बात भी मैंने आज पहली बार सुनी है।
0: विश्वास कीजिए, आपके कालू का निचला जबड़ा उसके ऊपर के जबड़े की अपेक्षा बहुत छोटा है।
1: क्या आपने उसे कभी नाप कर देखा है?
0: मैं अब नाप कर दिखा सकता हूँ, आप उससे अपनी टांग पर कटवाइए। वैसे मैं ये मानता हूँ कि ऐसे कुत्ते जिनके जबड़े छोटे होते हैं वे दौड़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन शिकार पर उनकी पकड़ अच्छी नहीं होती।
1: जरा ये भी फरमाइए, आपका वो लंगड़ा खाज का मारा डब्बू
0: जी
1: किस राजघराने में से है, किस स्कूल का दीपक है?
0: आपको जब जरूरत होगी तो मैं आपको उसका गोत्र तक बता दूंगा, उसकी जन्म कुंडली भी दिखा दूंगा। अभी तो इतना ही सहन कर लीजिए कि डब्बू उस किस्म का कुत्ता है जो अपने मालिक के लिए आर्थिक संकट की स्थिति में समुद्र से मोती निकाल कर ले आते हैं, और आपका वो कालू घर वालों को काटे और चोर के आने पर दुम दबा कर भागे।
1: स्वामी भक्ति की ऐसी परिभाषा केवल आप ही कर सकते हैं, मगर हमारा कालू ऐसा नहीं है।
0: ना ऐसा नहीं है तो ऐसा वैसा होगा।
1: आप होंगे क्या? आप हैं
0: जी।
1: भला ये भी कोई बात है, पहले हमारे बगीचे को अपना बताया और अब अपने खाज मारे लंगड़े डब्बू को हमारे कालू से बढ़िया बता रहे हैं।
0: अच्छे को तो अच्छा कहा ही जाएगा।
1: लेकिन आप ऐसा कह नहीं रहे, आपका दिल मानता है कि हमारा कालू कुत्तों का बेताज बादशाह है, लेकिन आप फिर भी अपने लंगड़े की शान बघारे चले जा रहे हैं।
0: यही बात तो मैं अपने डब्बू और आपके बारे में भी तो कह सकता हूँ।
1: लेकिन सच क्या है?
0: आप ही कहिए कि आपके कुत्ते का जबड़ा छोटा नहीं।
1: कहाँ छोटा है?
0: छोटा है।
1: नहीं है, नहीं है, नहीं है। और मेरा बस चले तो मैं आपके डब्बू को कमेटी वालों से गोली लगवा
0: दूं। और मेरा बस चले तो मैं वही गोली फिर डूबने लगा।
1: आपको कुत्तों के बारे में इतना ही पता नहीं है कि
0: वो मेरा दिमाग फट रहा है। अब आप चुप हो जाइए।
1: जब तक आप ये ना मानेंगे कि हमारा कालू आपके डब्बू से 1000 गुना बढ़िया है, मैं कभी चुप नहीं होऊंगी।
0: यही बात है तो बेशक चिल्लाइए, चीखिए, लेकिन मैं आपके उस मरियल कुत्ते की शक्ल के मेमने को कुत्ता नहीं कहूंगा। अगर वो आपकी संगत में कुछ दिन और रह गया तो वो दिन दूर नहीं जब वो बावला हो जाएगा। ओ मेरा कंधा, मेरी आंखें, अरे गणपति गणपति गणपति।
1: और आपका कुत्ता तो जैसे टांग तुड़वाकर अमर हो गया है और अब उसे कुछ होगा ही नहीं।
0: ओ मैं कहता हूँ खामोश हो जाइए, दुख से मेरा दिल फटा जा रहा है।
1: अब मैं चुप नहीं हूँ।
2: अरे अरे अरे, ये फिर क्या हो रहा है?
1: बाबा बाबा, आप सच सच कहिए, हमारा कालू अच्छा है या इनका लंगड़ा?
0: पहले आप ये बताइए, आपके कालू का जबड़ा छोटा है या नहीं? पक्षपात किए बिना कहिएगा कि कालू का जबड़ा छोटा है या नहीं।
2: है, लेकिन फिर क्या हुआ पता है? हमारे कालू जैसा बढ़िया कुत्ता सारे प्रांत में नहीं।
0: मेरे डब्बू को छोड़कर आप ऐसा दावा जरूर कर सकते हैं?
2: हाँ, तुम्हारा डब्बू भी बड़ा गुणवान है। उसके कान खड़े और शरीर गठीला है, पिछली टांगे पतली लंबी सुडोल है, लेकिन उसमें दो ऐसी त्रुटियां हैं जिसके कारण उसे कुत्ता कहना एक अच्छी नस्ल के कुत्ते का अपमान करना।
0: देखिए देखिए देखिए, मुझे दिल की बीमारी है, वास्तविकता को झुटलाने की कोशिश न कीजिए। कुत्तों की वार्षिक दौड़ में मेरा डब्बू राजा साहब के कुत्ते के बराबर रहा था और आपका वो कालू दौड़ दौड़ कर पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया।
2: तो बेचारा और क्या करता, दौड़ शुरू होने से पहले राजा साहब के कारिंदे ने उसे हंटर जो मारा था।
0: काश वो उसे गोली मार देता।
2: आइवन, ये मत भूलो कि तुम्हें दिल की बीमारी है और मुझे गुस्सा बहुत आता है और गुस्से की हालत में मैं बुरा भला बल्कि आप अपने कुत्ते की

0: मायत में मुझे धमका रहे हैं। अरे मेरा दिल फिर बड़े जोर से धड़कने लगा। अरे हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल,
1: हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। इस दिल से ये जंगल में शिकार खेलने जाएंगे बाबा। अजी आप, मैं कह रही हूँ रसोई घर में बैठकर मक्खियाँ मारा कीजिए।
2: मक्खियाँ उड़ाने के लिए कहो बेटी, इनका दिल बड़ा कमजोर है। आइवन, मैं तुम्हें जंगल में जाकर शिकार खेलने से रोकता नहीं। क्या पता कोई जानवर तुम्हारा शिकार बनने से पहले तुम्हें ही अपना शिकार बना डाले।
3: अरे शिकारी को जानवर अपना शिकार बना ले और जानवर को अपना शिकार मैं बना लूं, ऐसा भी हो सकता है अगर किसी रात आप मेरे साथ जंगल में शिकार खेलने चले।
2: आइवन, मुझसे ऐसी बातें कहते तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
3: जब आप मुझसे ऐसी बातें बड़े गर्व से कहते हैं तो मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए।
2: ओ, तुम्हारा तो सर
3: देरी कितनी लगती है, लेकिन कारण भी तो बताइए। और जो स्वयं न समझ सके और दूसरों को समझा न सके उससे तो आप कुछ कहेंगे नहीं।
2: हाँ, मैं कहता हूँ जहर उगलने से बात आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा।
3: आप क्या सिर फाड़ेंगे, गलियों में बच्चे तक जानते हैं। अरे मेरी जान, आपकी पत्नी भरे बाजार में आपको पीट दिया करती थी। मुझे टांग दो।
2: और तुम भी तो अपनी उस नौकरानी से छिपते फिरते हो।
3: मेरी टांग, मेरी टांग आ गई। मेरा दिल कहाँ टूट गया। डॉक्टर,
2: कमीना, बेशर्म, गधा।
1: घोड़े पर सीढ़ी लगाए और स्वयं को शिकारी कहलवाए। पापा, पापा जरा देखिए तो इन्हें हुआ क्या है। आइवन, आइवन, बाबा आइवन चले गए।
4: क्या नितालिया, नितालिया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। खिड़की खोल दो, खिड़की खोल दो, तो मेरा दिल भी टूट गया। बेटी तुम मेरा एक काम करो।
1: क्या बाबा।
4: मुझे मेरा पिस्तौल ला दो।
1: जाने दीजिए बाबा, अब मरे को क्या मारेंगे।
4: अरे बेटी मैं पिस्तौल अपने लिए मंगवा रहा हूँ।
1: अपने लिए?
4: हाँ, मैं आत्महत्या कर लूंगा।
1: नहीं नहीं नहीं बाबा नहीं।
4: अरे पिस्तौल नहीं तो मुझे चाकू ही ला दो, मैं अपना गला काट लूंगा।
2: ला दो ना।
4: अरे आइवन तो अभी जिंदा है। आइवन
1: जिंदा है।
4: लो लो पानी पी लो, पानी पी लो।
2: मैं कहाँ हूँ।
3: तुम जहन्नुम में हो जो तुम्हारे आने से पहले जन्नत थी। हाँ? अब तुम घर से उठ के बैठो और नितालिया से ब्याह कर लो।
2: हाँ? क्या?
3: हाँ बाबा, हाँ नितालिया ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है और वो तुम्हें बहुत चाहती है।
2: क्या सच?
3: चुप चुप। नितालिया बेटी लाओ अपना हाथ इधर लाओ।
1: बाबा।
3: आइवन जी, ये नितालिया का हाथ मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ और अब तुम लोग मेरा पीछा छोड़ो।
2: ओ बाबा, मैं आपका किस्मत से शुक्रिया अदा करूं। बाबा मैं बिल्कुल अच्छा हो गया।
3: अच्छा?
2: जी हाँ। तो वो बात क्या थी, मुझे कुछ कुछ तो याद आ रही है।
1: जी मैं बताऊं? मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
3: और मेरा भी जी का जंजाल कटा।
2: हाँ याद आ गई। ये आपको मानना पड़ेगा कि मेरा डब्बू आपके कालू से कई गुना बढ़िया है।
1: ये कई गुना घटिया है।
2: जी नहीं,
1: ये आपको मानना पड़ेगा।
2: मैं कहता हूँ बढ़िया है।
1: मैं कहता हूँ घटिया है।
2: जी नहीं, मैं कहता हूँ बढ़िया है।
1: बढ़िया नहीं है, घटिया है।
2: मैं कहता हूँ बढ़िया है।
3: तुम लोग
2: जी है,
3: मैं ही।

अभी आप सुन रहे थे इंटन चेखव की रूसी कहानी द प्रपोजल का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर विवाह का प्रस्ताव। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे कामिनी कौशल, विनोद शर्मा और कमलाकर दाते। ये नाटक मधुप शर्मा के निर्देशन में विविध भारती के स्टूडियो में सन 1966 में रिकॉर्ड किया गया था। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज हम लेकर के आए हैं संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दिलीप सेन साहब। पिछले भाग में हमने आपके कुछ गीतों पर, आपके संगीत पर चर्चा की थी, तो आइए आज फिर से आपकी संगीत यात्रा पर इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दिलीप साहब, बात हो रही है आपकी संगीत रचना पर। आपने इतने गीत अब तक बना दिए हैं, तो 90 के दशक में आप लोग जब लाइव म्यूजिशियंस और क्रिएटिव सेटिंग्स के जरिए गाने बनाते थे, हाँ, और किसी एक साज वाले से गलती हो जाती थी तो पूरा गाना दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता था, इस तरह से काम हुआ है, इसमें क्या तकलीफें आती थी?
3: देखिए, आज जो टेक्निक है ये क्लिक पे रिकॉर्ड होता है।
2: हाँ,
3: पहले वो क्लिक ले लेते हैं, टक टक टक टक, प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो वो ऑलरेडी बज चुका है, अब उसको सुन के लोगों को बजाना है, समझ गए?
2: जी।
3: हमारे वक्त ऐसा नहीं होता था।
2: जी।
3: हमारे वक्त क्या, जैसे अभी गाना शुरू हुआ, वो जैसे गोरी चोरी चोरी कहाँ जाए पता, तेरा टाका बिगड़ा हमको है पता, कैसे आंखें लड़ी कैसे बात बड़ी, कैसे चुभा तुझे कुछ हुआ तुझे, हमको ना बनाना रे, हमसे ना छुपाना रे, गोरी चोरी चोरी मेरी नींद गई मेरा चैन गया, कब जब होश ना था कुछ बात हुई हाय मैं, ये जैसे गया।
2: हाँ।
3: अब आंखों की बनी तनम को बहुत भाग गई, राजन से मिलके घड़ी दो घड़ी में देखो चली आ गई, कहां लाली गई। अब ये जो आता है,
2: हाँ,
3: यहां से क्या होता है, हल्का सा टेम्पो बढ़ जाता है जब लाइफ होता है ना, डा डा डा डा डा डा डा डा डा, चिंता का चिंता का चिंता का चिंता का चिंता का। तो आज अगर हम लोगों ने जो लाइफ म्यूजिक बजाए हुए हैं उनको अगर आप क्लिक में लोगे वो हिला हुआ लगेगा, क्लिक पे आ नहीं था। तो ये जो टेक्निक थी हमारी, तो जैसे वो गया, अगर किसी ने बढ़ाया रिदम तो बजाते बजाते एक जोश आता है ना अंदर से,
2: बिल्कुल।
3: तो जैसे आपने बजाया बजाया, तो जैसे ही जोश आया तो कभी कभी कोई ओवर जोश हो जाता था, अरे कट कट कट कट कट, दोबारा लेते हैं, तो इस तरीके से किसी ना किसी की हो जाती थी। और अक्सर क्या है कि जैसे कुछ फ्रेज लोग भूल जाते थे
2: जी,
3: तो हमारे वक्त जो लाइव म्यूजिशियन होते थे उसमें हल्का सा उतार चढ़ाव रहता था, टेम्पो की बात कर रहा हूँ। आज क्या, क्लिक के ऊपर है, वो हिलता नहीं है, इसीलिए आज जो सिंगर है ना वो बहुत बंधा हुआ गाता है। तो हम लोग क्या करते हैं आजकल, एक एक से दो बार एक्स्ट्रा रखते हैं उस फॉर द सिंगर, क्योंकि जैसे मैंने गाया वो गाएगा नहीं, तो उसको थोड़ी जगह चाहिए कि सांस लेने के लिए या फील डालने के लिए, तो हम एक्स्ट्रा दो बार रख लेते हैं। फिर उसका जितना उसने गाया हमको जहां तक उसका चाहिए चाहिए, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा बार हुआ वो हम कट करके वापस ज्वाइंट कर देते हैं, आज ये फैसिलिटी है। तो उसमें गाने में हम लोग ये कोशिश रखते हैं कि बार की, अमूमन हर आदमी को ये टेक्निक नहीं पता,
2: नहीं आती है। जी जी जी
3: जी।
2: तो कोई गाना कितने दिनों में रिकॉर्ड हो जाता था उन दिनों, 90s की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक गाने को रिकॉर्डिंग करने में आपको कितना दिन लगता था, या एक कलाकार कितना समय लेता था एक गाने की रिकॉर्डिंग?
3: एक दिन।
2: अच्छा,
3: एक दिन, मैं एक दिन में दो दो गाने किए मैंने।

0: मैं एक फिल्म कर रहा था वो एक दिन में विद सिंगर के पहला गाना जब किया तो उसमें मोहम्मद अजीज जी और अलका याग्निक जी विद कोरस ऑर्केस्ट्रा, मतलब कम से कम 100-125 म्यूजिशियन कोरस के साथ में और सिंगर अपने रूम में, तो अलका जी और अपना ये मोहम्मद अजीज, वो 11-11:30 बजे के रिकॉर्डिंग करके 3:30 बजे 3:30 बजे तक उनका पैकअप हो गया। 4 बजे दूसरी शिफ्ट में आशा जी, अमित कुमार वो भी लाइव, 10:30 तक उनका भी पैकअप हो गया। तो कभी कभी हमने दो भी गाने किए
1: जी।
0: और जब थोड़ा जब सक्सेस आ गई तो एक गाना 2 दिन में भी किए।
1: हाँ जी।
0: तो वो ऐसा नहीं है, वो 2 दिन में तो इसलिए हुआ क्योंकि एक दिन में पहले दिन फुल ऑर्केस्ट्रा हो गया, दूसरे दिन ये हो गया, क्योंकि बाद में टेक्नो जो साउंड आया ना ये थोड़ा टाइम लेने लग गया। क्योंकि देखिए जब आप कोई काम करते हैं तो आपको एक बात बता दें कि आपको वो उस चाल में चलना पड़ेगा साथ में। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोगों ने जितने भी गाने किए अफलातून के या जो भी प्रोग्रामिंग होते थे उसके साथ साथ हमारा ऑर्केस्ट्रा भी होता था
1: जी,
0: लाइफ ऑर्केस्ट्रा भी, तो हम लोग पहले ट्रैक ले लेते थे, फिर ट्रैक ओपन करके इनके वॉइस जो कोरस मतलब जितने ऑर्केस्ट्रा है कोरस है उनमें हेडफोन में उनको आता था जो हमारा कीबोर्ड का जो प्रोग्रामिंग का है। अब जैसे आप देखिए मेरा गाना था ओले ओले, अब अफलातून ये 98 के करीब के गाने हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो हम लोगों ने उस वक्त से भी मतलब मॉडर्न थे हम लोग, जो आज भी हिट है।
1: तो अभिजीत साहब की आवाज में ये गाना रिकॉर्ड हुआ था।
0: हाँ, ये पहले किसी और के था और अभिजीत आया था एक गाने की एक लाइन गाने लिए, लगी लगी है ये दिल की लगी ना समझो इसे दिल लगी। देखिए जब सक्सेस होना होता तो ईश्वर की कृपा होती है
1: जी।
0: उसने गाया और उसकी वॉइस क्वालिटी, और नो डाउट मेहनती लड़का तो था ही वो,
1: बिल्कुल।
0: उसने जी जान तोड़ के वो गाने को गाया ओले ओले गाने के बाद। अब वो गाना क्या हो गया कि मैं और पेमिला जी मतलब मिसेस चोपड़ा
1: पेमिला जी
0: तो अक्सर हम लोग जब भी बातचीत होए वो बोले नहीं वो सिंगर ठीक है, मैं बोला नहीं जी ये ठीक है, अभिजीत ठीक है, तो बोले नहीं दिलीप जी ये कुछ लाउड नहीं लग रहा। आखिर मैंने बोला सैफ की जो वॉइस का टोन है वो इसका टोन ज्यादा बेटर है,
1: मिलता है।
0: फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं की। तो एक बार हम लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे इतने में यश जी आ गए, यश जी आते हम दोनों चुप हो गए, तो हम दोनों को देखते यश जी समझ गए कि कुछ बात कर रहे थे, चुप हो गए। हाँ भाई क्या बात हो रही थी आपस में, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसे ही बात है। नहीं तो यश जी ने बोला बोलो तानसेन क्या बात है, मैं बोला कुछ नहीं, बहन जी बोल रही है कि वो फलाना सिंगर है, और मैं बोला आप क्या चाह रहे हो, मैं बोला अभिजीत ज्यादा ठीक लगा। तो यश जी ने मेरी तरफ और प्रेम जी की तरफ देख के बोला देखो प्रेम हम डायरेक्शन डिपार्टमेंट के हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं, ये हमारा काम है, म्यूजिक का हमारा नहीं है, म्यूजिक का काम है म्यूजिक डायरेक्टर का, गाना इन्होंने बनाया है, तो ही इज नो वेरी वेल कि इसमें कौन सा सिंगर है। अगर रामसेन बोल रहे हैं कि अभिजीत सही है तो अभिजीत सही है, वो हमको इसमें आपको बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, रामसेन जी अभिजीत का ही रखेंगे, इस तरीके से वो अभिजीत का रहेगा।
1: क्या बात, और बहुत शानदार गाना गाया उसने।
0: नहीं नहीं बहुत अच्छा
1: आवाज में जो सैफ अली साहब की आवाज
0: सूट हुई और
1: बिल्कुल सूट हुई।
0: नहीं और अभिजीत ने मेहनत भी की।

0: क्या होता है, ऐसे ही कोई नहीं स्टार बन जाता, कुछ तो काबिलियत होती है। और मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से लता दीदी का उन्होंने आएगा आने वाले से कई पहले गाने गाए थे, बट जैसे उनका महल का गाना आया आएगा, तो दीदी को लाइमलाइट में आना था
1: जी,
0: आई
1: जी।
0: तो आज इसी तरीके से सिंगर की जो जिंदगी है कोई ना कोई गाना बना देता है,
1: बस उस पल का इंतजार होता है।
0: हाँ,
1: जैसे आपकी जिंदगी बनी सुरमा भोपाली से, आईना से,
0: हाँ, मगर
1: वो
0: पहचान बनी ओले ओले से।
1: चलिए एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
0: एक गाना मुझे आर्य बर्मन जी का, मतलब एक गाना था चिंगारी कोई भर के,
1: अमर प्रेम का,
0: अमर प्रेम का एक गाना है। ये गाना मुझे दिल को इसलिए छूता है कि उसकी जो लय है, चिंगारी कोई, वो इतना लय, दबी हुई लय में गाना है, मगर जो बख्शी साहब ने लिखा, जो किशोर दा ने गाया और जो कंपोज हुआ, मैं समझ रहा हूं कि बस ये आइडियल चीजें हैं, ये हमारी स्कूल है। इसी गाने के हिसाब से मेरा टेम्पो मैंने रखा था, मेरा हम तुमसे ना कुछ कह पाए, हमने भी यहीं से एक टेम्पो लिया था। तो मैं चाहूंगा कि ये चिंगारी गाना आप सुनाएं।
1: जी बिल्कुल, सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: तो दिलीप जी, आपने जैसा कि कहा कि आर डी बर्मन साहब का ये गीत या किशोरदा की आवाज या आनंद बख्शी के बोल, क्या इन सभी लोगों से मिलना आपका हुआ कभी?
1: नहीं, किशोरदा के साथ तो ऐसा है, मेरा मुलाकात किशोरदा उस वक्त जिंदा थे
0: और आर डी बर्मन साहब
1: से, आर डी जी के साथ तो इसने काफी काम किया। किशोरदा का तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक फिल्म थी हमारी, अमित जी गा रहे थे, अमित कुमार। तो अमित कुमार क्या किया, हमको नीचे बिठा के काफी देर तक आए नहीं। तो दादा उस वक्त दो बार घूमे, दादा घूमे तो मैं खड़ा होकर उनके पैर छूने के बोले, नहीं नहीं, सेन साहब के लड़के बहुत मजा, वो जो उनका स्टाइल है, अमित नहीं आए। इतने में अमित नहीं जाए तो उनको बोला, देखो अमित, ये नॉर्मल संगीतकार नहीं है, ये बहुत बड़ा खानदान है, इनको वेट नहीं कर

0: आने का, टाइम से रखो, टाइम दिया तो टाइम, अभी इतनी देर से बैठे हैं नहीं है, आइंदा ध्यान रखना। वो मेरी मिट्टी, और हमारा एक गाना गाने वाले थे सुरमा भोपाली, मगर वो किसी कारण उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं गा पाए, तो फिर वो गाना मोहम्मद अजीज ने गाया। तो ये जो लीजेंड लोग हुए ऐसे ही नहीं हुए। और गाना जब कोई चलता है, मैंने कहा ना कि सिंगर जो होता है वही उसको लेके चलता है, तो जितना अच्छा कंपोजिशन, जितनी अच्छी लिखावट थी, उतनी अच्छी फील भी इस गाने में, जो मुझे तो अच्छी लगी, शायद ऑडियंस को भी लगती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ऐसे गाने हैं जिन्हें कभी भुलाया ही।
0: और उसके बाद में मैं एक किस्सा सुनाऊं आपको, बख्शी साहब के साथ जब मैं काम करने लगा, पहली फिल्म उन्होंने की मेरे साथ तू चोर में सिपाही
1: जी,
0: तो जिसका वो गाना था, हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर, वो पिक्चर मेरी चली। फिर उसके बाद में एक पिक्चर थी हमारी भीष्मा, तो उसमें गाना उनका, बाकी गाने तो चले मगर एक गाना उनका बहुत चला, वो मेरे सीने में दिल मेरा डोले के पिंजरे में पोपट बोले। क्योंकि मैं देखिए जिन जिन लोगों के साथ मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं, कैफी आजमी साहब के साथ मैंने पिक्चर की थी जाना ना दिल से दूर
1: जी,
0: और नीरज साहब के साथ में एक पिक्चर की जाना ना दिल से दूर, विजय आनंद जी की, जो देवानंद जी की लास्ट पिक्चर थी एज ए हीरो,
1: हाँ।
0: वो किसी कारण रिलीज नहीं हो पाई, विजय आनंद जी की भी लास्ट पिक्चर थी वो, और जिसमें नीरज साहब के गाने थे, कैफी आजमी साहब के गाने थे, एक गाना था उसमें, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहां कहां से गुजर गया,

0: मेरे नू।
1: क्या बात है।
0: इसका अंतरा सुनिए आप। आंखें बरसे बदरा बरसे, अग्नि ना कोई बुझाए, हाय हम तो सबको गले लगाए, हमें ना

0: तो ये बहुत भाग्यशाली रहा। फिर मैंने इनके साथ जावेद अख्तर साहब के साथ फिल्म की, अर्जुन पंडित, जिसका एक गाना हमारा काफी पॉपुलर हुआ, हर कदम पर कोई कातिल है कहां जाए कोई। फिर असद भोपाली साहब के तो साथ की मैंने, सुरमा भोपाली, माया गोविंद जी के साथ एक मैंने काफी काम किए, जिनमें एक हमारी पहली सीरियल है जिसको टैप टोन में नंबर वन का अवार्ड भी मिला है, वो थी फिल्म रमेश सिप्पी जी की किस्मत,
1: किस्मत।
0: हंसना।

0: गीतकार माया गोविंद के साथ आपने काम किया है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम महिला गीतकार हैं, तो
1: नहीं,
0: माया
1: उनमें
0: गोविंद,
1: माया जी के अलावा एक रानी मलिक जी थी,
0: रानी मलिक थी जी,
1: बहुत अच्छी राइटर थी, काफी गाने उनके हिट हुए, मगर उनका एक गाना मेरे साथ काफी बड़ा हिट रहा, वो गाना था फिल्म मेहरबान का, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते
0: बहुत सुंदर गाना,
1: तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। ये सोनू निगम जी का एज ए सिंगर फिल्म में खुद का गाया हुआ गाना पहला गाना था।
0: अच्छा।
1: इससे पहले उन्होंने अताउला के गाए थे, अच्छा दिसेला दिलिया तूने, रफी साहब के वर्जन गाए थे, मतलब एक होता है ना कि जिस गाने की मोहर लगे कि पहला गाना एज ए सिंगर
0: वो ये था। हाँ, तो क्या अनुभव रहा सोनू निगम के साथ काम करने का? आज तो वो इतने बड़े कलाकार के रूप में है, वो पहला गीत गाते समय क्या उनका वो रहा
1: नहीं, वो
0: होगा?
1: गीत दरअसल उसका था भी नहीं, जब ये क्योंकि सोनू जी वहां काम करते थे और बच्चे ही थे, तो गुलशन जी को वो बोलते थे कि यार एक बार मुझे दिलीप सैन समीर सैन के यहाँ साथ में गाना है। तो गुलशन जी आए मेरे पास, बोला यार दिलीप जी ये काम करो, ये गाना जो बन रहा है ये सोनू से गवा लो। मैं कहा सर मिथुन चक्रवर्ती है, आयशा जुल का, मिथुन जी की चेहरे पे ये वॉइस थोड़ी पतली।

0: लगेगी, मैं चाहता हूं शब्बीर या मोहम्मद अजीज कोई हो। नहीं, आप सोनू से गवाइए, बेचना तो मुझे ही है। सोनू ने गाया, सोनू ने इतना अच्छा गाया। और सोनू के अंदर एक बात बहुत अच्छी है, वर्सेटाइल सिंगर तो है ही वो, मगर उसके अंदर एक कोई कुदरत की ऐसा जादू है कि उसको अगर बोल दो ना कि इसके अंदर ये भाव चाहिए तो भाव वो पैदा कर देता था। तो सोनू जी में बात तो है, तभी तो देखा आज सुपरस्टार है वो।
1: जी। तो एक गाना सुन लेते हैं, और कौन सा गाना?
0: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है इसी पिक्चर में, धीरे से।

0: इतना गहरा अनुभव आपका रहा है, इतने सारे कलाकारों के साथ, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सभी के साथ आपने काम किया है और बहुत सफल गाने आपने दिए हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपकी चॉइस या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की चॉइस अलग रही हो और आपको एडजस्ट करना पड़ा हो और कोई फिर एक बहुत ही शानदार गीत निकल कर आया हो?
1: नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत नसीब वाला रहा हूं इस मामले में, क्योंकि मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे काम पे के साथ साथ मेरी बातों पे बहुत भरोसा करते थे और उनको ये लगता था कि ये आदमी कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा।
0: जी
1: फिल्म लाइन के अंदर जो बाकी डिपार्टमेंट है उनमें 19-20 चल जाता है
0: जी जी
1: कि आप शाहरुख खान लग रहे हो, आप फलाने लग रहे हो, आप बहुत अच्छा गीत लिख रहे हो, ये कर रहे हो, बट सिंगर आप किसी को नहीं बोल सकते। सिंगर जब तक आप सुर में नहीं होंगे तब तक आप यहां दिल में नहीं लगोगे।
0: सही कह,
1: दुनिया में अगर कोई सुकून की चीज है जो बगैर पैसे के मिलती है वो है संगीत और वो है गाना। अगर आपके मिजाज का गाना अगर आपको मिल जाता है, आप गाते हैं तो हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो सुनने को भी अगर आपको मिल जाता है तो भी आपको सुकून मिलता है।
0: जी,
1: तो इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। तो ऐसा, क्योंकि जो मेरा डिपार्टमेंट है राइटर के लिए जो मुझे देते गए, मैं आज भी किसी को नहीं बोलता हूं कि फलाना राइटर है या फलाना। सिंगर के लिए जब मेरे पास कोई बात आती है तो मैं जरूर कह देता हूं कि भाई मुझे सिंगर वो दो जो मुझे समझ सके और मैं उसे समझ सकूं, क्योंकि मेरी कोई जाति दोस्ती या दुश्मनी तो होती नहीं सिंगरों से। मैं सुन लेता हूं, हाँ इस बच्चे में ये टैलेंट है, अच्छा कोई 19-20 होता भी है सिंगर तो हम उसको सपोर्ट करके बाकायदा वहां तक पहुंचाते।
0: तो दिलीप सेन साहब, जब आज के समय में तो ऐसा हम सुन ही रहे हैं कि ऑटो ट्यून जो टेक्निक आ गई है वहां थोड़ा सा आवाज 19-20 को ठीक कर दिया जाता है, लेकिन जिस समय आप संगीतकार बने थे, जब कड़ी मेहनत का जमाना था, रियाज का जमाना था, क्या कभी कोई कलाकार की आवाज 19-20 हो जाती थी? क्योंकि आपने तो बहुत सारे
1: नहीं,
0: कलाकारों के साथ काम किया है।
1: मैं बहुत नसीब वाला रहा हूं कि देखिए, कुमार सानू, उदित नारायण, अभिजीत, सोनू निगम, सुनिधि, अपना जसविंदर नेरुला, ऋचा शर्मा, अपना
0: अनुराधा
1: जी,
0: अलका याग्निक,
1: अलका जी, साधना सरगम जी, कविता जी, ये पंकज उदास जी, और मना अपना पंकज के अलावा मेरे साथ विनोद राठौड़ जी, मुकेश जी, नितिन मुकेश है, मोहम्मद अजीज है, शब्बीर जी, अनवर, इवन अपना शंकर महादेवन, अपना ये क्या बोलते सुखविंदर, बाली ब्रह्मभट्ट,
0: अरे क्या,
1: जॉली मुखर्जी, ये जितने सिंगर मुझे जिस वक्त मिले, प्रमिला जैन, अपना सुषमा श्रेष्ठा जो
0: पूर्णिमा के नाम से
1: पूर्णिमा
0: हैं,
1: जी, और कोई सिंगर छूट नहीं जाए भाई, किसी को बुरा ना लग जाए, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट श्वेता सेट्टी, ये जितने अलीशा चिनोई, मुझे जितने भी सिंगर मिले या जिनके साथ काम करने का मौका मिला, वो चित्रा जी और हरिहरन जी, ये इन्होंने मुझे हद से ज्यादा प्यार दिया और मेरी गरिमा को या मेरी पोस्ट को एक रिस्पेक्ट दी जो मैं चाहता था, वो उस वक्त वैसा ही करते थे, चाहे वो कुमार सानू जी रहे हो, सोनू जी रहे हो, क्योंकि नो डाउट जब ये कोई भी गाना बनता है तो वो नया होता है, शब्द भी नए होते हैं, धुन भी नई होती है। अब सिंगर क्या होता है कि सिंगर जब आता है तो ये लोगों की एक बड़प्पन ये रहा है कि जब ये मेरे पास आते हैं तो ये सिर्फ मेरे लिए ही आते हैं, सुरेश वाडेकर जी हुए, फिर वो उस दिन दूसरा कोई काम नहीं लेते हैं।
0: जी
1: वो इसलिए नहीं लेते कि भाई दिलीप सेन के यहां कितना टाइम लग जाए, और ऐसा नहीं कि मैं सिंगर को कोई तंग करता हूं,
0: नहीं नहीं वो बात
1: तो
0: नहीं,
1: वो
0: रिस्पेक्ट,
1: उनको पता है कि एक ड्यू रिस्पेक्ट
0: और
1: कि
0: कला
1: यार
0: के
1: वहां
0: प्रति,
1: जाएंगे तो वो भागने का काम नहीं करना
0: और
1: है,
0: कला के प्रति समर्पण,
1: समर्पण के नहीं यार, वो जब तक दिलीप सेन, समीर सेन मुतमिन नहीं होंगे, जब तक वो परफेक्ट नहीं बोलेंगे हम उनके यहां से दूसरा गाना गाने जाएंगे नहीं।
0: तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
1: जी बिल्कुल, सुनिए।
0: कौन सा गाना?
1: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है जो दीदी ने मेरे दिल से गाया था, होठों पे बस तेरा नाम है,
0: तुझे चाहना मेरा काम
1: काम
0: है,
1: है जी।
0: फिल्म ये दिल लगी का गीत, बहुत सुंदर गीत है
1: जी
0: दिलीप
1: जी
0: सेन
1: जी
0: साहब
1: जी
0: ये।
1: जी

0: आपका परिवार संगीत सम्राट तानसेन की परंपरा से जुड़ा हुआ रहा है? और
1: नहीं, हम केसर सेन की औलादे हैं, मतलब केसर सेन जी उनके शिष्यों में गिने जाते हैं।
0: जी, तानसेन के शिष्यों में गिने जाते थे। तो और आपके पिता जमाल सेन साहब भी जाने माने संगीतकार रहे, और आपके घराने की जो विरासत के कारण आपके गानों में एक जो इंडियन क्लासिकल बेस और पक्के सुरों की जो गहरी समझ दिखाई देती है आपके गीतों में, आपकी संगीत रचनाओं में, लेकिन साथ ही हमने देखा कि आपके कुछ गानों में देसी तरीका भी अपनाया गया है, जहां पर टेबल पर धुन थपथपाते हुए भी गीत कुछ आए हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कैसे है?
1: नहीं देखिए, एक चीज याद रखिएगा, फोक जो है, अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि फोक कहते हैं किसको है।
0: जी,
1: फोक कहते हैं आमद को। एक चीज आमद होती है, तो इसी तरीके से हमारी जो माताएं बहनें उस जमाने में, आज से 100-200 साल पहले, दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गढ़ रण भवन सू आयो विनायक करो ये नसीती विन धरी मारा दिल।

0: या जी, वो इस तरीके से करके ज्वाइंट करती दे रहती थी।
1: बिल्कुल
0: तो वहां से ये फोक ट्यूने
1: शुरू
0: निकली।
1: हुआ।
0: जैसे रेशमा जी के लिए कहते हैं कि रेशमा जी ने फोक से ही शुरुआत की, और वो भी राजस्थान से हैं,
1: जी
0: मेहंदीहसन साहब भी राजस्थान से हैं।
1: बिल्कुल
0: तो जितने भी लोग राजस्थान के कल्चर में पैदा, क्योंकि राजस्थान की जो मिट्टी है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, इनका सबका एक अपना कल्चर है। और फोक जो है, फोक हमारी आत्मा है, क्योंकि हर जगह राग तो चलती नहीं है, तो फोक ही होता है। मगर फोक कहीं ना कहीं, फोक में क्या होता है कि उतार चढ़ाव नहीं होता, वो एक ही ट्यून होती है, वो एक ही ता जैसे सा है तो उसी सा में चला जाएगा वो। फिर उसको हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं, ये थोड़ा ऊपर नीचे करके कर लो, तो हम लोग करते हैं। तो हम लोग ने भी जैसे कि
1: कई गीतों में आपने ये प्रयोग किया।
0: नहीं, पर मैंने एक, मैं बहुत अविनाश करके हैं, गुजरात के बहुत बड़े संगीतकार हुए हैं
1: जी
0: जिनका काफी हिट गाने हिट हुए। उनका एक गाना था, अमे की याते गाम ना गोरी राज अचको मचको कारेली। हमने थोड़ा सा उनसे एडोप्ट किया उस गाने को, हम मेरी टोली के टूटे सब धागे अचको मचको का करू ना। तो ऐसे हम लोग थोड़ा बहुत फोक का सहारा ले लेते हैं, बट कोशिश ये करते हैं कि अपनी ज्यादातर की कंपोजिशन खुद की हो।
1: कहीं से उठाकर नहीं ली
0: नहीं
1: गई हो
0: नहीं
1: ताकि वही
0: फोक तो
1: जो
0: आप किसी का भी ले सकते हो। अब नौशाद साहब का अमूमन ज्यादातर के अगर गाना सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फोक ट्यूनिंग के आसपास के नजर आएंगे, बाकी वो अपनी कंपोजिशन करते हैं। वैसे नहीं, नैयर साहब हुए, उन्होंने पंजाब के फोकों को काफी इस्तेमाल किया, तो वो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे कल्चर को हम उठा के दे रहे हैं।
1: हाँ।
0: अरे हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं,
1: जी।
0: जहां हमें हर प्रांत की भाषा, हर प्रांत का पहनावा, हर प्रांत का संगीत, हर प्रांत का खाना पीना, इतनी वेराइटियां दुनिया में कहीं नहीं है। आप
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो इसलिए हमें तो गर्व है इस बात का कि हम हिंदुस्तानी हैं और भारतवर्ष में पैदा हुए हैं।
1: बिल्कुल
0: तो आप काम ऐसा करो कि आने वाली पीढ़ी के अंदर कुछ अच्छी बातें जाए। आप काम ऐसा करो कि लोग बाग आपको जब भी बाजू में से निकले तो लोगों में बोले, नहीं यार ये दिलीप सेन जा रहा है, ये दिलीपिया जा रहा है, ऐसा नहीं, ये दिलीप सेन जी जा रहे हैं या दिलीप जी जा रहे हैं। आपके नाम के आगे पीछे जी लगना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: और जी
1: सही
0: तब लगेगा जब जी वाला काम, दूसरों का दिल जीतोगे।
1: जी। चलिए एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं। कौन सा गाना है?
0: अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते
1: बहुत सुंदर गाना।
0: तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। मैं चाहूंगा कि ये गाना आप सुनाएं।
1: जी बिल्कुल सुनाते हैं। चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: आपकी पांचवी पीढ़ी फिल्मी दुनिया में कदम रख रही है और आपको दादा साहब फाल्के जनरेशन पुरस्कार 2012 में मिला, इसके बारे में हम जानना चाहते।
1: देखिए, दादा साहब फाल्के के लिए मैं क्या बोलूंगा, पूरी दुनिया जानती है कि पितामह रहे हैं
0: जी,
1: जिनकी वजह से आज हम सब रोटी खा रहे हैं। उनके नाम का अगर आपको कोई छोटा सा पर्चा भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। तो ये चार जनरेशन को मिला था, मतलब जमाल सेन से सोहेल सेन तक,
0: अच्छा,
1: चार पीढ़ी को के एक सम्मान मिला कि भाई इतना लंबा मतलब
0: सफर
1: जो कपूर खानदान का रहा है या सेन परिवार का
0: जी
1: संगीत
0: जी
1: में रहा है।
0: जी जी
1: और पांचवी पीढ़ी में अभी मेरा पड़पोता समर जो सोहेल का बेटा है,
0: अरे वाह, मतलब सोहेल तो आ ही गए हैं, सोहेल सेन के बेटे भी आ
1: बेटे
0: गए
1: भी
0: हैं।
1: आने वाले हैं अभी जल्द। जी
0: जी, तो बहुत ही शुभकामनाएं हैं आपको और
1: धन्यवाद जी,
0: आपके
1: धन्यवाद।
0: परिवार को। और नए गायकों, नए संगीतकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, जितने जो लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर मेरा उन लोगों से एक ही कहना है कि देखिए, इंस्पायर होना कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी को देख के और उसकी चीज की तारीफ करके आप उस जैसा मत बनो, उसके साथ कोई मिलती जुलती सी चीज अगर आप बनाते हो तो उसमें क्यों आपकी अलग एक तारीफ बनती है। और हमें अपना जो हिंदुस्तानी संगीत है उसको खोना नहीं है, जो आज लुप्त होते जा रहा है। मगर मुझे उम्मीद है कि शायद ये नई जनरेशन जो आ रही है, हमें थोड़ा संगीत सीखना चाहिए, संगीत की मालूमात रखनी चाहिए, शायरी की मालूमात रखनी चाहिए,
0: जी,
1: कविताओं की मालूमात रखनी
0: भाषा
1: चाहिए,
0: की,
1: भाषाएं में जिनमें देखिए कविताएं आनी चाहिए, शायरी उर्दू। जरूरी नहीं है कि आप उर्दू पढ़ें, मगर कम से कम जैर जबर तो हो, आप तलफ्फुज तो सही करा सकें। तो ये जो चीजें हैं सिंगर के

0: लिए भी जरूरी है, म्यूजिक डायरेक्टर के लिए भी जरूरी है। आप जरूरी नहीं है कि 100 राग हैं या 50 राग हैं या बेसिक दो चार पांच, क्योंकि आजकल भैरवी, यमन कल्याण, भोपाली या पहाड़ी या समझो शिवरंजनी, इस टाइप के जो चार पांच रागे हैं वो थोड़ा बहुत उसका अनुभव हो। कॉर्ड से गाना बनाइए, मगर कम से कम आप अपनी मेलोडी को मत जाने दीजिए, जो आपकी धरोहर है
1: उसे रखिए।
0: उसे आप कायम रखिए। क्यों? कि आज हमारा हिंदुस्तान जो हमारी सभ्यता से ही पहचाना जाता है,
1: जी
0: हमारी संस्कृति से हमारा हिंदुस्तान पहचाना जाता है, हमारी पूजा पाठ से, हमारी इबादत से हिंदुस्तान पहचाना जाता है, क्योंकि हम अनेकता में एकता में पहचाने जाते हैं कि हमारे सर्वधर्म सम्मान है। हम हर
1: जी
0: धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, हर संगीत की हम रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारे यहाँ जितने प्रांत है उतना ही हमारा अलग अनूठा संगीत है,
1: जी
0: प्यारा संगीत है। आप किसी भी प्रांत का संगीत ले लीजिए, आपका दिल खुश होगा। पूरा प्यारा सा गुलदस्ता है हमारा संगीत का।
1: बिल्कुल सही कहा। बस जाते जाते एक

0: और हमारे यहाँ जितने प्रांत है उतना ही हमारा अलग अनूठा संगीत है, प्यारा संगीत है। आप किसी भी प्रांत का संगीत ले लीजिए, आपका दिल खुश होगा। पूरा प्यारा सा गुलदस्ता है हमारा संगीत का।
1: बिल्कुल सही कहा। बस जाते जाते एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं।
0: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है, मैं चाहूंगा कि ये गाना आप सुनाएं।
1: जी बिल्कुल सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: दिलीप सेन साहब, जाते जाते कि आप एक शास्त्रीय बंदिश हमें अगर सुना दें तो हमारे श्रोता भी खुश
1: मैं
0: होंगे।
1: आपको एक वो चीज सुनाने जा रहा हूं कि जो आज तक शायद आप लोगों ने नहीं सुनी हो।
0: जी
1: शिव तांडव तो आपने सुना ही है, जैसे कि जटाट जब प्रभाव भीतस्थले वीरो विलंब विलंब भूतम भूतंग तुंग मार जटाट विगल जुल प्रभाव भीतस्थले, ये शिव तांडव हो गया।
0: जी
1: कि हनुमान तांडव जो है कि हनुमंत के लपेट दिल अंगूर की झपेट दिल दुष्ट को दपेट चले पेट चकल न बजे नक चला तो दिन तो होता कटा कटे गिरी से न पटा पटे पटी पटी पाट कभी गुह की लकार की लजू हो जी लकार पड़ी भीड़ भी लकार कटे रखे निदान तह तेज को कुमार करी को बेसुमार वीर लखन कुमार झुकी जारी की रवान प्यारे सीताराम को उजारू रघुवंश को अनियार जन पेजे महागुरु रण को रघुकुल मंडल प्रचंड बैरी दंड मुंड दंड न उमन न सुख न कल को गुप्त दशरथ तो को न वेलो अल बेलो न रेलो रूप रेलो चल राग सनी कर को आन शक्त की रेती उमंडी खल खानी चंडी पति सो घमंडी कुल खानी दिने कर को, ये इस तरीके से पूरा हनुमान तांडव है जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, जो मेरी आवाज में रिकॉर्ड है। और इसी से ये जो रैप बना है, जो बोलते हैं ना लोग प्रदेश का है, कहीं का नहीं है, हमारे छंद है। आज से 10,000-20,000 साल पहले के ये छंद है जो हम डांस में यूज करते हैं। इसे तूने मुझे देखा नहीं, मैंने तुझे देखा नहीं, चाय भी पिलाऊंगा खाना भी खिलाऊंगा, चले मेरे साथ तेरे बाप को मिलाऊंगा।
0: अच्छा,
1: तो इससे आप कुछ भी रैप वगैरह बना सकते हैं। तो ये रहा और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के। इसलिए आपके पूरे परिवार को, आकाशवाणी को, विविध भारती को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां, नमस्कार।
0: बहुत खूब, और आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार,
1: धन्यवाद।
2: तो ये था संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय,
0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
3: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
3: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है।

0: फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेएस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

छाया गीत कार्यक्रम सुनने वालों को पूनम त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार। चल पड़े साथ ऐसे हम बनके जन्म जन्म के साथी, चल पड़े साथ ऐसे हम बनके जन्म जन्म के साथी। तुम कहते रहो मैं सुनती रहूं, और ये बरखा की रात यूं ही बहती रहे।

मस्ती से बहती पवन झूम झूम के डोले, जब बरखा की हर बूंद तन में हलचल सी कर जाए। काली घटाएं बादल बन बरसे, जब बावरा ये मन झूम झूम के गाए।

0: सावन बहका है, बूंदों पर है खुमार, मनवा भी बहका है, बागों में मेले हैं, झूलों के मौसम में साथी अलबेले हैं, शायद सावन भी कुछ कहता है।
1: कुछ

चुनरिया जब थानी प्रकृति करे श्रृंगार, मोती बरसाता गगन सोना उगलती धरा, नए रंग के ये ऋतुएं मनमोहक आलम सी है छटा, चारों ओर छाए मदहोशी सावन की।

बहती हवा ने तेरी खुशबू बिखेर दी, रिमझिम फुहारों ने जब तेरे जुल्फों का साथ छोड़ा, भीगी रात में तेरा करीब रहना, ऐसा लगता है जैसे मेरी सांसों में तेरी सांसों का घुल जाना।

की बूंदों में झलकती है उनकी तस्वीर, सावन की बूंदों में झलकती है उनकी तस्वीर, आज फिर भीग जाने को हम है बेकरार, तुझे पाने की चाहत में।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का युवा अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार सदैव ऊंचे रहे और

0: युवाओं ने शास्त्रों का आत्मसात किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैसूरु भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है।
1: मैसूरु भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। यहाँ के मंदिर, यहाँ की परंपराएं और उत्सव, मैसूरु का दशहरा, यहाँ के भव्य महल, इसका संगीत और साहित्य, भारत की विरासत इस शहर के कण कण में रची बसी है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है।
1: आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा कचरा निस्तारण स्थल का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अपशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी गई कि 31 जुलाई तक कचरा निस्तारण स्थल पर लगभग 99 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट का निपटान किया जा चुका है और शेष अपशिष्ट को इस वर्ष 15 अक्टूबर तक निपटाने की उम्मीद है। श्री लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई जाए। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अब तक भारत ने 3 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। मुक्केबाजी में प्रीति पवार ने 54 किलो और जैस्मिन ने 57 किलो में स्वर्ण पदक जीते। 55 किलो में जादुमणि सिंह ने रजत पदक जीता। इसके अलावा सोनम राणा ने पैरा एथलेटिक्स के शॉट पुट F57 वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। शुभम जोयाल को रजत पदक मिला। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेलवा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पदक तालिका में भारत 8 स्वर्ण, 15 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 30 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। जारी है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
3: Go home. High spirits,

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: तितलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर

0: की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको बता दें झरोखा के अंतर्गत आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या रंजन 6:35 पर। संगीत सरिता कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 6:45।

20 मिनट पर। शाम 7 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम विशेष जयमाला, संगीतकार जयदेव पर आधारित। कार्यक्रम जिज्ञासा आप सुन सकेंगे शाम 7:45 मिनट पर। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हवा महल। चित्रलोक कार्यक्रम सुन सकेंगे रात 8:15 मिनट पर। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 9 बजे। रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। कलाकार हैं अभिनेता भगवान दादा, आलेख और स्वर जयंत पात्रिकर का, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रात 10 बजे सुन सकेंगे कार्यक्रम छाया गीत। रात 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ढलती जाए रात। रात 11 बजे आप सुनेंगे चित्रपट संगीत मैटिनी शो। आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। कल सुबह 5:52 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदन बार। छह बजकर 35 मिनट पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का 268वां भाग। 6:45 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। 7 बजे ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। सुबह 7:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। कार्यक्रम त्रिवेणी आपको सुनवाएंगे सुबह 8:15 पर। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। इसमें आप सुनेंगे संगीतकार जयदेव को, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 बजे आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम पिटारा। इसमें आप सुनेंगे फिल्म संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की।

कल सुबह 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे दोपहर 12:05 पर। दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम त्रिवेणी आपको सुनवाएंगे दोपहर 2 बजे। सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम मनचाहे गीत। नाट्य तरंग आप सुनेंगे दोपहर 3:30 पर। शाम 4 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम पिटारा उजाले उनकी यादों के। फिल्म निर्देशक, लेखिका, नाटककार पद्मभूषण साई परंजपे से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग आप सुनेंगे। संपादन सहयोग मनीषा सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

शाम 5 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम छाया गीत, तराने नए पुराने। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 5:30 से।

संगीत सरिता का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे शाम 6:45 पर। कल शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विशेष जयमाला, सैनिकों की शौर्य गाथा। महावीर चक्र कृष्ण नायक सोनवणे, संपादन सहयोग मनीषा सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। 7 और आवाज ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:45 पर। गिटार पर होंगे सुनील गांगुली। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हवा महल, इसमें आप सुनेंगे नाटक अदाकार, लेखन लक्ष्मीकांत शर्मा का, निर्देशन एफसी माथुर। चित्रलोक कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे रात 8:15 पर। कार्यक्रम आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9 बजे। रात 9:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आज के फनकार, इसमें आप सुनेंगे संगीतकार जयदेव को, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रात 10 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम छाया गीत, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:30 पर। कार्यक्रम विविधा आपको सुनवाएंगे रात 11 बजे। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

0: संगीत सरिता के श्रोताओ नमस्कार। आज से हम एक श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं जिसका शीर्षक है वर्षा चौमासा। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल। शुभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए।
0: शुभा जी आपका तो हम सभी, मैं व्यक्तिगत रूप से, विविध भारती परिवार की ओर से और विविध भारती के अनगिनत श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये जो श्रृंखला हम आरंभ कर रहे हैं वर्षा चौमासा, तो इसकी भूमिका में तो मैं अगर ज्यादा बोलूं तो अच्छा नहीं रहेगा, आप ही कुछ समझाएं बताएं कि आपके मन में क्या क्या सारी बातें हैं, हम कड़ी दर कड़ी बातचीत करते जाएंगे।
1: पहले तो ये बात आपको याद दिला दूं कि उत्तर भारतीय संगीत का और उत्तर भारतीय संगीत के जो विभिन्न प्रकार हैं, चाहे वो शास्त्रीय हों या उपशास्त्रीय हों या लोक संगीत हो, सभी का ऋतु से सघन संबंध रहा है। ये सत्य है एक, जो कि सर्वविदित है, सर्वमान्य है, तो इसे बार बार दोहराने की कोई आवश्यकता भी नहीं। और जो वर्षा का एक आप कह सकते हैं विशेष स्नेह रहा है संगीत के साथ, उसके बारे में भी सबको पता ही है। बल्कि मजे की बात यह है कि बारिश ना हो सामान्य जीवन में या कम हो तो अकाल का डर
0: तो
1: बढ़ जाता है,
0: आंखों से शुरू हो जाती है।
1: नहीं, अकाल का डर हो जाता है, यदि ज्यादा हो जाए तो बाढ़ का कहर ढा सकता है। लेकिन जो रचनात्मक लोग हैं, जो कलाकार हैं, जो कि कलाकृति करते हैं, उनके लिए बारिश हो ना हो, कम हो, बूंदाबांदी हो, मूसलाधार हो, वो उसके बारे में लिखते हैं, उसे संगीत में ढालते हैं और अलग अलग प्रकार का साहित्य, अलग अलग प्रकार की रचनाएं हमें मिलती हैं। तो इससे लगता है कि वर्षा और ये जो चार मास हैं जिसमें कि बारिश हमको मिलनी चाहिए यदि कृषियों के लिए लाभदायक हम मानते हैं इसे, तो इस दौरान शायद इतनी प्रेरणा मिली है कलाकारों को कि आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा खजाना है हमारे पास जिसके जिसमें कितने भी आप गोते लगा लें तो कभी उसका अंत नहीं मिलता, इतना गहरा है वो खजाना।
0: और इसी खजाने को हम टटोलते जाएंगे कड़ी दर कड़ी। शुभा जी, वर्षा काल या बारिश या वर्षा ऋतु कहने से बंदिशें जो आपसे अब हम सुनेंगे, बहुत से ऐसे कुछ शब्द जो मन को बड़ा मोह लेते हैं। आप तो कह रही थी कि बरखा हो ना हो, बूंदाबांदी हो या अकाल हो, तो ये जो साहित्यिक रूप है शास्त्रीय संगीत में, उपशास्त्रीय संगीत में या लोक संगीत में बारिश का, उसको लेके कि घने बादल, बादलों की उमड़ घुमड़, काली घटा, दादुर मोर पपीहे की बोली और बिजरी छाने वाली बदरी, और ये बदरी न सिर्फ आकाश में, आंखों में भी बदरी छा जाती है वाली बात, तो संयोग और वियोग, श्रृंगार की बातें, काफी सारी चीजें आप हमसे बतियाते जाएंगी और हमारे सभी श्रोताओं को ये श्रृंखला बहुत ही पसंद आएगी। आज हम किस राग से या किस पद से आरंभ कर रहे हैं?
1: मैंने सोचा है कि आज जो पहली प्रस्तुति मैं करूं वो राग शुद्ध मल्हार की एक मध्यलय रचना आपको सुनाना चाहूंगी। शुद्ध मल्हार न केवल रागांग राग है, यानी कि शुद्ध मल्हार के जो अंग हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं, उनको ध्यान में रख के अलग अलग मल्हार के प्रकार, जो कि बहुत विभिन्न प्रकार हैं हमारे पास, इसका कुछ अंश लेके उनकी रचना की गई है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि

ये जनक सा साधक माना जा सकता है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, इसके जो विशेष स्वर संगतियां हैं, वो आपको अन्य मल्हारों में मिलेंगी। प्राचीन राग भी है, जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें भी इसका उल्लेख मिलता है। कुछ में इसे मल्हार कहा गया है, कुछ में मलार कहा गया है, कुछ में मल्लारी कहा गया है, कुछ में मेघ भी कहा गया है, मेघ मल्हार भी कहा गया है। लेकिन जो मुझे तालीम में बताया गया है कि राग शुद्ध मल्हार जो है वो ही रागांग राग है।

0: ये शुद्ध मल्हार का स्वरूप हमें बताया गया है और इसमें एक तीन ताल में निबद्ध रचना मैं सुनाना चाहूंगी, धूम धाम ते आई बदरिया।
1: तो धूम धाम ते आई बदरिया, वाह।
0: जो स्वर में जो इसके जो अक्षर हैं इसमें ही एक भारी भरकम एक चीज है। धूम धाम ते आई बदरिया, गरज बरसे झहरे झूम झूम।
1: झहरे
0: जी मतलब जो एक झरने की तरह जैसे फूटता है उस तरह। गरज बरसे झहरे झूम झूम। अंतरा कहता है मोरवा शोर करे पपिहा पुकारे,
1: वही जो मोर शोर करत है।
0: जी
1: जी
0: मोरवा शोर करे पपिहा पुकारे, तापे पवन चलत सूम सूम।
1: हाँ
0: ये रचना सुनाऊंगी
1: जी। ये ताल कौन सी?
0: तीन ताल,
1: तीन ताल में निबद्ध है। और शुभा जी, शुद्ध मल्हार किस जाति का राग है?
0: इसमें पांच स्वर लगते हैं तो औड़व जाती है।
1: औड़व जाती है तो मैं तो उत्कंठित हूँ ही, सुनाइए ना।

0: श्रोता मित्रों, आज की कड़ी हम यहीं समाप्त करते हैं। शुभा दीदी से हम अगली कई कड़ियों में मुलाकात करेंगे। आज शुभा जी को भी नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रही हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: विशेष जयमाला।

0: फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जाने माने संगीतकार जयदेव ने।
1: फौजी भाइयों, जयदेव का सलाम। इस जयमाला के बारे में मैं सोच ही रहा था कि एक बहुत पुरानी याद आई। 1943 की बात है। दोपहर के वक्त मैं सो रहा था कि अचानक मेरे छोटे भाई ने मुझे आकर जगाया और कहा, भैया सुनिए, रेडियो से एक बहुत ही खूबसूरत और नए अंदाज का गाना आ रहा है। मैंने सुना और सुनते ही उस गीत में खो सा गया। एक अजीब कैफियत की आवाज और गाने का बिल्कुल नया अंदाज, पुरअसर मस्ती भरा। गीत खत्म हुआ तो नाम अनाउंस हुआ, कुमार सचिन देव बर्मन। बस उसी दिन से मैं सचिन दा का आशिक हो गया। उनसे मेरी पहली मुलाकात 48 में हुई, जब दादा जोधपुर में ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आए थे। मैं तो उनके इर्द गिर्द ही घूमता रहा। और फिर एक दिन वो भी आया जब 1954 में उन्होंने मुझे अपना असिस्टेंट बना लिया। 54 से 61 तक मैं बराबर बर्मन दादा के साथ रहा। उनकी कितनी बातें इस वक्त मुझे याद आ रही हैं, लेकिन बातें बाद में, पहले वही गीत सुन लीजिए।

0: संगीत के अलावा बर्मन दादा का एक और भी शौक था, वो था स्पोर्ट्स, खास तौर से फुटबॉल। इस खेल के मैचेस के दौरान में बर्मन दादा सब काम बंद कर देते थे, बस हर वक्त फुटबॉल का ही चर्चा रहता था। अगर उनकी मनपसंद टीम जीत गई तब तो प्रोड्यूसर्स का काम फौरन शुरू हो जाता था, और अगर बदकिस्मती से टीम हार गई तो समझ लीजिए कि प्रोड्यूसर्स के यहाँ भी एक हफ्ते तक काम बंद, फिर चाहे कितना ही नुकसान क्यों ना हो। अक्सर मैं नए गाने वालों या शायरों से यही कहा करता था कि अगर दादा के करीब आना है और उनके साथ काम करने का शौक है तो फुटबॉल के मैच का इंतजार करो, टीम जीत गई, दादा की टीम जीत गई तो तुम्हारा काम बना समझो, और अगर टीम हार गई तो अगले मैच तक फिर इंतजार करो। दादा को पान खाने का बहुत शौक था, हर वक्त पान की डिबिया साथ रहती थी, लेकिन उनके अलावा उस डिबिया का पान किसी को नहीं मिलता था। मैं उन चंद खुशनसीब लोगों में से हूं जिन्हें दादा अपना पान बड़े प्यार से दिया करते थे। न सिर्फ पान खाने का बल्कि पान में जर्दा खाने का चस्का मुझे वहीं से लगा। उनकी गोरी गोरी हथेली पर रखा हुआ जर्दा खाने का अजीब ही मजा था। खैर, आप कहेंगे कि जयदेव सिर्फ बातें कर रहा है, लीजिए दादा का एक और गीत जो मुझे बेहद पसंद है, सुनिए।
1: ओरे माझी

लीजिए, अब मैं आपको फिल्म चित्रलेखा का एक बहुत ही खूबसूरत गाना सुना रहा हूं। संगीत निर्देशक हैं स्वर्गीय रोशन। रोशन जी से मेरी मुलाकात उन दिनों हुई जब वो दिल्ली रेडियो पर काम करते थे और मैं वहां से गाया करता था। 1947 की बात है। बाद में जब रोशन म्यूजिक डायरेक्टर बनकर बंबई आए तो उन्होंने मुझे फिल्म नेकी बदी के लिए एक गीत गाने के लिए बुलवाया भी था, मगर मैं गा नहीं पाया था, कुछ नर्वस सा हो गया था। खैर, बाद में रोशन जी ने फिल्मों में बहुत ही सुंदर संगीत दिया। उनका ये गाना मुझे बेहद पसंद है जो मैं अब आपको सुना रहा हूं। उनका भी बर्मन दादा और मदन मोहन की तरह से अपना अलग ही अंदाज था।

अब एक गाना फिल्म प्रेम पर्वत का सुनिए, लिखा है स्वर्गीय जानसार अख्तर ने। अख्तर साहब न सिर्फ एक ऊंचे दर्जे के शायर थे, फिल्मी गीत भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत लिखे हैं। बहुत ही प्यारे आदमी थे, उनकी शायरी और उनकी शख्सियत दोनों को भुलाना नामुमकिन है। ये गाना उन्होंने हमारे सामने बैठकर सिर्फ आधे घंटे में लिख दिया था, लीजिए सुनिए।

0: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय माला।
1: हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी कलाकार गुजरी हैं, जिनके गाने का एक अजीब अंदाज था, आवाज में एक जादू था, ऐसा जादू जिसका असर बच्चे, नौजवान, बूढ़े हर किसी के दिल में था और आज भी है। बेगम अख्तर वो नहीं, लेकिन उनकी आवाज का जादू आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगा।

फौजी भाइयों, हमारे साथियों में एक ऐसे भी संगीत निर्देशक थे जिनका मकसद सिर्फ फिल्मों में संगीत देकर नाम या पैसा कमाना ही नहीं था। वो बड़े बड़े कारखानों में, मिलों में जाते, वहाँ काम करने वाले कामगारों को इकट्ठा करते और उनको देशभक्ति के गीत सिखाते और गवाते। स्कूलों के हजारों बच्चों को इकट्ठा करके कोरस गाने इस देश में सिर्फ उन्होंने ही गवाए हैं। उनकी तमन्ना संगीत के जरिए देश में जन जागरण पैदा करना था। फिल्मों में भी उन्होंने बहुत खूबसूरत संगीत दिया है। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। ये थे वसंत देसाई।

फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जाने माने संगीतकार जयदेव ने। सुनिए कार्यक्रम का शेष भाग।

अभी कुछ ही समय पहले मौत ने हमारे बीच से हमारे एक और साथी को उठा लिया। देखने में खूबसूरत सुलझा हुआ इंसान, प्यारा गायक, सबका दोस्त, सबके दुख सुख में काम आने वाला एक फरिश्ता जो हमारे बीच में मुकेश बनकर रहा, सबका मनोरंजन करता रहा अपने मधुर गीतों से। ये गाना जो आप अब सुनेंगे, इसके लेखक हैं जनता के प्यारे अमर कवि शैलेंद्र।

अब समय खत्म हो रहा है। आप सब जो देश की सेवा में दिन रात लगे हैं, सबको मेरी और मेरे सब साथियों की शुभकामनाएं और प्यार भरा सलाम। मेरी यही प्रार्थना है, इस धरती का रूप न उजड़े, प्यार की ठंडी धूप न उजड़े, सबको मिले सुख का वरदान।

तो ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत किया जाने माने संगीतकार जयदेव ने। ये रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई विविध भारती के संग्रहालय से।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी। आप हैं विविध भारती के संग।
2: जिज्ञासा
0: जिज्ञासा जिज्ञासा ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर है, वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। मीराबाई ने लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। 48 किलोग्राम की स्पर्धा में मीराबाई ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। उन्होंने स्नैच में 85 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम समेत कुल 190

90 किलो वजन उठाया। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्नैच में 85 किलो वजन उठाया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। मीराबाई चानू ने लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन वो इससे पहले सिल्वर मेडल भी जीत चुकी हैं। आपको बता दें, उन्होंने साल 2014 में ग्लासगो में ही कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद उन्होंने साल 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। मीराबाई ने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था, जो कि एक इतिहास है, और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला थीं। पैरा एथलीट दिलीप महादू गावित ने पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में गेम्स रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है, जबकि मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लंबी कूद में दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों का सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। जहां तक इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने के दौरान भारत को मिले गोल्ड मेडल की बात है, तो वो आपको बता दें, मीराबाई चानू महिला 48 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग गोल्ड मेडल, शर्मिला धनखड़ पैरा एथलेटिक्स महिला शॉटपुट में गोल्ड मेडल, और दिलीप महादू गावित पैरा एथलेटिक्स पुरुषों की 100 मीटर में गोल्ड मेडल। ग्लासगो के ट्रैक पर आखिरी लैप शुरू हुआ तो भारतीय धावक गुलवीर सिंह के सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, देश के लिए कुछ ऐसा करना जो कि पहले कभी किसी भारतीय ने नहीं किया था। कुछ ही सेकंड के बाद फिनिश लाइन पार करते हुए घड़ी 27:49.78 पर रुकी। ये सिर्फ एक समय नहीं था, बल्कि कई सालों के संघर्ष, अनुशासन और ख्वाबों का इनाम था। गुलबीर सिंह ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बन गए। लेकिन इस ऐतिहासिक दौड़ की शुरुआत ग्लासगो से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सिरसा से हुई है, जो अलीगढ़ जिले में आता है। 1 जून 1998 को यहीं एक किसान परिवार में गुलवीर सिंह जन्मे थे। गांव में खेलों के बारे में ज्यादा जागरूकता नहीं थी, और उस गांव के युवाओं का सबसे बड़ा ख्वाब होता था फौज में जाना। गुलवीर भी दूसरे युवाओं की तरह फौज में जाने का ख्वाब देखते थे। उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। दौड़ना उनके लिए मेडल जीतने का नहीं, बल्कि फौज में नौकरी पाने का एक जरिया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियाई गेम्स के बारे में ज्यादा पता नहीं था। गांव का रहने वाला आदमी हूं, गांव में बहुत कम लोग इन प्रतियोगिताओं के बारे में जानते थे। साल 2018 में बचपन का एक ख्वाब पूरा हुआ। खेल कोटे में उन्हें भारतीय सेना में जगह मिल गई और ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट का वो हिस्सा बन गए। यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट और बाद में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय शिविर में उन्हें यह समझ में आया कि दौड़ना सिर्फ नौकरी हासिल करने का एक जरिया नहीं है, बल्कि देश के लिए इतिहास बनाने का एक मौका भी हो सकता है। उन्होंने कहा था, प्रतियोगी दौड़ के बारे में मैंने वास्तव में सेना में आने के बाद ही सीखा। धीरे धीरे मुझे इस खेल और इससे जुड़े लोगों के बारे में समझ आने लगी। दिन में ड्यूटी और फिर ट्रैक पर पसीना बहाना गुलवीर सिंह की जिंदगी बन गई थी। आप जानते हैं कि सेना की नौकरी आसान नहीं होती। गुलवीर सिंह को अरुणाचल प्रदेश जैसे कठिन इलाके में तैनाती मिली। गश्त, सुरक्षा ड्यूटी और फौजी नौकरी की जिम्मेदारियों के बीच में भी उन्होंने दौड़ने की प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। पहाड़ों की ऊंचाई, वहां के मौसम के उतार चढ़ाव और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने लगातार साधना की और अपने शरीर को और ज्यादा मजबूत बना दिया, ताकि वो हर विपरीत परिस्थिति का सामना कर सके। 4 साल बाद इस साधना का पहला बड़ा इनाम मिला। सेना में आने के बाद गुलवीर को पहले तो तुरंत सफलता नहीं मिली, लेकिन लगातार 4 साल तक जो साधना उन्होंने की, उसके बाद 2022 में फेडरेशन कप में 10,000 मीटर की दौड़ का कांस्य पदक उन्होंने जीता, और इसके बाद गुलवीर सिंह का पूरे देश में नाम हो गया। बस यही वो मोड़ था जहां से वो लगातार आगे बढ़ने लगे। इसके बाद तो उन्होंने जैसे एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाए। साल 2024 में गुलबीर ने अमेरिका के कोलोराडो स्प्रिंग्स में ट्रेनिंग शुरू की। इसके बाद जैसे भारतीय एथलेटिक्स को एक नया सितारा मिल गया। उन्होंने 3,000 मीटर, 5,000 मीटर

और 10,000 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड्स तो लगातार तोड़े हैं। 2025 में उन्होंने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 5,000 और 10,000 मीटर दोनों ही मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीता और इतिहास रच दिया। इसी दौरान 10,000 मीटर की रेस में उन्होंने 27 मिनट का एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया और हाफ मैराथन को 60 मिनट से कम समय में पूरे करने वाले वो पहले भारतीय बन गए। आप समझ सकते हैं कि ये सारी उपलब्धियां हासिल होती चली जा रही थी।

कहना है कि वो कभी आंकड़ों के बारे में या रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं सोचते। हर रेस में वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और यही बात गुलवीर को कामयाब बनाती है। और हम ये प्रार्थना करते हैं कि आगे भी उनकी कामयाबी का सिलसिला जारी रहे। आज के जिज्ञासा कार्यक्रम में हमने आपको मीराबाई चानू के बारे में बताया कि किस तरह से उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मीराबाई चानू भारतीय वेटलिफ्टिंग का एक शानदार सितारा हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का सफर किस तरह से तय किया, ये आज हम जिज्ञासा में बता रहे हैं ताकि आप सभी को प्रेरणा मिल सके। 8 अगस्त 1994 को मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है नोंगपे काकचिंग, यहां पर मीरा का जन्म हुआ था। 6 भाइयों में मीरा चानू सबसे छोटी हैं। परिवार गरीब था। मीरा के पिता साइखोम कृति मैतेई राज्य के लोक निर्माण विभाग में कार्यरत थे और उनकी मां साइखोम तोम्बी देवी एक छोटी सी चाय की दुकान चलाती थी। बहुत सीमित संसाधनों के साथ मीराबाई चानू और उनके भाई बहन परिवार की ईंधन की लागत को कम करने के लिए पास में जंगलों में जाते और लकड़ियां इकट्ठा करते ताकि घर में चूल्हा जल सके। यही वो वक्त था जब मीराबाई चानू की वजन उठाने की प्रतिभा सामने आई। उस समय मीराबाई चानू की उम्र 12 साल थी। वो अपने 16 साल के भाई साइखोम संतोम्बा मैतेई के साथ अपने गांव के पास जंगलों में जलाऊ लकड़ी की सफाई के लिए गई थी। इन दोनों भाई बहनों को उस दिन बहुत सारी लकड़ियां मिली, एक बड़ा ढेर बन गया। इस दौरान जब लकड़ियों के इस बड़े से बंडल को उठाने की बात आई तो संतोम्बा को इस ढेर को उठाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन सिर्फ 12 साल की उसकी छोटी बहन मीराबाई चानू ने इतने विशाल बंडल को आसानी से अपने सिर पर रख लिया और घर पहुंचने के पहाड़ी रास्ते में 2 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया, जिसे देखकर भाई को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। हालांकि संतोम्बा ये समझ गए थे कि मीराबाई वेटलिफ्टिंग कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद मीराबाई का शुरुआती रुझान तीरंदाजी को लेकर था। मीराबाई ने ये बताया भी है कि उनके परिवार में जो उनके भाई चचेरे भाई सभी फुटबॉल खेलते रहे हैं। एक दिन खेल के बाद वो गंदे होकर लौट रहे थे तो मीराबाई के मन में आया कि मैं ऐसा खेल खेलना चाहती हूँ जहाँ गंदे होकर ना लौटें, जो साफ सुथरा खेल हो। तो सबसे पहले मेरा ध्यान तीरंदाजी की तरफ गया क्योंकि ये बहुत ही स्टाइलिश खेल है। और एक तीरंदाज बनने की चाहत में मीराबाई चानू अपने चचेरे भाई के साथ इम्फाल के खुमान लंपक स्टेडियम में भारतीय खेल प्राधिकरण में चली गईं। वहां उस दिन कोई तीरंदाजी का अभ्यास नहीं कर रहा था। उस दिन उन्होंने देखा कि कुछ एथलीट वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। बस मीराबाई का ध्यान इस तरफ घूम गया और उन्होंने सोचा कि वो तीरंदाजी नहीं बल्कि वेट लिफ्टिंग करेंगी। इस बीच मीराबाई चानू को मणिपुर की एक और वेटलिफ्टर कुंजा रानी देवी के बारे में पता चला, जिन्होंने भारत को 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल और साल 2002 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जिताने का काम किया था और वो भी बहुत ही संघर्ष के रास्ते से आ रही थी। खेल के प्रति ये जो जुनून था कुंजा रानी देवी का, इसे देखकर मीराबाई चानू बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। अपने गांव में वेटलिफ्टिंग की किसी तरह की कोई बुनियादी सुविधा थी नहीं। उन्होंने अपनी कोच अनीता चानू के नेतृत्व में ट्रेनिंग शुरू की। हर रोज 40 किलोमीटर दूर जाती। अनीता चानू एक भूतपूर्व वेटलिफ्टर थीं जिन्होंने 1990 में बीजिंग एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। मीराबाई चानू ट्रेनिंग के लिए बस और ट्रक के जरिए अपनी मंजिल तक जाती और बांस के डंडों का इस्तेमाल करके अपनी तकनीक को बेहतर बनाती चली गईं। फिर 6 महीने के बाद उन्होंने वजन उठाने पर जोर दिया। 2 साल बाद जब नेशनल कैंप हुआ तो उसमें उन्होंने अपनी जगह बनाई और सब जूनियर कैटेगरी में राज्य स्तर का गोल्ड मेडल जीता। 2011 में मीराबाई चानू ने जूनियर कैटेगरी में पहला मेडल हासिल किया। इसके तुरंत बाद नेशनल टीम में उन्हें शामिल कर लिया गया और वो अपनी आइडल कुंजा रानी देवी के मार्गदर्शन में आ गईं। चानू ने 2013 में पिनांग राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, जो उनका पहला इंटरनेशनल मेडल था।
इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मीराबाई चानू ने ग्लासगो में 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया और महिलाओं के 48 किलोग्राम के वर्ग में सिल्वर मेडल जीतने के बाद अपनी एक अलग पहचान बनाई। हालांकि उस वक्त

उनकी उम्र 20 साल थी और 2014 में इंचियोन एशियन गेम्स में मीराबाई चानू को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, पर रियो 2016 में क्वालिफाई करने के लिए उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। रियो 2016 में मीराबाई चानू से बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। क्लीन एंड जर्क में मीराबाई चानू कोई भी कमाल नहीं कर पाईं और मेडल जीतने का सपना पूरी तरह से टूट गया। इस भारी असफलता ने मीराबाई चानू को तोड़ कर रख दिया था। 2017 में वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने शानदार प्रदर्शन किया। 194 किलोग्राम का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ भार उठाकर उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। 48 किलोग्राम के वर्ग में एक चैंपियनशिप रिकॉर्ड भी उन्होंने हासिल किया। 1995 में करणम मल्लेश्वरी के बाद ये वर्ल्ड लेवल का भारत का पहला गोल्ड मेडल था। इसके बाद तो वो आगे बढ़ती चली गई और उन्हें भारत सरकार ने न केवल पद्मश्री बल्कि राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया। साल 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 किलोग्राम की कैटेगरी में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद थाईलैंड में जब 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई तो बहुत कम अंतर से वो मेडल जीतने से चूक गईं। लेकिन 2020 में एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में उन्होंने इतिहास रच दिया। कुल 205 किलोग्राम का वजन उठाकर कॉन्टिनेंटल मीट में 39 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने कांस्य पदक जीता और इसके बाद मीराबाई चानू ने चीन की जियांग हुईजुआ के 118 किलोग्राम के पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया। फिर 2020 में मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में अपने अधूरे सपने को पूरा किया और 39 किलोग्राम की कैटेगरी में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता और ये एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी था। इस तरह से ओलंपिक के वेटलिफ्टिंग इवेंट में ये भारत का पहला सिल्वर मेडल था। तो कुल मिलाकर मीराबाई चानू वो हैं जिन्होंने भारत के लिए लगातार उपलब्धियां हासिल की हैं। कमाल किया है उन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में और ये एक बड़ी उपलब्धि है। मीराबाई चानू भारत की लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये था इस बार का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख स्वर और संपादन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। अब मिलते हैं अगले हफ्ते जिज्ञासा।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। सुनो कहानी में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पिसनहारी का कुआं। आज प्रस्तुत है इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। वाचन स्वर अमरकांत दुबे का।
2: अब तक आपने सुना गोमती ने मृत्युशैया पर पड़े हुए अंतिम शब्द जो कहे। चौधरी, मेरे जीवन की यही लालसा थी कि उनके नाम का एक छोटा सा कुआं बन जाए। गांव के सरपंच से बुढ़िया गोमती ने ये बात कही और जीवन भर अनाज पीस पीस कर जो पैसे उसने कमाए थे वो चौधरी के हाथ में रख दिए, पूरे 2000 रुपए। चौधरी के बेटे हरनाथ को जब ये बात पता चली कि उसके पिता चौधरी के पास 2000 रुपए हैं जिन्हें वो कुआं बनवाने में खर्च करना चाहते हैं, तो वो अपने पिता चौधरी को लालच देता है कि वो ये 2000 रुपए उसे दे दे ताकि वो इन पैसों को अनाज के आढ़त के काम में लगा सके और इससे होने वाले मुनाफे में वो उसे भी हिस्सा देगा। चौधरी ने काफी ना नुकुर करने के बाद लालचवश अपने बेटे हरनाथ की बात को मान लिया और उसे 2000 रुपए दे दिए। लेकिन साल दर साल बीतते रहे। हरनाथ हर साल पिता के हाथों में ब्याज की रकम रख देता और मूल वापस न करता। कुछ सालों के बाद एक दिन चौधरी ने लोक लाज के डर से हरनाथ पर

दबाव डाला और पूरी रकम ले ली। हरनाथ ने भी तैश में आकर रकम पूरी वापस कर दी, ये सोचकर कि रात में वो इन रुपयों को चौधरी के कमरे से चोरी कर लेगा। लेकिन जब रात में चोरी करने के लिए हरनाथ उस कमरे में घुसा तो उसे वहाँ गोमती खड़ी दिखाई दी, जो उसे चोरी करने से रोक रही थी। हरनाथ उसे चुड़ैल समझकर वहाँ से भाग आया। सुबह हरनाथ की माँ ने अपने पति चौधरी को ये सारी बात बताई और चौधरी के कहने पर खुद उस कमरे में रुपए उठाने के लिए गई, लेकिन वहाँ उसे भी गोमती खड़ी दिखाई दी। उसने कमरे से बाहर निकलकर चौधरी से कहा, वहाँ तो चुड़ैल खड़ी है। अब सुनिए आगे। चौधरी ने ताक की ओर देखकर कहा, चुड़ैल? कौन चुड़ैल? अरे मुझे तो कोई नहीं दिखता। पत्नी बोली, अरे मेरा तो कलेजा धक धक कर रहा है, ऐसा मालूम हुआ जैसे उस बुढ़िया ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। चौधरी बोला, ये सब भ्रम है भ्रम, बुढ़िया को मरे 5 साल हो गए, अब तक वो यहाँ बैठी है क्या? पत्नी बोली, मैंने साफ साफ देखा, वही थी, बच्चा भी कहते थे कि उन्होंने रात को थैलियों पर हाथ रखे देखा था। चौधरी बोला, वो रात को मेरी कोठी में कब आया? पत्नी बोली, तुमसे कुछ रुपयों के विषय में ही कहने आया था, उसे देखते ही भागा। अच्छा, फिर तो अंदर जाओ, मैं देख रहा हूँ, चौधरी ने कहा। स्त्री ने कान पर हाथ रखकर कहा, ना बाबा, अब मैं उस कमरे में कदम न रखूंगी। अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। ये कहते हुए चौधरी ने कोठरी में जाकर दोनों थैलियां ताक पर से उठा ली। किसी भी प्रकार की शंका न हुई, गोमती की छाया का कहीं नाम भी न था। पत्नी द्वार पर खड़ी झांक रही थी। चौधरी ने आकर गर्व से कहा, मुझे तो कहीं कुछ न दिखाई दिया, वहां होती तो कहां चली जाती? पत्नी बोली, क्या जाने, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दी? तुम्हें भ्रम था और कुछ नहीं, चौधरी बोला, खड़ा तो हूं, आकर देख क्यों नहीं लेते? पत्नी को कुछ आश्वासन हुआ, उसने ताक के पास जाकर डरते डरते हाथ बढ़ाया, जोर से चिल्लाकर भागी और आंगन में आकर ही दम लिया। फिर उसने, चौधरी भी उसके साथ आंगन में आ गया, विस्मय से बोला, क्या था, क्या हैं? अरे व्यर्थ में भागी चली आई, मुझे तो कुछ दिखाई न दिया। पत्नी ने हांफते हुए तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, चलो हटो, अब तक तो तुमने मेरी जान ही ले ली थी, न जाने तुम्हारी आंखों को क्या हो गया। अरे खड़ी तो है वो डायन। इतने में हरनाथ भी वहां आ गया, माता को आंगन में पड़े देखकर तिलमिलाकर कहा, क्या है अम्मा, कैसा जी है? पत्नी बोली, वो चुड़ैल आज 2 बार दिखाई दी बेटा, मैंने कहा लाओ तुम्हें रुपए दे दूं, फिर जब हाथ में आ जाएंगे तो कुआं बनवा दिया जाएगा, लेकिन जो ही थैलियों पर हाथ रखा उस चुड़ैल ने मेरा हाथ पकड़ लिया, प्राण से निकल गए मेरे तो। हरनाथ ने कहा, किसी अच्छे ओझा को बुलाना चाहिए जो इसे मार भगाए। चौधरी बोले, क्या रात को तुम्हें भी दिखाई दी थी? हरनाथ ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे पास एक मामले पर सलाह करने आया था, ज्यों ही अंदर कदम रखा वो चुड़ैल ताक के पास खड़ी दिखाई दी, मैं तो बदहवास होकर भागा। चौधरी बोले, मगर मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता, ये बात क्या है? हरनाथ ने कहा, क्या जाने, आपसे डरती होगी। चौधरी बोले, कुछ समझ में नहीं आता, माजरा क्या है, क्या हुआ बैजू पांडे की डिग्री का? हरनाथ इन दिनों चौधरी से इतना जलता था कि अपनी दुकान के विषय में कोई बात उससे करता ही न था। आंगन की तरफ ताकता हुआ मानो हवा से बोला, जो होना होगा वो होगा, मेरी जान के सिवा कोई और क्या ले लेगा। कहीं उसने डिग्री जारी कर दी तो? चौधरी बोले। तो हरनाथ ने कहा, तो क्या, दुकान में 400-500 का माल है, वो नीलाम हो जाएगा, बहुत होगा तो 4-6 महीने हवालात में रहना पड़ेगा, इसके सिवा और क्या हो सकता है। चौधरी को पुत्र से प्रगाढ़ प्रेम था, उन्हें शंका हो गई थी कि हरनाथ रुपए हजम करने के लिए ही टाल मटोल कर रहा है, इसलिए उन्होंने आग्रह करके रुपए वसूल कर लिए थे। अब उन्हें अनुभव हुआ कि हरनाथ के प्राण तो सचमुच संकट में है। एकाएक किसी ने बाहर से पुकारा, हरनाथ सिंह। हरनाथ के मुंह पर हवाइयां उड़ने लगी।

0: चौधरी ने पूछा, कौन है? कुर्क अमीन है।
1: क्या दुकान कुर्क कराने आया है?
0: हाँ, मालूम तो होता है। कितने रुपयों की डिग्री है? 1200 रुपयों की। कुर्क अमीन कुछ लेने देने से न टलेगा? टल तो जाता, पर महाजन भी तो उसके साथ होगा। उसे तो कुछ ना कुछ लेना ही है, उधर से ले चुका होगा। न हो 1200 रुपए गोमती के रुपयों में से दे दो। उसके रुपए कौन छुएगा? न जाने घर पर क्या आफत आ जाए। अरे, उसके रुपए कोई हजम थोड़ी ही किए लेता है। चलो, मैं दे देता हूँ। चौधरी को इस समय भय हुआ, कहीं मुझे भी वो न दिखाई दे। लेकिन उनकी शंका निर्मूल थी। उन्होंने एक थैली से 220 रुपए निकाल लिए और दूसरी थैली में रख हरनाथ को दे दिए। संध्या तक इन 2000 रुपयों में से एक रुपया भी न बचा। 12 साल गुजर गए। न चौधरी अब इस संसार में है, न हरनाथ। चौधरी जब तक जिए उन्हें कुएं की चिंता बनी रही। चौधरी के मरते ही सारा कारोबार चौपट हो गया। चौधरी की मृत्यु के ठीक साल भर बाद हरनाथ ने भी इस हानि लाभ के संसार से पयान किया। माता के जीवन का अब कोई सहारा न था। बीमार पड़ी, पर दवा दर्पण न हो सके। 3-4 महीने तक नाना प्रकार के कष्ट झेलकर वो भी चल बसी। अब केवल बहू थी और वो भी गर्भिणी। उस बेचारी के लिए अब कोई आधार न था। पड़ोसियों के कपड़े सी सी कर उसने किसी भांति 5-6 महीने काटे। तेरे लड़का होगा, सारे लक्षण बालक के से थे। यही एक जीवन का आधार था। जब कन्या हुई तो ये आधार भी जाता रहा। माता ने अपना हृदय इतना कठोर कर लिया कि नवजात शिशु को छाती भी न लगाती थी। बालिका की वो भोली, दीन, याचनामय, सतृष्ण छवि देखकर उसका मातृ हृदय मानो सहस्त्र नेत्रों से रुदन करने लगा। उसके हृदय की सारी शुभेच्छाएं, सारा आशीर्वाद, सारी विभूति, सारा अनुराग मानो उसकी आंखों से निकलकर उस बालिका को उसी भांति रंजित कर देता था जैसे इंदु का शीतल प्रकाश पुष्प को रंजित कर देता है। पर उस बालिका के भाग्य में मात प्रेम के सुख न बदे थे। माता ने कुछ अपना रक्त, कुछ ऊपर का दूध पिलाकर उसे जिलाया, पर उसकी दशा दिनों दिन जीर्ण होती जाती थी। एक दिन लोगों ने जाकर देखा तो वो भूमि पर पड़ी हुई थी। शोक और दरिद्रता से आहत शरीर में रक्त कहां जिससे दूध बनता। वही बालिका पड़ोसियों की दया भिक्षा से पल पल कर एक दिन घास खोदती हुई उस स्थान पर जा पहुंची जहां बुढ़िया गोमती का घर था। बालिका ने न जाने क्या सोचकर खुरपी से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। दोपहर से सांझ तक वो गड्ढा खोदती रही। अंधेरा हो गया, पर वो ज्यों की त्यों बैठी गड्ढा खोद रही थी। उस समय किसान लोग भूलकर भी उधर से निकलते न थे, पर बालिका निशंक बैठी भूमि से मिट्टी निकाल रही थी। जब अंधेरा हो गया तो वो चली गई। दूसरे दिन वो बड़े सवेरे उठी और इतनी घास खोदी जितनी कि वो दिन भर में भी न खोदती थी। दोपहर बाद वो अपनी खांची और खुरपी लिए फिर उसी स्थान पर जा पहुंची, पर वो आज अकेली न थी। उसके साथ दो बालक और भी थे। बालिका गड्ढे के अंदर खोदती थी और दोनों बालक मिट्टी निकाल निकाल कर फेंकते थे। तीसरे दिन दो लड़के और भी उस खेल में मिल गए। शाम तक खेल होता रहा। आज गड्ढा 2 हाथ गहरा हो गया था। चौथे दिन और भी कई बालक आ मिले। गड्ढा अब 4 हाथ गहरा हो गया था, पर अभी तक बालकों के सिवा और किसी को कोई खबर न थी। एक दिन रात को एक किसान अपनी खोई हुई भैंस ढूंढता हुआ उस खंडहर में जा पहुंचा। अंदर मिट्टी का ऊंचा ढेर, एक बड़ा सा गड्ढा और एक टिमटिमाता हुआ दीपक देखा तो डर कर भागा। औरों ने भी आकर देखा। कई आदमी थे, कोई शंका न थी। समीप जाकर देखा तो बालिका बैठी थी। एक आदमी ने पूछा, अरे क्या ये तूने गड्ढा खोदा है? हाँ, बालिका ने कहा। अच्छा, गड्ढा खोद कर क्या करोगी? बालिका बोली, यहां कुआं बनाऊंगी। ओ, कुआं कैसे बनाओगी? जैसे

0: इतना खोदा है वैसे ही इतना और खोद लूंगी, गांव के सब लड़के खेलने आते हैं। मालूम होता है तू अपनी जान देगी और अपने साथ और लड़कों को भी मारेगी, खबरदार जो कल से गड्ढा खोदा। दूसरे दिन और लड़के ना आए। बालिका भी दिन भर मजूरी करती रही, लेकिन संध्या समय वहां फिर दीपक जला और फिर वो खुरपी हाथ में लिए वहीं बैठी दिखाई दी। गांव वालों ने उसे मारा पीटा, कोठरी में बंद किया, पर वो अवकाश पाते ही वहां जा पहुंचती। गांव के लोग प्रायः श्रद्धालु होते ही हैं। बालिका के इस अलौकिक अनुराग ने आखिर उनमें भी अनुराग उत्पन्न किया। कुआं खुदने लगा। इधर कुआं खुद रहा था, उधर बालिका मिट्टी से ईंटें बनाती थी। इस खेल में सारे गांव के लड़के शरीक होते थे। उजाली रातों में जब सब लोग सो जाते तब भी वो ईंटें थापती दिखाई देती। न जाने इतनी लगन उसमें कहां से आ गई थी। 7 वर्ष की उम्र कोई उम्र होती है, लेकिन 7 वर्ष की वो लड़की बुद्धि और बातचीत में अपनी तिगुनी उम्र के लोगों के कान काटती थी। आखिर वो दिन भी आया, कुआं बंद गया, उसकी पक्की जगत तैयार हो गई। उस दिन बालिका उसी जगत पर सोई। आज उसके हर्ष की सीमा न थी, गाती थी, चहकती थी। प्रातःकाल उस जगत पर केवल उसकी लाश मिली। उस दिन से लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये वही बुढ़िया घूमती थी। इस कुएं का नाम पिसनहारी का कुआं पड़ा। हिंदी कहानी हिंदी मासिक पत्रिका माधुरी में जून 1928 में प्रकाशित हुई। मानसरोवर भाग 5 में संकलित केवल हिंदी में प्रकाशित हुई।
1: पिसनहारी का कुआं, अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। वाचन स्वर था अमरकांत दुबे का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।
2: सुनो कहानी।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म युवराज से। आवाज़ें बेनी दयाल, श्रेया घोषाल और एआर रहमान की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत एआर रहमान का।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म युवा से, आवाज़ें ए आर रहमान और सुनीता सारथी की थी। गीत के बोल महबूब के और संगीत ए आर रहमान का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम।

0: सुनो
1: ओ?
0: जरा राइमा की फीस भरने चले जाना, आज आखिरी तारीख है।
1: देखो मैं 3 बजे नहीं जा पाऊंगा।
0: क्यों क्यों नहीं जा सकते?
1: वो मैं
0: साहब बताओ क्या करना है 3 बजे?
1: करना नहीं है, सुनना है।
0: ऐसा क्या सुनना है तुम्हें? पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ।
1: वो मुझे सखी सहेली सुनना है।
0: तुम्हें सखी सहेली सुनना है? पर वो तो सखियों का प्रोग्राम है।
2: सखियां ही नहीं, सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे।
3: सखी सहेली।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म दिल से आवाज़ ए आर रहमान और अनुराधा और अनुपमा की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत ए आर रहमान का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज़।

की सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी, केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने

0: अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
0: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
0: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
0: मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
2: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 44 करोड़ 55 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किश्त के रूप में 379 करोड़ 35 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किश्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 193 करोड़ 95 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है।

0: यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
1: भारत की सेना को आधुनिक बनाना

0: और 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
1: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
0: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
2: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटकपुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरलम में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
4: काफी अच्छा अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश। अगला कंपटीशन से और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल ले मेडल मैं मेरे अंकल को दे करूंगा और BFI को, साई को और पूरा इंडिया जो हमारा

0: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
1: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगे इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती, 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म एनिमल से, आवाज़ विशाल मिश्रा की थी। गीत के बोल राजशेखर के और संगीत विशाल मिश्रा का ही।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म तू झूठी में मैं कार से, आवाज़ अरिजीत सिंह की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत प्रीतम का।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म लाल सिंह चड्ढा से, आवाज़ें अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत प्रीतम का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म भूल भुलैया 2 से। आवाज़ें अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की थी। गीत के बोल समीर के और संगीत प्रीतम का।
1: उलझ गए कैसे कोई हट गया मन से लिपट अनजाना वो नील अंग सा रूप रंग ले समाधि प्रेम भंग अंग अंग फिर मन में दंग और

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

इस धुन को सुनकर सुनने वाले के पांव न थिरके, ऐसा कोई बिरला ही होगा। हिंदी फिल्म संगीत के, खास तौर पर पुरानी फिल्मी गीतों के चाहने वालों में से शायद ही कोई होगा जिसने ये गीत ना सुना हो। जिस फिल्म का ये गीत है उसके निर्माता, निर्देशक और नायक की हम बात करने वाले हैं। इस कलाकार को हम क्या कहें, एक्शन हीरो, रोमांटिक हीरो, कॉमेडियन, ये कलाकार था ही अलबेला। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है भगवान दादा की।

भोली भाली सूरत मगर दिल के सच्चे थे भगवान दादा। पहलवानी के शौक के कारण सभी उन्हें दादा कहकर बुलाते। भगवान दादा का जन्म महाराष्ट्र में 1 अगस्त 1913 को हुआ। वास्तव में उनका नाम था भगवान आबाजी पालव, एक मिल मजदूर का बेटा। भगवान बचपन से ही फिल्मों के सपने देखा करता। हालात से मजबूर भगवान दादा को बहुत जल्द पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मुंबई आकर वो मजदूरी करने लगे और करने लगे तकदीर के बदलने का इंतजार।

मुंबई आकर भगवान दादा जब फिल्मों में काम पाने का प्रयास करने लगे तब मूक फिल्मों का जमाना था। किसी फिल्म निर्माण कंपनी में मजदूरी के साथ साथ वो छोटी छोटी भूमिकाएं भी करने लगे। अपने काम के साथ साथ भगवान दादा फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में पूरी तरह से डूब गए। बतौर अभिनेता उनकी सबसे पहली फिल्म थी क्रिमिनल, जो एक साइलेंट यानी मूक फिल्म थी। 1938 में बनी फिल्म बहादुर किसान का उन्होंने सह निर्देशन किया। 1938 से 1947 तक भगवान दादा लो बजट की स्टंट और एक्शन फिल्में बनाते रहे, जो मजदूर वर्ग में काफी लोकप्रिय थीं। उस दौरान यानी 1941 में एक उल्लेखनीय तमिल फिल्म उन्होंने बनाई वन मोहिनी, जिसमें एम के राधा और श्रीलंका की अभिनेत्री थवमणि देवी ने भूमिकाएं अदा की। 1942 में भगवान दादा ने फिल्म निर्माण कंपनी बनाई जागृति पिक्चर्स। फिल्म निर्माता तो बन गए मगर कमोबेश मुफलिसी का दौर अब भी जारी था।

0: नाम जी।
1: और लॉटरी लगी, सवा लाख की नहीं बल्कि लाखों की। 1947 की बात है, जागृति पिक्चर्स के लिए चेंबूर्स में जागृति स्टूडियो का इंतजाम किया गया। राज कपूर की सलाह पर भगवान दादा ने एक सामाजिक फिल्म के निर्माण की तैयारी की। नायक तो वो स्वयं थे ही, नायिका के रूप में उस समय की मशहूर अदाकारा गीता बाली को चुना गया। फिल्म के संगीत का जिम्मा उठाया भगवान दादा की जिगरी दोस्त सी रामचंद्र ने। रुपहले पर्दे पर फिल्म आई अलबेला। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और इस फिल्म की अपार सफलता ने भगवान दादा का जीवन बदल कर रख दिया। सी रामचंद्र के संगीत में बंधे गाने बेहद लोकप्रिय हुए। इन गीतों का शोला कुछ ऐसे भड़का कि सुनने वालों के दिल आज तक धड़क रहे हैं। शोला।

फिल्म अलबेला के गीतों की एक और खास बात यह है कि जिन गीतों पर नृत्य किया है भगवान दादा ने, उनके साथ डांस करने वाले बाकी कलाकार असल में नर्तक नहीं थे, बल्कि स्टंट्समैन थे, जो आम तौर पर भगवान दादा के साथ एक्शन फिल्मों में मारधाड़ वाले दृश्यों में भाग लेते थे। तो अलबेला के ये खासियत भरे बाकी गीत भी सुन लेते हैं।

अलबेला की सफलता का स्वाद चखने के बाद उसी टीम के साथ भगवान दादा ने 1953 में फिल्म बनाई झमेला, जिसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। उसके बाद भगवान दादा ने एक और फिल्म बनाई लाबेला, जिसके निर्माण में उन्होंने अपनी ज्यादातर दौलत झोंक दी, मगर ये फिल्म बुरी तरह पिट गई। किस्मत ने उनसे फिर किनारा कर लिया।

आगे अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए भगवान दादा छोटी छोटी चरित्र भूमिकाओं में दिखने लगे। ये फिल्में थी झनक झनक पायल बाजे, चोरी चोरी और मिस बॉम्बे। गरीबी ने अपना रंग कुछ ऐसा बिखेरा कि जुहू बीच पर बना 25 कमरों वाला बंगला बेचना पड़ा। किसी जमाने में हफ्ते के सातों दिन वो अलग अलग मॉडल की कार से जाया करते, वो सातों गाड़ियां बिक गईं। भगवान दादा के सभी सहकारी उन्हें छोड़कर चले गए सिवाय सी रामचंद्र, ओम प्रकाश और राजेंद्र कृष्ण के। 4 फरवरी 2002, दादर की एक चौल में बने दो कमरों के मकान में ये अलबेला कलाकार भगवान को प्यारा हो गया। कभी

0: अलबेले कलाकार भगवान दादा पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम अभी आपने सुना। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा छाया गीत। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: धुआं धुआं से एक ख्वाब को हमने मचलते देखा है, एक चांद को जमीन पर चलते हमने देखा है। कतरा कतरा पिघली थी जब चांदनी, उसे तुम्हारे रूप में ढलते हमने देखा है। आंखों के काजल से खींची हैं ख्वाबों की लकीरें, लबों की सुर्खियों से रंग भरे हैं ख्वाबों में। तूने यादों के मौसम को सजाया है इस चिलमन में और लिख दिया है मोहब्बत दिल की मीनारों पर।
1: ये जो चिलमन है

सितारों की रोशन रात है, दामन में खिले हैं फूल बेहिसाब, नूर की बूंद है तू या है मुजस्सिम चांदनी, आफताब की किरण है या है मोहब्बत की रोशनी, आंचल तेरा महकता साया, संगमरमर की है तेरी काया, तेरी पलकों की साए में दिल को पनाह मिलती है, जब उतरती है तुम्हारी यादें दिल के आंगन में तो धड़कनों में कई हसरतें पलती हैं, पैरहन का अंदाज तुम्हारा जैसे चांद ने ओढ़ी हो चांदनी, जैसे तुझ में सारा नूर सिमटाया, दूर उस मोड़ पर जब भी नजर आती है तू तो दिल कह उठता है लो चांद निकल आया।

0: बादलों पर चलकर, चांद में ढलकर, एक हुस्न मेरे सामने है, आफताब में नहाया हुआ सा, कुछ कहकशा में समाया हुआ सा। न जाने कब से इन नजरों को ख्वाहिश थी तेरे रूबरू दीदार की, न जाने कब सी हसरत थी तेरे हर अंदाज को पलकों की झालरों में समेट लेने की। तेरी उम्मीद मेरी जिंदगी है, तेरी आरजू मेरा अरमान है, तू खूबसूरत तस्वीर है मेरी मोहब्बत की। हाँ ये सच है, तू ही मेरी जान है।
1: मुझे

0: अंतराल के बाद आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत। वो तेरी एक याद पुरानी, जैसे हो चांदनी रात सुहानी। वो तेरे मेरे प्यार की बातें, जैसे हो कोई परियों की कहानी। कुछ ख्वाब सुनहरे, कुछ वादे पक्के, तेरे साथ चलने के इरादे सच्चे। संजो कर साथ ले जाऊं तेरी सारी यादें। तुम चली गई हो जब से, तन्हा है हर मोड़ मोहब्बत के रास्तों का। मेरी हसरतों का, मेरे जज्बातों का, मेरी ख्वाहिशों में तेरे अरमान जिंदा रहेंगे सदा। तेरी महफिल में मैं रहूं ना रहूं, तेरे साथ रहेंगी सदा ये मेरी वफा।
1: तुम अगर

अगर कभी चांद को देखकर मेरी याद आ जाए तो बस एक कतरा मुस्कुरा देना, मैं वहीं कहीं मिल जाऊंगा, सितारों की चमक में, ठंडी हवाओं की झुवन में, रात की खामोशियों की सरगम में, हर पल तेरे एहसासों के समंदर में। जब भी तेरी आंखें आसमान को तलाशेंगी, मैं किसी टूटते तारे की दुआ बनकर उतर आऊंगा। जब भी तेरा दिल तन्हा होगा, मैं तेरी धड़कनों में एक मीठी सी सदा बन जाऊंगा। चांद की चांदनी, सितारों की रोशनी हर रात तेरा पता बताती रहेगी। तू बस सदा मुस्कुराती रहना, मेरी मोहब्बत तुझे हर पल गले लगाती।

0: मैटिनी शो प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी आवाज मौजूद है जिसने क्रिकेट कमेंट्री की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया और इनकी आवाज के हम सब दीवाने रहे हैं। हमारे बीच हैं पद्मश्री सुशील दोषी। ये है इस बातचीत का पहला भाग। आइए स्वागत करते हैं सुशील जी का।
1: धन्यवाद यूनुस और सभी श्रोताओं को एक बार फिर से नमस्कार। ये आवाज तो आप बरसों कमेंट्री में सुनते रहे होंगे और मुझे खुशी है कि एक बार फिर से आपसे मुखातिब हो रहा हूं और अच्छा लग रहा है। जीवन की कहानी की यात्रा किस तरह गुजरी, इन तमाम चीजों पर बातचीत होगी तो जिगर थाम कर बैठिए, बहुत लंबी बातचीत होगी अब।
0: क्या बात है, क्या बात है। मैं ना सर बहुत रोमांचित हूं और एक चीज और है कि आपके सामने बैठने पर थोड़ा घबराया हुआ भी हूं कि इतना विराट और लंबा अनुभव आपका रहा है। मुझे लगता है यात्रा इंदौर से शुरू करते हैं, अपने बचपन के बारे में बताइए।
1: नहीं देखिए, वैसे तो गरीब परिवार से हम थे, 15 रुपए महीने के मकान में किराए से रहते थे।
0: कौन सा मोहल्ला था वो?
1: वो इतवारिया बाजार, जिसे अब हुकमचंद मार्ग इंदौर जी कहते हैं, वहां रहते थे। और 4 भाई हम लोग और माता पिता, मैंने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी संघर्षरत थे। वहां से शुरुआत की यात्रा और टाटपट्टी वाले स्कूल में पढ़े
0: जी जी,
1: मास्टरों की रोज मार खाई और मुर्गा बने।
0: हाँ।
1: लेकिन ऐसा नहीं कि अगर दिल में इच्छा हो ना तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, और माता पिता का आशीर्वाद रहा तो फिर आप सही दिशा की तरफ प्रवृत्त भी हो सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपने कहा कि परिवार जो है वो थोड़ा अभावों के रास्ते पर था और जैसे स्कूलों में आपने पढ़े, सब आज के बच्चों को तो पता भी नहीं है कि मुर्गा कैसे बनाया जाता है, मास्टर जी कैसे मुर्गा बनाते हैं। ये जो बचपन था, इस बचपन में किताबें बहुत सारी थी। मैंने ये जाना है कि आप लाइब्रेरीज में ब्लेड लेके जाते थे।
1: अब क्या बताएं, देखिए उस समय पैसे तो थे नहीं
0: जी,
1: क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी थी तो हम करते ये थे कि लाइब्रेरीज जाते थे और बहुत कम बड़ी पत्रिकाओं में फोटो आते थे। एक पत्रिका में कभी बड़ी मुश्किल से क्रिकेटर का किसी का फोटो, और मैं एल्बम में क्रिकेटर्स के फोटो इकट्ठे किया करता था
0: जी,
1: और पैसे थे नहीं कि पत्रिकाएं खरीद सकें। तो मैं और मेरा एक दोस्त है, विनय उसका नाम था, मेरे साथ पढ़ता था, तो हम दोनों जाते, ब्लेड ले जाते और चुपके से वो फोटो काट कर घर ले आते।
0: वाह।
1: एक दिन पकड़े गए।
0: अरे बाप,
1: पकड़े गए तो मेरे दोस्त को आप ये समझिए कि उसने 2 चपत लगाई और अब कहा कि इस तरह के काम करते हो, शर्म नहीं आती। तो हम वापस आ गए और बड़ा छोटा मुंह हो गया। लेकिन देखिए पुराने दोस्त कैसे होते हैं, उसने ये कहा कि यार घर पर मत बताना कि आज हमको चपत पड़ी है, क्योंकि तो घर पर बताएंगे तो ये काम जो हम कर रहे हैं ना ये कल से नहीं कर पाएंगे
0: जी।
1: तो देखिए कई बार मैं सोचता हूं कि आज जब पद्मश्री मिल गया या जिंदगी में अब हम व्यावसायिक तौर पर इतने आगे बढ़ गए, इतना नाम कमाया, लोग इज्जत कर रहे हैं, शोहरत प्राप्त हो गई, सब कुछ है, लेकिन हम उस दोस्त को कैसे भूल सकते हैं जो कि पद्मश्री मिलने के बाद भी उसका हक भी तो कुछ है उस उपाधि पर, जिसने हमें ऐसे वक्त जबकि दुनिया हमारे साथ नहीं थी वो हमारा साथ देने को तैयार थे। तो ऐसे ऐसे दोस्त हुआ करते थे
0: जी,
1: बचपन की ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो आज भी मुझे भावुक कर देती हैं
0: जी। बहुत प्यारी बात है, इंदौर बहुत प्यारा शहर है, संस्कारों वाला शहर है, पारंपरिकता और आधुनिकता को साथ लेके चलता है। जिन दिनों में आप पढ़ रहे थे, क्रिकेट मैच के बारे में जानने का जरिया सिर्फ अखबार थे, कमेंट्री अंग्रेजी में सुना करते थे?
1: बिल्कुल, और मैं आपको बताता हूं कि जैसे आप लोग बाथरूम में जाते हैं और गाने गुनगुनाते हैं ना
0: जी,
1: मैं बाथरूम में जाता था तो कमेंट्री गुनगुनाता था। मतलब आप समझिए कि लोग अंग्रेजी में कमेंट्री आती थी, हिंदी में तो आती नहीं थी। FPS सिस्टम का खेल, यानी कि फुट पाउंड सेकंड, 22 यार्ड से जो खेल

0: शुरू हुआ, लोग कहते थे हिंदी का इसमें क्या काम, मतलब तो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो अंग्रेजी में ही कॉमेंट्री करते थे और उनकी शैली में जॉन ऑर्लट हो, हाँ, एलन मैगिल्वरी हो, या ऐसे बड़े बड़े कमेंटेटर्स जिनके हम नाम जानते
1: और
0: हैं,
1: उनकी बैरिटोन एकदम,
0: हाँ, उनकी मोटी आवाज में वैसे ही निकालकर मैं वैसे ही कमेंट्री करता था, लोग बड़े प्रभावित होते थे। और स्कूलों में भी कोई मैच चलता था ना, मैं एक झाड़ के नीचे बैठकर कमेंट्री करने लग जाता था।
1: वाह,
0: तो ये एक वहां से शौक हुआ। बचपन से मुझे पता नहीं था कि मैं कमेंटेटर बनूंगा
1: जी,
0: लेकिन कहीं से कहीं बुनियाद जो पड़ी ना मेरी, शायद वहीं से पड़ी होगी, क्योंकि वही चीज आगे जाकर विकसित हो गई।
1: बिल्कुल। तो पिताजी का क्या रवैया था?
0: नहीं देखिए, गरीबी के बावजूद, देखिए मैं पढ़ने में सबसे कमजोर, दुबला पतला, 48 किलो जब मैं कॉलेज में भी जाता था ना, 48 किलो ही वजन था। तो मेरे प्रति उनको एक अलग से ज्यादा प्यार था। हमारे दूसरे तीन भाई हैं, तीनों भाई एमटेक आईआईटी से,
1: जी जी,
0: मतलब इतने विद्वान और पढ़े लिखे, हमेशा प्रथम श्रेणी में आने वाले, मैं सप्लीमेंट्री लाकर पास होने वाला, उसके बावजूद भी वो इस कारण पिताजी प्यार करते थे कि ये कमजोर है, इसको हमारी मदद की जरूरत है।
1: ओके।
0: और दूसरी बात ये कि उनको लगा कि ये अगर इसको हिंदी में और इसमें ज्यादा शौक है, तो उनको लगा कि मैं क्रिकेट की तरफ प्रवृत्त हूं, तो क्रिकेट मेरी किताबों में वो भी एल्बम में चिपकाते थे खुद बैठकर।
1: अरे गजब।
0: और बड़ी मदद की, और उस समय तो पता नहीं था, लेकिन एक बार मुझे याद है कि 1959-60 में ऑस्ट्रेलिया की रिची बेनाओ की टीम भारत आई,
1: हाँ।
0: वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो थी रिची बेनाओ की, वो विश्व विजेता टीम थी और दुनिया में उसका कोई जोड़ी नहीं था। बड़े बड़े खिलाड़ी, रिची बेनाओ, लिंडवाल और नॉर्मन ओनील, नील हार्वे जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी जिनके फोटो में एल्बम में इकट्ठे किया करता था, तो वो आए हुए थे। और मैंने पिताजी से जिद पकड़ी, मैं 13 साल का था, 8वीं कक्षा में पढ़ता था
1: जी,
0: मैंने जिद पकड़ी कि मुझे बम्बई टेस्ट मैच देखना है। और पिताजी, पता नहीं क्यों, मैं पिता होता तो कभी भी अपनी बेटे की ये बात स्वीकार नहीं करता, लेकिन वो उन्होंने कहा कि बेटे की जिद पूरी करनी है, तो वो मुझे बम्बई ले गए टेस्ट मैच दिखाने।
1: इंदौर से बम्बई?
0: इंदौर से बम्बई ले गए, पैसे थे नहीं, जैसे तैसे टिकट कैसे जुगाड़ किया होगा, यहां से बम्बई, बम्बई कहते थे जब, बम्बई जाने का, बम्बई गए। उनको पता नहीं था कि अगर 50,000 लोग बाहर प्रतीक्षा करते हैं तो 50,000 लोग अंदर भी बैठे और 50,000 लोग अंदर घुसने की प्रतीक्षा में बाहर खड़े हैं। तो उनको लग रहा था कि बंबई जाएंगे, टिकट दिलाएंगे। वो पिता थे, उनको ये बेटे में दिलचस्पी थी, क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो मुझे ले गए। और वहां जाकर हम पिता पुत्र 4 दिन तक स्टेडियम, ब्रेबोन स्टेडियम
1: जी, जी,
0: के चक्कर काटते थे और टिकट का जुगाड़ हुआ नहीं। चौथे दिन एक पुलिस वाले को हम पर दया आ गई
1: जी,
0: उसने कहा कि अरे मैंने आपको पहचान लिया है और जुगाड़ नहीं हुआ क्या? तो बाबूजी कहता था पिताजी को, उन्होंने कहा कि देखिए मेरी तो कोई दिलचस्पी नहीं है, ये बच्चे का दिल टूट जाएगा, हम बहुत दूर से आए हैं, इंदौर से आए हैं, तो जैसे तैसे ये मैच देख ले। तो उन्होंने कहा एक काम करता हूँ, चाय पान के समय जो बाहर आता है ना रेला, चाय पीने और मूंगफली खाने, तो मैं जब वापस जाएगा रेला तो मैं इस बच्चे को अंदर ठेल दूंगा, लेकिन आपको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, आपको अंदर नहीं जाने दूंगा।
1: अरे बाप रे।
0: तब देखे आदरणीय पिताजी बाहर खड़े रहे, मैं 13 साल का था, इतनी संवेदना भी नहीं थी कि पिताजी बाहर खड़े हैं
1: जी, जी।
0: मैं अंदर फुदकता हुआ चला गया खुशी में।
1: गजब।
0: और अंदर जाकर जो दृश्य देखा, मैंने देखा 50,000, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा है, कोई भारत माता की जय के नारे लगा रहा है, कोई तरह तरह के फोटोग्राफ्स लेके ऊंचे दिखा रहा है, प्ले कार्ड्स दिखा रहा है, और ढोल मजीरे बज रहे हैं, तरह तरह की ड्रेसेस पहनकर लोग खड़े हैं। तब मेरी निगाह पड़ी कमेंट्री बॉक्स पर।
1: वाह।
0: तो मैंने किसी से पूछा कि यार ये कमेंट्री कौन कर रहा है यहाँ पर? तो उन्होंने कहा बॉबी तेलियारखा और विजय मर्चेंट यहाँ पर कमेंट्री कर रहे हैं,
1: लेजेंड लोग।
0: मैंने जगह देखी तो मेरे दिल में एक हुक सी उठी कि यार क्या जगह है, राइट इन लाइन विद द विकेट, बिल्कुल विकेट की लाइन में है, बर्ड्स आई व्यू, पक्षी जैसे मैच देख रहा है, सीधी लाइन में स्विंग और सीम और सब कुछ दिखाई दे रहा है, गजब की जगह। मन में एक विचार आया कि क्या कभी यहां बैठने का मौका मिलेगा। और देखिए जंगली सपने भी कभी कभी कैसे सच होते हैं, कि मैंने अपने जिंदगी का पहला टेस्ट मैच उसी ब्रेबोन स्टेडियम से, उसी कमेंट्री बॉक्स से, सन 1972-73 में तब किया जब टॉनी लुइस की टीम भारत आई।
1: 12 बरस लग गए।
0: तो 12 बरस लग गए। अब देखिए कि कैसे ये काम हो। इसलिए जो कलाम साहब कहते हैं ना कि सपने देखो तो खुली आंखों से देखो,
1: वाह वाह,
0: अगर बंद आंखों से सपने देखोगे तो सपना टूटने के बाद वो बिखर जाएगा।

0: लेकिन जब आप खुली आंखों से सपना देखोगे तो उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो शायद वही बात थी कि वो सपना मैंने देखा कमेंट्री बॉक्स का, वो जाकर अब पूरा हुआ। अब इसमें दो बातें हुई साहब, देखिए जूनस जी, मैं कहना चाहता हूँ एक तो ये कि खुली आंखों से सपना देखा, और दूसरी बात उस पिता का सहयोग जो 90 मिनट तक बाहर खड़ा रहा और वापस आने की प्रतीक्षा में इसलिए उसी जगह खड़ा रहा जो कि कहीं बच्चा गुम न हो जाए वापस आने पे, इतनी भीड़ भड़के में।
1: जी जी,
0: मुंबई के बारे में कुछ जानता ही नहीं, ये वापस आएगा तो भीड़ में गायब हो जाएगा, तो वहीं खड़े रहे। और जब मैं वापस आया तो मुझसे ज्यादा खुश मेरे पिताजी थे
1: कितनी
0: कि चलो बच्चे ने मैच देख लिया। तो मैं हमेशा आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि दुनिया में दो ही ऐसे व्यक्ति होते हैं, माता पिता, जो कि आपसे किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में नहीं रहते, वो चाहते हैं कि उनसे भी बेहतर आप करें, ऐसे दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होता। तो जब भी आप बड़े हो जाएं, कॉलर ऊंचे मत करिए, माता पिता को कभी मत भूलिए।
1: क्या सुंदर बात कही। और आपने कहा कि पिताजी को आप बाबूजी कहा करते थे, तो मुझे गुलजार साहब का गाना याद आया, बचपन के एक बाबूजी थे, अच्छे प्यारे बाबूजी थे, एक था बचपन। तो इस गाने की यहां पर जगह बनाते हैं।

0: सुशील जी, 1959-60 में हम हैं, जहां पर आप ब्रेबोर्न स्टेडियम में 90 मिनट मैच देखते हैं और पिताजी बाहर इंतजार करते हैं और आप एक रोमांच लेकर बाहर लौटते हैं। यहां से आगे की कहानी?
1: नहीं, उसके बाद तो क्या, फिर वक्त बीतता गया, क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी बढ़ती रही जैसे आपने कहा,
0: और पढ़ाई साथ में चलती,
1: पढ़ाई साथ में चलती रही। विज्ञान का विद्यार्थी था, मेरा हिंदी का विद्यार्थी नहीं रहा
0: जी,
1: लेकिन अपने खुद की खुशी से मैं बड़े बड़े उपन्यास, यानी कि जयशंकर प्रसाद का छायावाद, महादेवी वर्मा है ना, या सुमित्रा नंदन पंत, इन सबका खूब अध्ययन किया मैंने, और धर्मवीर भारती जी की किताबें पढ़ी, सारे उपन्यास उनके पढ़े, गुनाहों का देवता, ये सब महादेवी वर्मा की सारी किताबें पढ़ डाली, तो ये तमाम चीजों से मेरी हिंदी बराबर बनी रही। हिंदी के प्रति मेरा एक विचित्र तरह का प्रेम बना रहा, एक रिश्ता बना रहा, मुझे लगा कि हिंदी मुझे खींच रही है, तो यहां से मेरी हिंदी की बुनियाद पड़ी।
0: और यहां बीच में थोड़ा सा रुकूंगा, आगे चल के धर्मवीर भारती से एक नाता बना, उसका जिक्र थोड़ा सा फ्लैश फॉरवर्ड करके करते हैं।
1: हाँ जी,
0: जब वो धर्मयुग के संपादक थे।
1: नहीं बिल्कुल, धर्मयुग में मैं जब लिखना शुरू किया 1968-69-70 के आसपास, तब उनको लगा कि हिंदी, देखिए धर्मवीर भारती जी से हमारा कोई रिश्ता तो था नहीं, उनको लगा कि मुझे उस तमाम व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए, उस हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए जो हिंदी का काम कर रहा हो। उनके दिल में बस एक ही तमन्ना थी, तो जसदेव सिंह और मुझे उन्होंने काफी प्रोत्साहित किया, उन्होंने काफी लिखवाया भी, तब धर्मयुग घर घर में धर्मयुग जाता था, प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी, तो उन्होंने हमसे काफी लिखवाया। और बाद में जब 1979 का, जिसका मैं जिक्र बाद में करूंगा, जब वापस आया ना, उन्होंने मुझे गले लगाया, घर बुलाया और कहा कि भाई आज तुमने हिंदी का नाम रोशन कर दिया।
0: वाह वाह,
1: तो ये जो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलता कि धर्मवीर भारती जी जैसा व्यक्ति, जिनसे मिलने को लोग लालायत होते थे, वो मुझे स्वयं घर बुला रहे हैं, उस समय बहुत बड़ी बात होती थी।
0: बिल्कुल, तो हम वापस स्कूल के जमाने में चलते हैं, जहां आप धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत वगैरह को पढ़ रहे हैं, और हिंदी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रुचि है, लेकिन धारा विज्ञान के छात्र की है और रास्ता इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा है।
1: हाँ, उस समय क्या होता था कि गरीबी के दिन थे, मैंने आपको बताया, किताबें थी नहीं, पैसा था नहीं, हमको लगता था कि भाइयों के जो स्लाइड रूल है, उनकी जो किताबें हैं, उनके जो कपड़े हैं, वो हमारे काम आ जाएंगे, तो एक मुद्दा ये भी था कि पैसे खर्च नहीं होंगे, और ये कमजोर है तो बड़े भाई पढ़ा भी देंगे इनको, और उन्होंने पढ़ाया भी खूब, मेरी खोपड़ी में बहुत कुछ घुसाने की कोशिश की इंजीनियरिंग की, जैसे तैसे मैं पास भी हुआ, लेकिन ये समझिए कि पांचों साल सप्लीमेंट्री लाकर पास हुआ मैं, बड़ी मुश्किल से पास हुआ, लेकिन इंजीनियर मैं बन गया। शक्ल सूरत से मैं लगता नहीं कि पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं इंजीनियर हूं।
0: जी जी,
1: तो इंजीनियरिंग पढ़ने से एक बात हुई कि मुझे तकनीकी चीजें समझने में बहुत सहूलियत हुई। क्या होता है, जो शिक्षा होती है ना, ये आपके दरवाजे खोलती है।
0: बहुत सही,
1: तो ये आपको चीजों को ग्रहण करने में मदद देती है। तो इंजीनियरिंग पढ़ने से क्या हुआ कि गेंद का एरोडायनामिक्स बहुत आसानी से समझ में आ गया, कि कोई गेंद स्विंग होती है तो क्यों होती है, सीम के सहारे कट क्यों होती है, सीम पर पड़ती है तो उसका व्यवहार कैसा रहता है, पिच में नमी रहती है तब क्या होता है, तमाम चीजें समझने में बहुत आसानी हुई। तो इंजीनियरिंग कि पढ़ाई में भले ही मैं बहुत बड़ा विद्वान न रहा, लेकिन उससे बहुत सारी चीजें समझ में आई। और दूसरी बात ये कि जो आसपास के दूसरे कमेंटेटर्स होते थे ना, उन पर दबदबा रहता था कि भाई ये तो इंजीनियर हैं,
0: वाह
1: ये गलत बात नहीं करेंगे तो ये भी एक जरा एहसास रहता था मन में
0: जी,
1: कि भाई हम जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं
0: जी। आपके बचपन किशोरी युवा वाले दिनों में इंदौर क्रिकेट का एक गढ़ था, कुछ बड़े क्रिकेटर वहां से आते हैं, उनसे किस तरह का कनेक्शन रहा या देखना रहा उनको?
1: नहीं बिल्कुल ठीक है, आपने कर्नल सी के नायडू साहब, उनसे मेरी मुलाकात, पद्मभूषण, जो अकेले पद्मभूषण क्रिकेट के उस समय, पहले वाले पद्मभूषण उस समय, तो उनके घर पे भी काफी जाता था, उनके परिवार से काफी रिश्ता था, और उनका आखिरी इंटरव्यू मैंने किया था जो स्पोर्ट्स एंड पास टाइम में कवर स्टोरी के रूप में छपा था उस समय, इलस्ट्रेटेड वीकली में भी मैंने उनके बारे में लेख लिखा था, तो मैं हिंदी में लिखता था, मेरे बाबूजी जो थे वो अंग्रेजी में अनुवाद करते थे, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, अपने समय के भी काम थे, जिस गांव से वो आते थे, प्रतापगढ़ राजस्थान से, जहां मेरा जन्म हुआ, लेकिन बाद में मैं इंदौर आ गया, लेकिन वहां पर कोई अकेले बीकॉम रहे होंगे तो उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी थी कि उसका मुझ पर भी बहुत प्रभाव पड़ा, कि

0: छोटे वाक्य ग्रामेटिकली सही वाक्य, व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य। उनका हमेशा यह कहना था कि हिंदी भी अगर बोलो या लिखो तो व्याकरण की दृष्टि से सही बोलो या लिखो। ये चीज मेरे मन में गहरे तक समा गई थी और इसी कारण मैं जब भी लिखा या बोला ना, जब भी मैंने कमेंट्री भी जब की तो मैंने व्याकरण को बड़ा ध्यान रखा और इसी कारण मेरी हिंदी जो लोग कहते हैं काफी शुद्ध रही। तो अब लोग कह रहे हैं तो मैं मानता हूं कि शायद शुद्ध रही होगी
1: जी। अपने बचपन के जमाने में फिल्मों से कैसा कनेक्शन था? क्योंकि इंदौर में मुझे याद है कि मैं एक दिन सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम साहब का इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने पूरी टॉकीजों का बताया, ये यहां थी, यहां अंग्रेजी फिल्में लगती थी, यहां हिंदी फिल्में लगती थी, यहां मॉर्निंग शोज होते थे। आपका फिल्मों से कैसा?
0: नहीं, बहुत ज्यादा बहुत। मैं तो शाम को 8-9 बजे के सेकंड शो देखने ही चला जाता था।
1: गजब।
0: मतलब पिक्चर तो एक आदत की तरह हो गया था कि कोई भी, याद बाद में जब शादी हो गई तब भी पत्नी को भी काफी शौक था फिल्मों के प्रति। तो हम लोग शाम पढ़ते ही हमारे कदम ऐसा लगता था कहीं जाकर देखें, ज्योति टाकेज या प्रकाश टाकेज या फिर एलोरा टाकेज, जहां अब तो रहे नहीं टाकेज, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन गई हैं, लेकिन वहां जाकर फिल्में देखने का बहुत शौक रहा। और सलीम साहब से तो मेरी मुलाकात भी हुई
1: जी।
0: कई बार मुलाकात हुई, एक इंदौर में एक समारोह में साथ में मिले थे और मुझे बहुत बहुत जीवंत व्यक्ति। जावेद साहब से तो मुलाकात नहीं हुई लेकिन सलीम साहब से जरूर मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई। और एक बार मुंबई शहर में भी करसन घावरी साहब के बड़े मित्र हैं जो पुराने क्रिकेटर हैं, तो जब एक बार कमेंट्री के लिए आए तो घावरी साहब ने कहा कि यार अपन लोग बैठते हैं, सलीम साहब भी याद कर रहे हैं, इंदौर का लड़का कमेंट्री करने के लिए आया है। तो सलीम साहब के तो और क्या दिलकश आदमी,
1: वाह,
0: मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि कोई इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। और बिल्कुल उसी तरह से कि हमारे साथ बैठकर उन्होंने गाने भी गाए,
1: वाह वाह,
0: और क्या आवाज उनकी, बिल्कुल लंबा खींचते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता कहीं गला फटता ही नहीं है उनका
1: जी।
0: वो दुनिया के रखवाले वाला गाना उन्होंने सुनाया था, तो वो कितना उसमें लंबी खींच जो आती है ना तान, वो पूरा उन्होंने वैसा का वैसा सुनाया।
1: तो दो इंदौरी लोग मिल गए थे,
0: बहुत मजा आया। और मुझे लगता है कि इंदौरी लोग जब भी मिलते हैं ना आपस में, मालवा के लोग, इंदौर भोपाल के लोग, तो जब भी
1: आप मुझे शामिल कर रहे हो
0: तो बड़ा मजा आता है। ऐसा लगता है कि कोई घर के लोग
1: जी
0: मिल गए और इनके साथ खूब बात करनी चाहिए और ऐसी भाइयों की एक बढ़ोतरी हो गई है भाइयों में।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो सलीम साहब से ये जो मुलाकात का आपने जिक्र किया, इस मुलाकात की याद के नाम वो दुनिया के रखवाले सुनते हैं।

0: सुशील जी, बहुत आनंद आ रहा है आपके बचपन के गलियारों में हम घूम रहे हैं। एक चीज जो मुझे हमेशा लगती रही, आप एक बहुत नामी क्रिकेट कमेंटर रहे और हिंदी क्रिकेट कमेंट्री के संस्कार जैसे बुनियाद आपने गढ़ी है। आपने स्वयं कितना क्रिकेट खेला है ये जानना मेरे लिए बहुत दिलचस्प।
1: देखिए, स्कूल में टीम में था, स्कूल में जाकर क्रिकेट खेलता था। वैष्णव हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा हूं इंदौर में, वहां जाकर खेलता था। और उस समय गरीबी के दिन थे, मैं बार बार बताना चाहता हूं कि क्रिकेट का बल्ला खरीदने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इतना शौक था कि क्रिकेट खेला। इतना समझ में आया कि जब मिड ऑफ की जगह मिड ऑन पर गेंद जाती है तो होता क्या है, बल्ला जो बल्ले का हैंडल हाथ में घूम जाता है, इस कारण मिड ऑफ का मिड ऑन में जाता है। तो ये तमाम चीजों की समझ जब आप थोड़ा बहुत खेलते हैं ना तो आपको समझ में आता है।
0: यस,
1: तो ये जरूरी है कि आप थोड़ा बहुत खेले। ऐसा नहीं होता, सब कुछ सैद्धांतिक रूप से काम नहीं होता है इसमें, थोड़ा महसूस करते भी आना चाहिए कि कोई चीज कितनी मुश्किल या कितनी सरल क्यों होती है। तो ये एक फायदा हुआ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि ये रॉकेट साइंस नहीं है। क्रिकेट का खेल जो है ना, ये एक, अगर आप इंजीनियर हैं, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, हाई डिग्री ऑफ कॉमन सेंस अगर आप में है या क्रिकेटिंग सेंस आप में है, तो फिर आप इस खेल की बारीकियों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आजकल के कई क्रिकेटर्स ये बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास भाषा नहीं रहती, वो कॉमेंट्री करते हैं तो वो कहने की कोशिश

0: करते हैं कि साहब क्रिकेट तो हमको ही आता है, ये सब जो है ना बाकी के लोग, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं इसलिए उनको पता नहीं कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, एक बहुत मामूली विज्ञान है जो अगर आप क्रिकेटिंग सेंस है तो आप उसको समझ सकते हैं।
1: जी,
0: तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूं कि भाई आप अपनी विधा पर ध्यान दीजिए और साथ ही भाषा पर भी ध्यान दीजिए, और ऐसा मत करिए कि हिंदी में बोल रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं। अरे भाई देश की भाषा है, अगर आप बोल रहे हैं तो वो एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आपकी खुद की भाषा है, इसको सही बोलिए। और सबसे बड़ी बात, व्याकरण की दृष्टि से सही बोलिए। क्रिकेट खेली नहीं जाती, क्रिकेट खेला जाता है। विकेट गीली नहीं होती, पिच गीला होता है। तो ये तमाम चीजें अगर आप सही ढंग से नहीं बोलेंगे तो देश की भाषा खराब होती है। और मैं तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी ये कहता हूं कि भाई आपने देश के क्रिकेट की बागडोर या उसके राइट्स, आपने अधिकार बेचे हैं, भाषा को खराब करने के अधिकार नहीं बेचे हैं। तो ये देश की भाषा के प्रति उनको भी ध्यान रखना चाहिए। कोई विदेशी चैनल से इसका मतलब ये नहीं है कि देश की भाषा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखें। और क्रिकेटर्स का तो बड़ा स्वागत है, अगर वो क्रिकेट कमेंट्री के क्षेत्र में उभर रहे हैं या आ रहे हैं तो मैं तो चाहता हूं कि, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं मालूम रहती वो बता सकते हैं, जैसे ड्रेसिंग रूम में क्या वातावरण चल रहा होगा, कप्तान क्या सोच रहा होगा, तीन स्लिपर एक गली रखे थे, शॉर्ट थर्ड मैन क्यों रखा है, शॉर्ट फाइन लेग का फील्डर अंदर रखा है तो बॉलर को लेग साइड में बॉलिंग नहीं करनी चाहिए अन्यथा चौका हो जाएगा। ये तमाम चीजें हमसे पहले वो समझते हैं, तो अपनी समझ को बरकरार रखें, लेकिन साथ ही भाषा के प्रति अन्याय नहीं करना चाहिए। देश की भाषा खराब करने का, ये नहीं समझे कि हिंदी भी कोई भाषा है क्या, कुछ भी बोल लेंगे चल जाएगा। क्योंकि अंग्रेजी में कभी आपने सुना है कि आई इज गोइंग,
1: नहीं नहीं,
0: या फिर दे इज कमिंग, तो आप कितने भी बड़े आदमी हो लोग आपको सहन नहीं करेंगे। लेकिन हिंदी में हर तरह की भाषा चल रही है, तो ये ठीक सहन नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूं कि जो इसको सहन कर रहे हैं ना उनका भी अपराध उतना ही बड़ा है, क्योंकि गलत चीज को और खास करके भाषा के साथ अन्याय को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही, आपने बहुत बड़ी और जरूरी बात कही है। अब मैं उस जगह पर आ रहा हूं जहां पहली बार हिंदी में कमेंट्री की परंपरा शुरू होने का ऐलान होता है और सुशील जी उस रास्ते पर बढ़ने की कोशिश करते हैं।
0: नहीं, सच बात है, आपने तो भावुक कर दिया। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में चौथे साल में पढ़ता था
1: जी,
0: और उस समय खबर आई कि पहली बार हर जगह से हिंदी कमेंट्री जरूरी है, और तब रणजी ट्रॉफी मैचों की भी हिंदी कमेंट्री, मध्य प्रदेश और राजस्थान का मैच था और 15 दिन पहले कहीं से घोषणा हुई कि वो हिंदी में कमेंट्री होनी है। बड़ी ढूंढ मचाई, सबने कहा कि बेवकूफी की बात है, हिंदी जो FPS सिस्टम का खेल 22 यार्ड से जो शुरू होता है उसमें हिंदी का क्या काम। तो लोगों ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता, तो मैं पहुंच गया वहां पर स्टेशन डायरेक्टर के पास कि
1: आकाशवाणी इंदौर
0: में, हाँ मैं समझिए कि ये मामूली रहन सहन था, और मैं वहां पहुंचकर मैंने स्टेशन डायरेक्टर कहा कि मैं हिंदी में कमेंट्री कर सकता हूं और आप मुझे मौका दीजिए। तो उन्होंने मुझे देखा, मुझे याद है उनकी मुस्कुराहट अभी भी याद है
1: जी,
0: उन्होंने कहा कि बॉय सिंपली गेट आउट, क्योंकि पुट ऑन सम ग्रे हेयर्स एंड देन कम। और उनका सोच बिल्कुल सही था, उस समय कमेंटेटर्स 50 55 60 साल के होते थे
1: और आप 18 के थे।
0: मैं 18 साल का था, तो तजुर्बे का थोड़ा लेकर तो आइए ज्ञान, उसके बाद फिर बात करिए। तो वो ठीक कर रहे थे, उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। मुझे अपमानजनक भी नहीं लगा, क्योंकि आदत थी, गरीब थे तो शायद अपमान की आदत थी, तो वापस चले गए, कोई बात नहीं, टहलते हुए वापस आ गए। फिर वो दिन आ गया जिस दिन कमेंट्री होनी थी, कोई मिला ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक पागल सा लड़का आया था जो कमेंट्री करने की कोशिश कर रहा था, उसको बुलाकर पूछते क्या वो कर सकता है। तो मुझे ढूंढकर फिर बुलाया, तो मैं गया वहां पर और उन्होंने कहा इमेजिनरी कमेंट्री करके बताइए जरा। अब मैं तो धारा प्रवाह अंग्रेजी में करता ही था, तो मैंने कहा किसकी शैली में बताऊं, जॉन ऑर्नॉट की शैली में बताऊं, एलन मिगलबरी की शैली में बताऊं या ब्रायन जॉनसन की शैली में बताऊं। तो बोले अच्छा करके तो बताइए। तो मैंने अंग्रेजी में तीनों अलग अलग तरह की शैली में कमेंट्री करके बताई है। वो लोग इतने प्रभावित हुए, यार क्या गजब कमेंट्री करते हो तुम तो, लेकिन एक काम करो कि हमें तो हिंदी में कमेंट्री करनी है। अब मैं तो इसके लिए तैयार नहीं था, मुझे पता नहीं था, तो मैंने हिंदी में कुछ करने की कोशिश की, अच्छी नहीं की होगी निश्चित रूप से, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था, किसी की सुनी ही नहीं थी कभी, अच्छा हुआ नहीं सुनी थी, अगर सुनता

0: तो शायद किसी की नकल करता, क्योंकि इतना बुद्धिमान तो था नहीं मैं, कोई नकल करने को मिल जाती तो नकल करता मैं। लेकिन जब नकल करने को नहीं मिली तो फिर अकल लगानी पड़ी।
1: क्या बात।
0: तो उसमें यह हुआ कि फिर कमेंट्री की और उन्होंने कहा कि नहीं ये चलो चला तो लेगा ये लड़का काम। तो मैं कमेंट्री की और कमेंट्री की तो ये समझिए कि खाली प्याले में एक तूफान सा आ गया। लोगों ने कहा कि ये तो क्रिकेट की हत्या हो गई। किसी ने कहा कि ये जिंदगी भर कमेंट्री सीखें तो भी कमेंटेटर नहीं बन सकते। और मैं उन्हें दोष नहीं देता, शायद अच्छी नहीं की होगी निश्चित रूप से, क्योंकि एक तो उम्र भी कम थी और परिपक्वता भी नहीं थी। लेकिन कुछ था जो स्टेशन डायरेक्टर को प्रभावित कर गया, उसकी बात मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जब ये हुआ ना, इतनी ज्यादा आलोचना हुई, तो पिताजी नाराज हो गए कि देखिए अपने पास पैसा तो है नहीं और अब तुम नाम के बजाय बदनामी ज्यादा मोल ले रहे हो, या तो गंभीरता से काम करो और सोचो अच्छा काम करो, क्रिकेटर करता क्या है उसके व्यवहार की तरफ दृष्टि डालो, उसके हाव भाव, उसका चाल चाल कैसी चलती, क्या करता है स्ट्रोक खेलते वक्त, ये सब सोच के फिर हिंदी में सोचो, अंग्रेजी में सोचना बंद करो, अंग्रेजी कमेंट्री का भूत अपने सिर से निकालो, और फिर अगर करना हो दिल से महसूस करके दिलों को छूने की कोशिश करो। जब उन्होंने ये कहा तो फिर मैंने सोचा कि जैसे स्क्वायर कट करता है तो क्या करता है खिलाड़ी। मैंने सोचा कि पहले शॉर्ट पिच गेंद आती है, ऑफ स्टंप के बाहर आती है, बल्लेबाज अपने आप को गेंद की लाइन से अलग करता है, स्ट्रोक के लिए जगह बनाता है और फिर स्क्वायर कट कर देता है चार रन के लिए।
1: वाह वाह।
0: ऐसा जब सोचा ना तो मैंने देखा कि ये तो एक वाक्य भी बन गया,
1: रिदम आया,
0: शैली भी बन गई। शैली मतलब जो कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह की शैली बन जाएगी। आज मैं चार वाक्य बोलता हूं लोगों को पता चल जाता है कि कमेंटेटर कौन है ये। तो ये जो पहचान बनी ना, इस कारण बनी कि हिंदी में मौलिक रूप से मैंने सोचना शुरू किया। और इसका ही फल है कि आज हिंदी में जितनी भी भाषा, जितनी शब्दावली बहुत सारी जो चल रही है, जैसे कि कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी के लिए मैं शंका का गलियारा मैं कहता था कि किसी ने भी कभी सोचा नहीं था।
1: बिल्कुल।
0: कई इस तरह के शब्द जैसे अपनी नजरों के ठीक नीचे खेल रहे हैं, तकनीकी शब्द लेकिन बिल्कुल सरल हिंदी में, तो बिल्कुल तकनीकी रूप से बिल्कुल सही खेल रहे हैं, नजरों के ठीक नीचे खेल रहे हैं। तो ये जो सिर बिल्कुल स्थिर रख रहे हैं जब खेलते हैं, ड्राइव करते हैं,
1: सीमा
0: तो तमाम चीजें, ये सब तकनीकी चीजें हिंदी में कभी थी नहीं।
1: आपने सीमा रेखा जैसा शब्द भी गढ़ा।
0: क्यों याद दिलाते हैं। मेरी पत्नी का नाम रेखा है।
1: अच्छा।
0: तो क्रिकेट में तो उनकी इतनी ज्यादा दिलचस्पी रही नहीं। लेकिन वो क्या हुआ कि मैंने सोचा कि पहले मैं बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए ऐसा बोलता था। मैंने सोचा कि बाउंड्री लाइन भी क्यों बोलूं। सीमा रेखा, इसका हिंदी में अनुवाद करो, सीमा रेखा के बाहर चार रन के। ये जब बोला तो पत्नी ने आड़े हाथों ले लिया घर में आते ही।
1: अच्छा।
0: बोले रेखा तो मैं हूं, ये सीमा कौन है।
1: क्या बात है, शानदार बात है। यहां ना एक गाने की जगह बन रही है, पर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, गाना थोड़ा आगे करेंगे, लेकिन एक दिलचस्प चीज मुझे समझ में आई कि आपने अंग्रेजी में कमेंट्री करके सुनाई थी, मैं वो थोड़ा सा सुनना चाहता हूं।
0: अब क्या आप वो इमेजिनरी कमेंट्री करते थे कि
1: जी जी, तो किसकी शैली में है वो भी बताइएगा।
0: नहीं, जॉन ऑर्लेट बोलते थे जैसे कि फ्रेडी ट्रूमन कमिंग इन फ्रॉम द वेक्सल एंड कम्स इन एंड बोल्स टू सुनील गावस्कर एंड गावस्कर फॉरवर्ड डिफेंसिवली बैक टू द बॉलर नो रन।
1: वाह, क्या ग्रेन्स। और वो जो रिदम है ना इस कमेंट्री का, ये टिपिकल अंग्रेजी रिदम है, इसको आपने नहीं अपनाया था। और इसकी बात आगे करते हैं, यहां गाना लेके आता हूं, इम्तिहान फिल्म का गाना जो आपकी जिंदगी से मेल खाता है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, सुंदर गाने की जगह बनी।

0: मैं वो बात कर रहा था कि अंग्रेजी कमेंट्री का एक माइलस्टोन तय था, एक पैमाना तय था कि ये ऐसी होती है। हिंदी कमेंट्री का आप अपना एक संसार रच रहे थे, वहां किस तरह की चुनौतियां आपके सामने थी?
1: नहीं देखिए, बहुत बड़ी चुनौतियां। एक तो कारण ये कि बहुत बड़ा वर्ग आपको सुन रहा है,
0: जी
1: 70% आबादी के प्रति आप जिम्मेदार हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी, राज सिंह डूंगरपुर ने मुझे बात बताई थी कि कभी भी कोई गलती करो ना, ये मत सोचो कि रेडियो कमेंट्री है, किसने देखा कि क्या हुआ था। आप अगर गलत भी कुछ बोल दिया तो उस पर टिके रहो, लोग ऐसा कहते हैं, कई हिंदी कमेंटेटर ऐसा सोचते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी को समझो कि आप ईमानदारी से बात करो, कि अगर लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी सत्य की इतनी ज्यादा है कि आप गलती करो तो विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो। एक किस्सा है, कानपुर टेस्ट मैच में मुझे याद है कि प्रणव रॉय बोल्ड हो गए थे, क्लीन बोल्ड हो गए थे एक गेंद पर, और किसी कमेंटेटर ने कहा कि ऑफ स्टंप से मिडिल स्टंप की तरफ गेंद आई। तो मैंने कहा कि राजभाई, वो मुझे लगता है कि मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ आई और बैट के बाहरी किनारे को भी छोड़ती हुई ऑफ स्टंप उड़ गया था। तो बोले यार चलो, राज सिंह जी ने तो वो बोला नहीं था, किसी तीसरे ही कमेंटेटर ने कहा था। लेकिन उन्होंने कहा एक काम करते हैं, लंच के समय अपन प्रणव रॉय से ही पूछते हैं कि क्या हुआ था। तो हम लोग लंच के समय गए। राज सिंह जी कितने बड़े आदमी थे, देखिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट भी रहे। तो वहां जाकर प्रणव रॉय से पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ बाहर की तरफ निकल गई थी।
0: गजब।
1: तो देखिए, उस कमेंटेटर ने क्षमा नहीं मांगी, लेकिन राज सिंह डूंगरपुर ने ऑन बिहाफ ऑफ द कमेंट्री टीम उन्होंने कहा कि हम क्षमा चाहते हैं, हमसे ये गलती हो गई थी कि हम अंदर की तरफ आई और बैट और पैड के बीच में निकली, ऐसा हमने कहा था, लेकिन गेंद दरअसल बाहर की तरफ निकली,
0: उल्टा हुआ था।
1: हाँ, तो सत्य के प्रति उनकी जो आस्था थी वो मेरे दिल में घर कर गई
0: जी।
1: आज भी मुझसे कुछ गलती होती है तो मैं तुरंत स्वीकार कर लेता हूं, और सच मानिए लोगों को ये बात पसंद आती है
0: बिल्कुल,
1: कि आप अगर विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो, क्योंकि आपकी इच्छा तो झूठ बोलने की है नहीं, आपसे कोई गलती हुई, आप भी तो इंसान है ना, बैट्समैन से गलती हुई तो वो आउट हो जाता है, अंपायर से गलती हुई तो गलत आउट दे देता है, आप भी तो आखिर इंसान है, आपसे गलती हो सकती है, आप विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो।
0: क्या बात है।

0: पिछला बहुत ही बड़ा मैच जिसकी कमेंट्री करने का आपको मौका मिला था, वो यादें हमारे साथ बांटिए।
1: नहीं, 1972-73 का जो मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ,
0: ब्रेबोर्न
1: स्टेडियम, तो वो तो मैं भूल नहीं सकता कि हमारे सामने ऋषि कपूर बैठे हुए थे, डिंपल कापड़िया, उस समय बॉबी फिल्म साइन ही की थी, तब तक फिल्म आई भी नहीं थी,
0: जी
1: दोनों दिख रहे, विनोद खन्ना को हमने देखा, फिर सामने बैठे थे डेविड, बिल्कुल गंजे
0: डेविड अब्राहम,
1: तो डेविड वो अपनी भीड़ के साथ नारे लगा रहे थे भारत माता की जय, और मतलब अद्भुत दृश्य था। विनोद खन्ना को देखा हमने कि अपने मतलब इतने आकर्षक ये लोग, कि अब मैं भी छोटा था ना, 24-25 साल का ही था, तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती थी, पहला टेस्ट मैच करता था, और सच मानिए मुझे पता ही नहीं था कि मैं अच्छा कमेंटेटर हूं या नहीं, मुझे लग रहा है कि मौका मिल रहा है कर लीजिए, तो कोई एक सपना था कि अच्छे काम की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं माता पिता की सलाह से, तो उस काम की तरफ बढ़ गए, तो ये वो एक पहला मौका, बहुत बड़ा मौका था। और कुछ गलतियां मैं करता था, जैसे 39 जैसे मालवा के लोग बोलते हैं ना,
0: जी
1: है ना, 69 को, तो वो शुरू में गलतियां होती थी, लोगों ने काफी प्रताड़ित भी किया फिर उसको, लेकिन सीखने की, देखिए हमेशा मैंने ये रखा कि सीखने की इच्छा रखी, गलतियां की तो सीखने की इच्छा रखो, कम उम्र थी, सीखने का मौका मिला, लेकिन धारा प्रवाह कमेंट्री करता था
0: जी,
1: और धारा प्रवाह तो कई बार मेरी पत्नी से लोग, उनकी सहेलियां पूछती हैं कि इतना धारा प्रवाह ये कमेंट्री करते हैं तो क्या आपके सामने भी बोल पाते हैं, उन्होंने कहा बेचारे बोल पाते होते तो वहां पर इतनी धारा प्रवाह कमेंट्री करने की जरूरत क्या पड़ती है। तो ये धारा प्रवाह का सिलसिला चलता रहा, तो एक रिदम था, सही शब्द सही जगह,
0: बिल्कुल
1: क्रिकेट कमेंट्री में सबसे बड़ी बात सही शब्द सही जगह, तो चूंकि इसमें साहित्य बहुत काम आता है,
0: बिल्कुल,
1: आजकल के क्रिकेटर्स के साथ दिक्कत यह है कि साहित्य नहीं पढ़ते हैं, पढ़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो रोमन लिपि पढ़ते हैं उनको पता नहीं, हिंदी साहित्य तो पढ़ते ही नहीं है अधिकांश, उसमें 90% लोग जो आज कमेंट्री कर रहे हैं
0: जी,
1: टेस्ट क्रिकेटर्स जो कर रहे हैं उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हिंदी पढ़े भाई,
0: बिल्कुल,
1: साहित्य पढ़ते हैं तो आपको क्या होता है कि संवेदनशीलता आती है, संतुलन की भाषा, संतुलन तो आप कैसे आएगा, जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, सहवाग की सबसे बड़ी बात क्या थी कि संतुलन, बॉडी बैलेंस, तो ये संतुलन कमेंट्री में भी बहुत होता, संतुलन कैसे आएगा, निष्पक्ष कमेंट्री कैसे आएगी, आज हम देखते हैं कि पक्षपातपूर्ण कमेंट्री होती है, भारत ऐसा कर देगा तो अच्छा हो जाएगा, भाई आप निष्पक्ष कमेंट्री के लिए बैठे हो,
0: बिल्कुल,
1: ऋषि बेनो ने भी कहा है कि आप निष्पक्षता बरती है, कमेंट्री हमेशा निष्पक्षता का काम है, आप किसी पक्ष के नहीं है, तो ये एक बात समझने की है,
0: बिल्कुल। बहुत मजा आ रहा है आपसे बातें करके सुशील दोषी जी, और अब मुझे लगता है कि ड्रिंक्स ट्रॉली जैसे आती है ना क्रिकेट में, वैसे यहां पर गाना आएगा ऐसा।

जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग आज आपने सुना मैटिनी शो कार्यक्रम में। सुशील जी से बातों का ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। अगले हफ्ते यानी 8 अगस्त को इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, तो जरूर सुनिएगा मैटिनी शो 8 अगस्त को दिन में 11 बजे। आपको बता दें इस कार्यक्रम के लिए संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कामले की। मिलेंगे अगले हफ्ते, इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

की धड़कन। यादों की महफिल इस कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

सुमन कल्याणपुर और सखियों को आपने सुना फिल्म पूर्णिमा में। भरत व्यास के बोलों को सुर में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन की बनाई तर्ज थी, फिल्म थी दिल एक मंदिर।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है,
5: अपनी आप
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
6: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
6: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
6: प्यार का राग सुनो रे,
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
6: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

लता मंगेशकर और साथियों को आप सुन रहे थे। शैलेंद्र का लिखा गीत था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी, फिल्म थी दिल अपना और प्रीत पराई। आज कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं श्रोताओं अभिनेत्री मीना कुमारी पर फिल्माए गए गीतों को।

0: की कहानी सुनानी।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी।
0: प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
2: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
2: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

चुप रहूंगी इस फिल्म का गीत था लता मंगेशकर मोहम्मद रफी का गाया, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था। यादों की महफिल कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, विविध भारती की सुर लहरियों पर आपके रेडियो सेट पर जब ये कार्यक्रम शुरू होता है तो हम लेकर आते हैं बहुत से ऐसे नगमे जो आपके दिल में समाये हुए हैं। तो आज भी कुछ ऐसे ही नगमे हैं। वैसे हमारे श्रोताओं ने फेसबुक पर इबारत पढ़ी है और वो समझ ही चुके हैं कि आज इस कार्यक्रम में किस हसीन नाज़नीन और मशहूर अभिनेत्री के गीत हमने शामिल किए हैं। ये इबारत जो आज हमने पोस्ट की है फेसबुक पर, आपके लिए एक बार फिर से पढ़ देते हैं। उनका आना था, मौसम आशिकाना हो गया, हुस्न का वो नाज़ो अंदाज़ देख चांद जाने कहाँ खो गया, कुदरत ने न जाने कहाँ से छिलकाई ये बदरिया, सौंदर्य ऐसा जैसे सावन के मौसम की रात, नगमा और शेर से छलकते हुए जज्बात उस महज़बीन के, नरगिस के फूल सी जैसी आंखें, फिर प्यार हो जाए तो हम क्या करें, दो सितारों ने कहा ये कौन हुस्न परी आई है जिसने तन मन की सुदबुद को बेगाना कर दिया, वक्त आज भी वहीं ठहरा है खामोशी में, कभी धड़कनों में कभी दुआओं में तेरा इंतजार रहता है, गुलों में रंग भरे जब बाद नौबहार चले, चांद चमके खुदा करे उस रोज तू आए। तो श्रोताओं, आज बात है एक नाज़नीन चेहरे की जो जब भारतीय सिनेमा के रुपहले पर्दे पर नजर आता तो लोग देखते ही रह जाते। ये थी अभिनेत्री मीना कुमारी, जिन्होंने अपने अभिनय के फन से सबके दिलों में एक ऐसी जगह बनाई जो उनकी याद से कभी खाली न हुआ। मीना कुमारी की याद को आज भी दिल कहीं ढूंढता है। आज उनकी जन्म जयंती है। उनकी फिल्मों के चंद नगमे हमने सुरीला सफर कार्यक्रम में लिए हैं और इन्हीं नगमों से इस कार्यक्रम को आज सजाया है। तो बताइए कि फिल्मों में आपको मीना कुमारी की अदायगी कैसी लगती थी, उनकी फिल्मों की कौन सी यादें हैं जो आपके साथ आज भी हैं, उन पर फिल्माया गया कौन सा प्यारा सा गीत है जो आपको आज भी बहुत पसंद आता है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर हम सभी श्रोताओं का। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार और आपको बताना है इस गीत के संगीतकार।

ये परिंदों की आवाज और ये कौन सी खास जगह है श्रोताओं, जहां मीना कुमारी पर ये गीत फिल्माया गया, यानी स्क्रीन पर जो दिखाई देता है वो आपको बताना है। और फिल्म पाकीजा का ये गीत था, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, गुलाम मोहम्मद की तर्ज थी। तो फिल्म पाकीजा जो थी वो अपने डायलॉग्स के लिए भी बहुत जानी जाती थी। इस फिल्म का कौन सा डायलॉग है जो आपको बहुत पसंद आता है, ये आप अगर लिखना चाहें तो आप लिखकर भेज सकते हैं। हमारी श्रोता ने लिखा है कि आज सुरीला सफर ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी को समर्पित है। मीना कुमारी हिंदी फिल्मों की एक ऐसी महान अभिनेत्री थी जिनके अभिनय में भावात्मक गहराई और संजीदगी थी। वे अभिनेत्री होने के साथ साथ एक उम्दा शायरा और पार्श्व गायिका भी थीं। फिल्मों में उनका योगदान अमूल्य है। वे केवल एक कलाकार नहीं बल्कि एक युग थीं जिन्होंने अभिनय को भावनाओं की सच्ची अभिव्यक्ति के साथ पिरोया यानी बनाया। उनका नाम आज भी भारतीय सिनेमा में आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। और इन्होंने कुछ गीत भी अपनी पसंद के भेजे हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि आज मीना कुमारी जी के फिल्मों के गीत से सजेगी महफिल सुरीला सफर कार्यक्रम की। एक और श्रोता ने लिखा है कि अभिनेत्री मीना कुमारी जी को परिभाषित करता ये गद्यांश नजर आ रहा है जिन्होंने अभिनय को अलग आयाम से नवाजा। जी हाँ, मीना कुमारी जी की जो अदायगी थी श्रोताओं वो बहुत ही अलग थी। वैसे उन्होंने बहुत कम समय काम किया फिल्मों में, लेकिन जो सिल्वर स्क्रीन पर उनकी एक पहचान बनी वो आज भी कायम है। मीना कुमारी की जो फिल्में थी, कौन सी फिल्में आपको बहुत पसंद आती हैं और कौन सा किरदार पसंद आता है,

ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की भारत में कुछ गीतों के नगीने सजे हैं जो एक महान कलाकार की याद का दिन है। मीना कुमारी जी को शत शत नमन, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने उन्हें नमन किया है इस कार्यक्रम में अपने जो उनकी प्रतिक्रियाएं हैं उनके द्वारा। ये गीत आपको पहचानना है श्रोताओं, और बताना है इस गीत के गीतकार कौन हैं और मीना कुमारी जी के साथ कौन नजर आते हैं।

शंकर जयकिशन की तर्ज थी श्रोताओ लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये गीत आपने सुना दिल अपना और प्रीत पराही फिल्म से। आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, पहले फिल्म में गुलाम मोहम्मद साहब की तर्ज थी और इसमें शैलेंद्र की रचना थी। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि दद को अगर कभी कोई चेहरा मिला तो वो मीना कुमारी थी। उनकी आंखों की खामोशी और अभिनय की गहराई सीधे

दिल को छू जाती थी। उन्हें यूं ही ट्रेजेडी क्वीन नहीं कहा गया। शरत और सफलता के बीच भी उनके जीवन का अकेलापन उनकी शायरी और अदाकारी में साफ झलकता था। आज भी उनका नाम संवेदनाओं और दर्द की एक अमर दास्तान बनकर याद किया जाता है। लेकिन उनके आप जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखेंगे श्रोताओं, तो वो इतनी खूबसूरत नजर आती हैं मीना कुमारी के, और उनका नृत्य भी जैसा कि आपने इस गीत में भी देखा बड़ा ही खूबसूरत है। तो मीना कुमारी ठीक है ट्रेजेडी क्वीन के रूप में जानी तो जाती हैं, लेकिन उनकी जो मुस्कुराहट थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप चाहें तो जरूर लिखें इस बात को, क्योंकि वो मुस्कुराते बड़ी खूबसूरत लगती थी। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि कुछ गीत जो हैं वो समझ में आ रहे हैं, इतने गीत तो याद नहीं आ रहे फिर भी, लेकिन अब देखना है कि इनमें से कौन सा गीत हमारे जो है वो लिस्ट से मैच होता है। एक और श्रोता लिखती हैं कि इनकी फिल्में केवल देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। वो हर पीढ़ी को ये सिखाती हैं कि महान अभिनय ऊंची आवाज या भव्य दृश्यों से नहीं, बल्कि आंखों में उतर आए सच्चे एहसासों से जन्म लेता है। मीना कुमारी जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी शायरी, उनकी खामोशी और उनके अमर किरदार हमेशा ये एहसास दिलाते रहेंगे कि कुछ कलाकार समय से विदा होकर भी कभी विदा नहीं होते। और आप तो समझ ही चुके हैं कि मीना कुमारी एक मशहूर शायरा भी थी और मकबूल भी थी। तो वो किस नाम से शायरी किया करती थी? क्योंकि मीना कुमारी तो वो लिखती नहीं थी और उनका एक और नाम था, बल्कि यूं कहें कि दो नाम थे। तो ये नाम अगर आपको याद आए तो आप जरूर बताएं। एक और श्रोता लिखती हैं कि ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर वो पाकीज़ा की हसीन जिनकी अंदाज वो पाकीज़ा की हसीना जिनका अंदाज बयां दिल को छू जाता था। चांद सी उनकी सूरत और उनकी जो हर कोई जो अदा होती है, लगता नहीं कि दिल मेरा उजड़े दयार में। और कुछ फिल्मों के गीत भी इन्होंने लिखे हैं, झील सी आंखें, और उनके बारे में बहुत कुछ इन्होंने अपने शब्दों से बयां करने की कोशिश की है। इस गीत में, इस फिल्म में मीना कुमारी के जो अभिनेता हैं उनको आपको पहचानना है, यानी को स्टार।

अभिनेता सुनील दत्त के साथ ये फिल्म थी मैं चुप रहूंगी। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में राजन कृष्ण का लिखा ये गीत आपने सुना। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस फिल्म के बारे में, इस गीत के बारे में, जो इन गीतों के बारे में जो मीना कुमारी पर फिल्माया गया उसके बारे में लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं, दिल अपना और प्रीत पराये फिल्म में उनका किरदार बहुत कम बोलता है, लेकिन करुणा के मन की पीड़ा, मौन, समर्पण और त्याग उनकी आंखों से स्पष्ट झलकते हैं। बिना कुछ कहे भी राजकुमार सुशील के प्रति उनके प्रेम और समर्पण को स्क्रीन पर महसूस किया जा सकता है। जी हाँ, तो श्रोताओं, मीना कुमारी जी पर तो बहुत सारे डायलॉग हैं, आपको उन पर फिल्माया गया कौन सा डायलॉग सबसे अच्छा लगता है? एक और श्रोता ने लिखा है फिल्म के बारे में कि अजीब दास्तां है, लता मंगेशकर जी की आवाज और ऑन स्क्रीन उदासी और प्रेम की पीड़ा को अमर आवाज देता है ये गीत। इस गीत के बारे में इन्होंने लिखा है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझसे कोई ये पूछे कि मीना कुमारी जी की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, मेरा जवाब होगा मुझे उनकी सभी फिल्में बहुत अच्छी और लाजवाब लगती हैं। जी हाँ, मीना कुमारी जी ऐसी ही थी जो अपने आप में बहुत कह सकते हैं कि अलग पहचान की थी।

तुम न जाना, छुड़ा कर ये बाहें अब तुम न जाना, छुड़ा कर ये बाहें, तुम क्यों न जाने कहाँ तुम।

ये गीत आप सुन रहे थे जो मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया जिंदगी और ख्वाब फिल्म का ये गीत था और प्रदीप की ये रचना आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मीना कुमारी एक ऐसी अभिनेत्री जो अपने आप में एक भारतीय फिल्म में एक युग हैं। अभिनय में मीना कुमारी जी का कोई तोड़ नहीं था और साथ ही साथ वो एक बहुत अच्छी शायरा भी थी। उनकी मनमोहक आंखें

संवाद खासकर दर्द में डूबे तो दर्शकों के दिल में छा जाते हैं। मीना कुमारी जी अभिनेत्री यदा कदा ही उनकी तरह होती हैं। और चित्रलेखा और आरती फिल्म वगैरह के बारे में इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि जब फिल्म का प्रसिद्ध गीत चलते चलते रिकॉर्ड किया जा रहा था, तब स्टूडियो में ये गीत सुनकर मीना कुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि ये गीत सिर्फ साहिबजान का नहीं बल्कि उनके अपने दिल की गहराइयों की आवाज, और उन्होंने संगीतकार गुलाम मोहम्मद को बधाई दी। तो ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं श्रोताओं जो मीना कुमारी जी के बारे में जुड़ जाती हैं। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि पाकीज़ा मूवी का गीत जो है वो अच्छा लगता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, पूरा जीवन इसी तरह खत्म हो गया, चाहे पाकीज़ा हो या साहब बीबी और गुलाम। तो साहब बीबी और गुलाम फिल्म की कुछ यादें आपके साथ हों तो आप उसे बांट सकते हैं। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं फिल्म मैं चुप रहूंगी, मीना कुमारी हैं इसमें, सुनील दत्त हैं इसमें, और तमाम इन्होंने डिटेल लिखी है उन गीतों की, उन उस फिल्म की। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी पर आज का कार्यक्रम है और मैं बचपन से ही मीना कुमारी जी का फैन रहा हूं। तो आपने कौन कौन सी फिल्में उनकी देखी हैं, और हमने आपसे पूछा भी था कि कौन सा वो प्यारा सा डायलॉग है जो मीना कुमारी पर फिल्माया गया और आपको बहुत पसंद है और इस गीत को आपको पहचानना है।

ये आवाज आपको पहचाननी है श्रोताओं की, इस गीत को किसने गाया? नूरजहां फिल्म का ये गीत था, शकील बदायूनी का लिखा, रोशन की तरह थी। एक श्रोता लिखते हैं कि दिलीप कुमार जी को ट्रेजेडी किंग नायक के रूप में प्राप्त था, ये कह सकते हैं कि तमगा, कि मीना कुमारी जी को नायिका के रूप में प्राप्त था। जितनी आसानी से वो किसी किरदार को बखूबी निभाती थी, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। छोटी बहू, साहब बीवी और गुलाम फिल्म का दर्द उनकी भावना को जिस तरह से प्रकट करता है वो बहुत ही सराहनीय है। एक और श्रोता ने लिखा है कि कुछ चेहरे समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, कुछ चेहरे यादों की चांदनी बनकर हमेशा चमकते रहते हैं। मीना कुमारी उन्हीं विरली शख्सियतों में से एक थी। उनकी मुस्कान में मासूमियत, आंखों में अनकहे जज्बात और अदाकारी में ऐसी सच्चाई थी कि हर किरदार एक एहसास बन गया। शायद इसीलिए आज भी उनका नाम आते ही दिल में गजल सी नरमी और पुराने गीतों की मधुर गूंज उतर जाती है। अभिनेता राजकुमार के साथ मीना कुमारी की कितनी फिल्में हैं श्रोताओं? इस फिल्म में एक और मुख्य कलाकार हैं जो मीना कुमारी के साथ हैं, वो कौन है?

दिल एक मंदिर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में मीना कुमारी पर फिल्माया गया और इस फिल्म में दो कलाकार थे, राजकुमार और राजेंद्र कुमार। यही हमने आपसे पूछा था और हमारे श्रोताओं ने बताया भी है। और बतौर बाल कलाकार जो मीना कुमारी की फिल्म आई पहली, ये थी लेदर फेस। इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं ने लिखा है। बेबी मीना के नाम से प्रसिद्ध हुई वो। 1946 में बच्चों का खेल, 1952 में बैजू बावरा फिल्म थी जिसके बारे में हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि ये फिल्म ऐसी थी जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। 1953 में रिलीज हुई परिणीता, ये भी व्यावसायिक रूप से सफल थी। और बैजू बावरा फिल्म में क्या किरदार था श्रोताओ मीना कुमारी का, ये आप जरूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज मीना कुमारी जी का जन्मदिन है, उनको अभिवादन करते हुए सुरीला सफर कार्यक्रम में ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के साथ कहना चाहूंगा कि उनकी जो फिल्में थी उनमें आजाद कोहिनूर बहुत कामयाब रही। आज इन दो सितारों का जमीन पर मिलन है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि दुनिया के खूबसूरत ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी को समर्पित है कार्यक्रम। उनकी फिल्मों में संवाद, अदायगी, अभिनय और ऐसा तालमेल था कि उनकी आवाज में खास खनक और रूहानी दर्द छिपा हुआ था जो साधारण संवादों को भी असरदार बना देती थी। वो केवल मुंह से संवाद नहीं करती बोलती बल्कि उनका पूरा जो शरीर था, उनकी आंखें अर्थों का बयां करती थी। और प्रतिभा के बारे में लिखते हैं कि उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो कोई अभिनय नहीं बल्कि अपने दिल की बातों को साझा कर रही हैं। फिल्म बैजू बावरा में कौन थे मीना कुमारी के साथ?

भारत भूषण मीना कुमारी के साथ थे श्रोता, और इसकी इस फिल्म के जो गीत थे वो भी बहुत मकबूल हुए थे। वैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि मीना कुमारी की किसी एक फिल्म को अगर आप चुनना चाहें जो आपको सबसे अच्छी लगती है, तो उस फिल्म का नाम आपको बताना है जो आपको सबसे अच्छी लगती है। एक श्रोता ने लिखा है कि मीना कुमारी भले ही ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर हुई, लेकिन उनकी कॉमेडी भी बहुत अच्छी थी। तब हालांकि उन्हें कॉमिक रोल करने का बहुत कम मौका मिला। जी हाँ, मीना कुमारी कॉमेडी रोल में भी बहुत अच्छी लगती थी, और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनमें उनका किरदार बहुत ही चुलबुला है, खासकर उनकी जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में हैं। तो उनकी कलर फिल्में भी हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में भी हैं। उनकी कौन सी जो फिल्में हैं वो आपको ज्यादा अच्छी लगती हैं, यानी मीना कुमारी किन फिल्मों में ज्यादा अच्छी लगती हैं? ब्लैक एंड व्हाइट में ज्यादा सुंदर लगती हैं आपको या कलर में? और आपको कोई एक फिल्म बतानी है

कुमारी जी, बड़ी खूबसूरत लगती हैं इस गीत में, यानी इस गजल में। श्रोताओं, नगमा शेर की ये सौगात उन्होंने किसके लिए पेश की फिल्म में, ये आपको बताना है। और ये भी आपको बताना है कि मीना कुमारी की आखिरी फिल्म कौन सी थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मीना कुमारी जी को समर्पित ये कार्यक्रम उनसे जुड़ी सत्य घटना का जिक्र करना चाहूंगा, जरूरी होगी।

गया है, जिससे मीना कुमारी जी की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। बात फिल्म पाकीजा की शूटिंग के दिनों की है। मीना जी और कमाल अमरोही जी की कार का मध्य प्रदेश के शिवपुरी के जंगलों में पेट्रोल खत्म हो गया, तो कुछ इन्होंने जो है वो इनकी बातें लिखी है उस समय की, जो शायद ये वाकया इनके साथ हुआ होगा। और अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं उसमें ये बताना है आपको कि ये गीत एक और गायक की आवाज में है, ये फिल्म कौन सी है और वो आवाज कौन सी है, मीना कुमारी जी की आखिरी फिल्म कौन सी है।

फिल्म के इस गीत की झलक आपने सुनी श्रोताओ, और ये गीत किस फिल्म का है इसकी भी एक झलक आपको सुनवा देते हैं।

खूबसूरत फिल्मों के अलावा श्रोताओं, भाभी की चूड़ियां, जिंदगी और ख्वाब, प्यार का सागर, आजाद, बहाना, चिराग कहां, रोशनी कहां, यहूदी की लड़की, मिस मैरी, शारदा, फूल और पत्थर, ये और फिल्में थी।

हमारी श्रोता ने लिखा है कि साहब बीवी और गुलाम एक बहुत ही सराहनीय मार्मिक भावपूर्ण फिल्म है, जहां तक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के शौकीन लोग हैं इसे बहुत पसंद करते हैं। जहां इसमें बहुत सुंदर लगती है मीना कुमारी। सिने जगत की मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी के गीत आज शामिल थे सुरीला सफर कार्यक्रम में। श्रोताओं, आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरीला सफर ये कार्यक्रम अब यहीं सम्पन्न होता है।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। वक्त दोपहर का, बारिशों की रिमझिम इन हल्की ठंडी फुहारों के साथ साथ लीजिए। आपके रेडियो सेट पर शुरू हो रहा है प्रोग्राम। श्रोताओं, आप ही के पसंदीदा गीतों का प्रोग्राम मन चाहे गीत, तो सुनिए प्रोग्राम। देखिए कहीं आपकी पसंद का कोई गीत तो नहीं। आज सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

नहीं आना मुझे न बुलाना के मार कताना जमाना, कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मार कताना जमाना।

सावन की ठंडी ठंडी फुहारों की तरह ये गीत हैं श्रोताओं, जो बंद हैं आपकी चिट्ठियों में, और उन्हीं में से ये गीत हमने आपको सुनवाया। दो रास्ते फिल्म का ये गीत था, जो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे। इस गीत को पसंद किया मालीवेस बीड़ शहर से किशोर उबाले, मंगला उबाले, और इस गीत में आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ से। श्रोताओं, आइलर नगर केटगांव से इसी गीत को पसंद किया भाऊ साहब नवथर, अक्षय चंदन, जय कुमार चंदन, सुचिता चंदन, और बसमत रोड परवणी से रणजीत कारेगांवकर, कंचन सृष्टि, समरजीत कारेगांवकर की ये फरमाइश थी। शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, पैरी पार्वती और राधा चंद्राकर की फरमाइश आपने सुनी।

राहुल देव बर्मन की तर्ज, गुलजार के बोल, किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, फिल्म आंधी में आप सुन रहे थे ये गीत आंधी का। और बागपत उत्तर प्रदेश से इस गीत को पसंद किया संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया ने। वारुंगा फाटा जिला हिंगोली से वैष्णवी, अश्विनी, कुंडलिक और पांडु रंग की ये फरमाइश थी। श्रीकांत श्रीवास्तव, श्रीमती प्रमिला श्रीवास्तव, ये दो नाम हैं पीरनगर गाजीपुर के। और इसी गीत को सुनना चाहा बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव शशिकला, सुमेध कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल ने। और इसी गीत के लिए कानपुर उत्तर प्रदेश से फरमाइश आई अहमद और मान सिंह की, ये फरमाइश है ईदगाह कॉलोनी कानपुर उत्तर प्रदेश से। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत।

मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत की धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मोहम्मद रफी की आवाज में मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म के इस गीत को पसंद किया। न्यू मार्केट टीटी नगर भोपाल से अजय और शीतल ने और जीसीएफ स्टेट परेल लाइन से ये चिट्ठी आई है। इनके नाम हैं सुरेश राजपूत, सुमित, शानू, अभय राजपूत, मन्नत राजपूत, पुष्पा सुदेशना और निमो की ये फरमाइश है। शीतलानगर दुर्ग से शिव और भगवान चंद्राकर और नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, केरव, ज्योति रानी और गुरमंत की ये फरमाइश थी।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत मेरे हमसफर। इस फिल्म का ये गीत है लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल हैं कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।

कालीगांव जाफराबाद से इस गीत को सुनना चाहते थे श्री सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत संचित मोताला से, कुमार प्रथमेश प्रणाली कड़ा रोड से, कुमारी सानवी देशमुख की ये फरमाइश थी और कुमार सरवत देशमुख भी यहीं से, विमल निकेतन अकोले की ये फरमाइश है, महेंद्र नागेश पारस जयेश ऋषभ संयम सिद्धांत जैन और साक्षी जैन और इनके परिवार के सभी सदस्य, मछली गोदाम कौदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह उषा ऋषभ प्रियंका पूजा और रितु की फरमाइश आपने सुनी।

लेकिन हम तो जानते हैं श्रोताओं के हमारे श्रोताओं की नजरें कभी खफा नहीं हो सकती। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आपके ढेरों पत्र आए और इसी तरह से आप पत्र लिखते रहिए, हमें रहता है आपके पत्रों का इंतजार। तो मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को कार्यक्रम मन चाहे गीत से। आप सभी का कार्यक्रम के लिए सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: यह है विविध भारती।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एंटन चेखव की रूसी कहानी द प्रपोजल का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर, विवाह का प्रस्ताव। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं कामिनी कौशल, विनोद शर्मा और कमलाकर दाते। ये नाटक मधुप शर्मा के निर्देशन में विविध भारती के स्टूडियो में 1966 में रिकॉर्ड किया गया था। आइए सुने नाटक विवाह का प्रस्ताव।

0: माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ दस्तक देकर ही अंदर चला आया।
1: और हम भी तुम्हें यूं ही बाहर नहीं जाने देंगे। आओ बैठो आइवन लोमोव।
0: धन्यवाद
1: आइवन, तुमने तो हमें भुला ही दिया।
0: जी, एक उलझन के कारण मैं इधर आ नहीं पाया, इसके लिए बहुत लज्जित हूँ। लेकिन विश्वास कीजिए, आपकी याद सदा मेरे साथ रही।
1: ये तुम्हारा स्नेह है जो तुम हमें अपना समझते हो। मगर आइवन, आज खैर तो है, ये फर का नया कोट, ये रंग बिरंगी कराकली टोपी और ये सफेद दस्ताने, आज तुम जा कहाँ रहे हो?
0: जी कहीं भी तो नहीं, बात यह है कि मैं आपकी सेवा में एक प्रस्ताव लाया हूँ।
1: अच्छा,
0: अब आपसे कैसे कहूँ?
1: तो और कौन कहेगा?
0: ये भी ठीक है, और कौन कहेगा? जी मैं ही कहूँगा, मैं ही कहूँगा।

0: लूंगा, लेकिन थोड़ा पानी पिलवा दीजिए पहले मुझे।
1: अभी लो।
0: मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, डरता हूं अगर आपने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया तो मेरा क्या होगा।
1: पानी।
0: धन्यवाद।
1: अब ये मुझसे कुछ रुपया उधार मांगेगा और मैं इसे अंगूठा दिखा दूंगा।
0: देखिए, मैंने कई बार देखा है, महसूस किया है कि इस दुनिया में जितना आपको मेरा ख्याल रहता है किसी को नहीं रहता। मैं आपके इस अपार स्नेह के योग्य तो नहीं हूं।
1: आईवन, आज तो तुम्हारी बातें भी तुम्हारी पोशाक की तरह बिल्कुल नहीं है।
0: जी जी जी, ये बात नहीं है।
1: तो वो बात क्या है?
0: वो बात ये है।
1: हाँ?
0: अभी कहता हूँ।
1: कहो।
0: बस मैं कह नहीं जा रहा हूँ।
1: अच्छा,
0: जहाँ हालत तक तो आ गई है
1: तो जबान पर ले आओ।
0: अच्छा,
1: शाबाश।
0: अपनी बेटी नथालिया का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए।
1: आईवन, मेरे प्यारे आईवन, एक बार फिर कहो
0: जी,
1: कहीं मेरे कानों ने वो तो नहीं सुन लिया जो पिछले कई वर्षों से मेरे दिल में था। कहो ना आईवन।
0: फिर किस मुंह से कहूं, कहां आप इतने बड़े जमींदार और कहां मैं आपका एक पड़ोसी छोटा सा जागीरदार।
1: ऐसा न कहो आईवन, ऐसा न कहो। जो जहां है वो वहीं रहेगा, लेकिन तुम पहले मेरे गले से लग जाओ। मैंने सदा तुम्हें अपनी बेटी नितालिया की तरह चाहा। अरे, मैं अभी तक यहीं क्यों खड़ा हूं? आईवन, तुमने देखा, मारे खुशी के मैं ये भी भूल गया कि मुझे नितालिया को तुम्हारे आने की खबर करनी चाहिए।
0: तो क्या नितालिया मुझे पसंद कर लेगी?
1: क्या कहते हो आईवन, तुम जैसे स्वस्थ सुंदर और नए नए कोट पहनने वाले गुलगुले जवान को भला कौन पसंद नहीं करेगा। मैं अभी निकालिया को भेजता हूं।
0: जी। चोबोकोप चले गए, अब निताली आएगी।
1: ये क्या,
0: मैं तो सिर से बहुत कांप रहा हूं। अरे बाप, मेरा सारा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हुआ जा रहा है।
1: ये क्या,
0: मेरे होंठ कांप रहे हैं, मेरी मेरी बाहीं आंख फड़क रही है।
2: अरे, यहाँ तो आईवन लोमो विराजमान है।
0: आपको आपको आश्चर्य हुआ कुमारी नितालिया?
2: जी हाँ।
0: क्या,
2: आप पर नहीं, बाबा की बात पर।
0: बाबा की बात पर?
2: जी हाँ, बाबा बोले कोई मटर खरीदने आया है।
0: ओह।
2: और मैं जल्दी में इन मैले कपड़ों में ही यहाँ चली आई। अंदर आंगन में मटर की फलियों में से दाने निकाल रही थी।
0: जी।
2: आपके लिए कुछ खाने को लाऊं?
0: जी जी जी, जी। आप कष्ट न करें, मैंने अभी खाना खाया है। आप कृपया बैठ जाएं तो।
2: लीजिए, बैठ गई।
0: जी।
2: आज तो आप अपने घर से खूब बन ठन कर निकले हैं।
0: जी।
2: सच, इन नए कपड़ों में तो आप देखने में बहुत भले लगते हैं।
0: कुमारी नितालिया।
2: जी।
0: मेरी मेरी मेरी आपसे एक प्रार्थना है।
2: कहिए।
0: जी, मैं आज बहुत ठंड पड़ रही है,
2: आपके लिए कंबल लाऊं?
0: जी नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता था।
2: बात क्या है, आप इस तरह घबरा क्यों रही हैं?
0: देखिए कुमारी निथालिया, मैं आपके बाबा को तब से जानता हूँ जब आप अभी पैदा भी नहीं हुई थी, और ये तो आप भी जानती हैं कि आज मैं जिस जागीर का मालिक हूँ वो मुझे मेरे नाना नानी से मिली थी। मेरा मतलब है, मैं कहना ये चाहता था कि मेरे नाना नानी भी आपके बाबा को बहुत चाहते थे और आज भी हमारे घरों के आपसी संबंध बड़े अच्छे हैं। देखिए ना, आपके घर की दीवार मेरे घर की दीवार के साथ लगती है, आपके खेतों के साथ मेरे खेत हैं, आपकी सफेदा जमीन के किनारे मेरा चेरी का बगीचा खड़ा है।
2: क्षमा कीजिए
0: जी,
2: क्या वो चेरी का बगीचा आपका है?
0: जी हाँ, क्यों?
2: यूं नहीं, सोच कर बताइए।
0: आप भी कमाल करती हैं, भला इसे सोचने की कौन सी बात है? और फिर क्या मेरे सोचने पर मेरा वो बगीचा किसी दूसरे का बन जाएगा?
2: लेकिन जो बगीचा हो ही दूसरे का, वो आपका कैसे बन सकता है?
0: मैं समझा नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
2: इसलिए कि वो बगीचा हमारा है।
0: अजी, मैं चेरी को उस बगीचे का जिक्र कर रहा हूँ जो आज तक कभी हरा नहीं हुआ, जिसके एक सिरे पर आपकी सफेदा जमीन है और दूसरे सिरे पर खाई है।
2: जी हाँ, मैं भी उसी बगीचे के लिए कह रही हूँ कि वो हमारा है।
0: कमाल है, ये तो मैं आज ही सुन रहा हूँ कि वो बगीचा आपका है।
2: और मैंने भी आज पहली बार सुना कि वो आपका है।
0: लेकिन मेरे बगीचे पर आप अपना कब्जा कैसे जता सकती हैं?
2: अरे, मगर वो बगीचा आपका कब से हुआ?
0: जब से मैंने होश संभाला।
2: फिर जब से आपने होश संभाला है, आप झूठ को सच

0: समझते रहे
1: जी नहीं, आप अब सच को झूठ समझ रहे हैं। देखिए कुमारी निताली, मेरे पास ऐसे कागजात हैं जिनमें यह साफ साफ लिखा है कि मेरी नानी की दादी ने वो बागीचा आपके दादा के काश्तकारों को बिना पट्टा लिखवाए खेती करने के लिए दिया था, और आपके दादा 40 साल तक हमारी उस जमीन की कमाई खाते रहे, और फिर आप ही की तरह जब आपके दादा ने भी हमारी उस जमीन का मालिक बनने की कोशिश की तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी।
0: देखिए मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ जो मैं आपकी इस मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास कर लूं।
1: मैं जानता हूँ कुमारी निकालिया, आप इतनी बुद्धिमान भी नहीं है जो किसी दूसरे की संपत्ति पर अपना हक जताना छोड़ देंगी।
0: आइवन, इस प्रशंसा के योग्य केवल आप हैं।
1: जी
0: आपका मुंह बंद करने के लिए मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि वो सूखा सड़ा बागीचा जिसकी कीमत 300 रूबल से किसी भी हालत में ज्यादा नहीं है मैं आपको भेंट कर सकती हूँ।
1: कुमारी निकालिया, मैं आपकी उदारता का कायल हूँ, लेकिन आपको मेरी ही संपत्ति मुझे भेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। वो बगीचा तो मैं आपको भेंट कर सकता हूँ, मगर अब प्रश्न सिद्धांत का है, न्याय का है।
0: अन्याय भी ये है कि न्याय आप कर रहे हैं। 300 साल से जो बागीचा हमारे अधिकार में चला आ रहा है आज उसे आप अपना बता रहे हैं।
1: फिर वही बात, आप किसी दूसरे की सुनती भी तो नहीं है। कुमारी निकालिया, हुआ यूं था कि आपके परदादा के काश्तकारों ने मेरी नानी की दादी को मकान बनाने के लिए ईंटें पकाकर दी थी, इसलिए कुछ बख्शीश के तौर पर मेरी नानी की दादी ने उन्हें
0: फिर वही दादी की नानी, नाना के दादा। अब मैं आपसे और कितनी बार कहूं कि वो बागीचा हमारा है, हमारा
1: जी
0: है।
1: नहीं जी नहीं जी नहीं, वो मेरा है। आप सुनिए तो, वो हुआ यूं था।
0: आइवन, अगर आप लगातार 2 दिन तक इसी तरह बहस करते रहेंगे और अपने घर से एक बढ़िया कोट पहनकर आते रहेंगे तो भी ये बागीचा हमारा ही रहेगा।
1: देखा है ना सीना जोरी। कुमारी निकालिया, मैंने आज तक कभी किसी की संपत्ति पर अपना हक नहीं जताया, मैंने आज तक कभी किसी की जमीन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश नहीं की।
0: इसीलिए आप अपनी ईमानदारी का सिला हमसे वसूल करना चाहते हैं?
1: ओ, ओ, मेरे गले में कांटे उगाए हैं। ठहरिए जरा, पानी पी लूं तो बताता हूँ आपको। मैं फिर कहता हूँ कि वो बागीचा मेरा है, मेरा है।
0: ये चीख आपकी है, मगर बागीचा हमारा है।
1: जी नहीं, वो मेरा है।
0: वो बागीचा हमारा है और मैं आज ही अपने कारिंदों को वहाँ की सारी घास काटने के लिए भेजती हूँ।
1: क्या?
0: हाँ, मेरे आदमी अभी वहाँ पहुँच जाएंगे।
1: तो कान खोल कर सुन लीजिए, अगर मेरी धरती पर किसी ने कदम रखा तो मैं उसकी खाल में भूस भरवा दूंगा।
0: इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने अंजाम से वाकिफ हैं?
1: मैं कहता हूँ इन बातों में कुछ नहीं रखा। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो बागीचा मेरा है, मेरा है, मेरा है।
0: आइवन, अगर ये घर मेरा ना होता तो आप इससे भी कहीं ज्यादा ऊंची आवाज में चीख सकते थे, चिल्ला सकते थे, दहाड़ सकते थे।
1: कुमारी निकालिया, कुमारी निकालिया, अगर मुझे दिल का रोग ना होता, अगर मेरे पुट्ठों में दर्द ना होता तो आज मैं आपको बता देता कि किसी की संपत्ति पर आंख रखने का क्या परिणाम होता है। देखिए, अब भी भलाई इसी में है कि सीधी तरह से मान लीजिए कि वो बागीचा मेरा है।
0: नहीं, हमारा है।
1: जी नहीं, मेरा है।
0: हमारा है।
1: मैं कहता हूँ मेरा है।
2: जी क्या हो रहा है?
0: बाबा, आप जरा इनकी समझ में ये बिठाइए कि हमारा वो चेरी का बगीचा किसका है।
2: हमारा है और किसका?
1: आप अपनी बेटी की बोली में बोल तो रहे हैं, मगर कुछ पता भी है कि मेरी नानी की दादी ने यह बगीचा आपके दादा के काश्तकारों को थोड़ी सी मुद्दत के लिए ऐसे ही खेती करने के लिए दिया था, और फिर 40 वर्ष तक वे अपना पेट और आपके दादा का घर भरते रहे।
2: आइवन, तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि उन काश्तकारों ने तुम्हारी दादी को उस बगीचे के पट्टे की सारी रकम चुका दी थी। विश्वास न हो तो गांव के पटवारी से या तहसीलदार की कचहरी से जाकर मालूम कर लो कि उस जमीन का लगान आज तक कौन भरता रहा।
1: फिर तो आप सरकार को भी धोखा देते रहे।
2: धोखा? हाँ, अपनी जमीन का लगान तुमसे सरकारी खजाने में भरवा के हम तुम्हें अवश्य धोखा दे सकते थे,
0: लेकिन हमने ऐसा भी नहीं किया।
1: मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता कि वो बागीचा मेरा है और मेरे पास इसका सबूत है।
2: नहीं आइवन, तुम ये साबित नहीं कर सकते।
1: क्यों नहीं कर सकता?
2: आइवन, तुम इस भ्रम को अपने दिल से निकाल दो कि हम तुम्हारा वो बगीचा हड़प कर जाना चाहते हैं। और अगर तुमने यूं ही चिल्लफों मचाकर यह साबित करने की कोशिश की कि वो बगीचा तुम्हारा है तो मैं उसे तुम्हारे हवाले करने की बजाय अपने किसी काश्तकार को यूं ही दे।
1: जी हाँ, क्यों नहीं। बेटी भेंट करने की बात कहती है और बाप किसी और को दे डालने की धमकी देता है। मैं पूछता हूँ, किसी दूसरे की संपत्ति को आप इस तरह कैसे लुटा सकते हैं? क्या अधिकार है आपको?
2: ये तो मैं ही जानता हूँ मुझे अधिकार है या नहीं, लेकिन तुम अपनी जबान को काबू में रखो। मैं ऊंची आवाज सुनने का आदी नहीं।
1: तो हो जाएंगे, अब आपका वास्ता मुझसे पड़ा है।
2: आइवन, यूं ही आवेश में मत आओ।
1: वाह वाह, आप तो पड़ोसी होने के नाते मेरा बागीचा हड़प कर जाएं और मैं आवेश में भी नहीं।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, तुम चुप हो जाओ।
1: मैं तो जैसे आपके इस आदेश की प्रतीक्षा में ही था। मैं कह देता हूँ, आप मेरे पड़ोसी नहीं है, मेरे पड़ोस में रहने वाले डाकू है।
2: क्या कहा?
0: बाबा, बाबा, इन्होंने आपको डाकू कहा?
2: अब मैं इसे क्या कहूँ?
1: जो मैंने आपको कहा है आप वही अपनी बेटी से भी कहिए।
0: बाबा, आप कुछ कहने के बजाय कुछ कीजिए।
2: मैं कुछ करूँ?
0: हाँ।
2: लेकिन मैं क्या करूँ?

0: कारिंदों से कहिए कि वो बागीचे की सारी घास खोद लाए।
1: खोद लाए? कुमारी नतालिया, घास खोद लाना इतना आसान नहीं है।
2: इस बारे में आप अधिकार से बात कर सकते हैं।
1: आप मेरी यूं खिलना उड़ाइए, मैं अब इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा।
0: और जब इंसाफ होगा आप अदालत का दरवाजा तोड़ डालेंगे।
2: क्योंकि तुम इंसाफ उसे मानते हो जो इंसाफ के साथ खुद बड़ी बेइंसाफी।
1: हाँ, इसका फैसला अब अदालत में ही होगा।
2: आइवन, मैं तुम्हारी मुकदमेबाजी की लत से वाकिफ हूँ, और मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पुरखों की सारी जिंदगियां अदालतों में ही।
1: देखे, मेरे पुरखों का अपमान मत कीजिए, उनकी ईमानदारी के चर्चे आज भी लोगों की जबान पर हैं। हाँ, आप अपने चचा की ईमानदारी का डंका जरूर बजाइए, जो गबन के अपराध में आज भी जेल में आटा पीस रहे
2: हैं। तुम्हारा तो दिमाग चल गया।
0: इनके घराने में ठीक किसका था?
2: हाँ, इसका दादा संकी।
1: हाँ, दादा संकी था। आपकी माँ का भी तो ऊंट की तरह कोहान निकला हुआ था। मेरा दिल पानी।
2: अरे, तुम्हारा तो बाप पत्तेबाज था, क्रॉसवर्ड पजल भरा करता था।
0: आपकी नानी के मुंह में जबान नहीं ततैया मिर्च थी, और वह हर किसी को काटने को दौड़ती थी।
1: मेरी बही ठंक था जो निराने लगे, और आप मीठी जबान से हर किसी का गला काट रहे हैं। और दिल, और ये कौन नहीं जानता कि चुनाव से पहले मुझे कुछ नहीं सुझाई दे रहा, मेरी टोपी कहाँ है?
2: अरे तुम मक्कार, अरे भी,
1: लेकिन आपसे कोई मुकाबला नहीं है। ओ, मेरा दिल, यही टोपी, अब दरवाजा की तरह मेरी टांग सुन हो गई।
2: घसीट कर ले जाओ अपने आप को यहाँ से।
1: हाँ हाँ, जा रहा हूँ।
2: इतना और सुनते जाओ, हमारे घर फिर कभी पांव रखा तो हाथ से टांग से हाथ धो बैठोगे। हाँ,
0: और अब यहाँ से सीधे अदालत में ही जाना। हाँ,
2: चला गया कमीना कहीं का।
0: हमें इस रीच पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, इससे सदा चौकन्ना रहना चाहिए।
2: और आस्तीन के सांप का हमें सर कुचल देना चाहिए।
0: हाँ, नहीं तो ये हमारी संपत्ति पर कुंडली मार कर बैठ जाएगा।
2: निर्लज्ज का दुस्साहस तो देखो।
3: बोला, आपकी सेवा में एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ।
0: कैसा प्रस्ताव?
2: अरे, ब्याह का प्रस्ताव। कमीना, जलील, गुंडा तुम का मेरी बेटी से ब्याह करना चाहता था।
0: पहले क्यों नहीं बताया?
2: अरे, मैं क्या बताता, तुमने खुद नहीं देखा कि वो रीच का बच्चा कैसा छैला बनकर आया?
0: वो मुझसे ब्याह करना चाहते थे।
1: अरे अरे, क्या हुआ बेटी नतालिया, क्या हुआ?
0: बाबा बाबा, उन्हें बुला लाइए, अभी बुला लाइए।
1: क्या, अब उसे मैं बुलाने जाऊं?
0: हाँ बाबा, अभी जाइए, अभी जाइए बाबा। ओह, मेरा सर चकरा रहा है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है।
2: अरे मगर बेटी, अभी हमने उसे यहाँ से इतने शानदार स्वागत से निकाला, और अब वो दोबारा यहाँ आने के लिए कभी नहीं मानेगा।
0: बाबा, आप अभी जाकर उन्हें किसी भी तरह मना लाइए, मैं उनके
2: अरे बेटी नितालिया, होश में आओ, ये क्या पागलपन है? हे भगवान, अब मैं कहाँ डूबने जाऊँ?
0: इससे पहले उन्हें बुला लाइए।
2: जाता हूँ बाबा, जाता हूँ, जा रहा हूँ।
0: आज उन्होंने फर का कैसा बढ़िया कोट पहन रखा था, फिर भी हमने उनका ऐसा सम्मान किया, कौन जाने अब वो आएंगे भी या नहीं।
2: नितालिया बेटी, हेलो, अब तुम अच्छी हो जाओ, वो आ रहा है। अच्छा। कम वक्त अभी सीढ़ियों पर ही था, मगर अब मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, अब मैं तुम्हारे मामले में कभी नहीं बोलूंगा, तुम जानो और वो जाने।
0: वो कब आएंगे?
2: अरे भाई, उसके पर नहीं, पैदल आ रहा है।
0: आप उन्हें उठा कर क्यों नहीं ले आए?
2: ओ भगवान, तुम एक अच्छे भले आदमी को बेटी का बाप क्यों बना देते हो? मेरी तो मिट्टी खराब हो गई।
0: कैसे?
2: तुम्हारे कारण पहले मैंने उसे जली कटी सुनाई, उसे अपमानित किया, और फिर उसे खड़े खड़े अपने घर से बाहर निकाल दिया, और अब
0: क्या मेरे कारण?
2: और नहीं तो क्या?
0: बाबा, अब आप मेरे साथ वैसा व्यवहार ना कीजिए।
2: अच्छा बाबा, अच्छा, सारा दोष मेरा ही था। एक बेटी का बाप निर्दोष हो ही कैसे सकता है, और फिर वो भी अपनी बेटी की नजर में। लो, वो आ गया।

0: और मैं अपने कमरे में जा रहा हूं।
1: मेरा दिल बड़े शोरों से धड़क रहा है
2: और मेरे दिल को बड़ा चैन मिला है आपको यहाँ अपने पास देखकर।
1: वो बगीचा मेरा है।
2: जी हाँ, वो बगीचा सचमुच आप ही का है। आपके जाने के बाद मुझे याद आया।
1: मेरी टांगे सुन्न हो गई हैं, लेकिन वो बगीचा मेरी नानी की दादी से पहले भी हमारा था।
2: जी हाँ जी हाँ, हमसे भूल हो गई। आप कृपया क्षमा करते।
1: बात असूल की थी, सिद्धांत की थी, नहीं तो आप जाने सूखा हुआ बगीचा जो कभी हरा नहीं हुआ चीज ही क्या है।
2: आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब आप कोई और बात कीजिए।
1: वो तो ठीक है, लेकिन देखिए ना, इसके अतिरिक्त मेरे पास ऐसे कई प्रमाण पत्र हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि मेरी नानी की दादी ने आपके दादा के काश्तकारों को।
2: जाने दीजिए, मैं अपनी भूल पर पहले ही बहुत लज्जित हूँ। ये बात कैसे चलाऊं? आप शिकार खेलने के लिए कब जा रहे हैं?
1: मैं फसल की कटाई के बाद मैं मुर्गाबी का शिकार खेलने जाऊंगा, लेकिन अब मैं क्या शिकार खेलूंगा?
2: क्यों?
1: अपने डब्बू को तो आपने देख ही रखा है ना, उस बेजबान की अब टांग भी टूट गई है।
2: ये तो बहुत बुरा हुआ। मगर उसकी टांग टूट कैसे गई?
1: ठीक से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है मेरे डब्बू की टांग किसी कुत्ते ने ही तोड़ी है, क्योंकि कुत्ता कुत्ते का बैरी होता है। और मेरे डब्बू की टांग क्या टूटी, मुझे यूं लगता है जैसे मेरी ही कमर टूट गई हो। मैंने उसे बड़े लाल प्यार से पाला था और अब जब मुझे उसकी जरूरत थी वह बेचारा अपाहिज हो गया। भाग्य पर किसी का जोर नहीं चलता।
2: डब्बू आपने लिया किससे था?
1: अजी, ये पहले मेरो नोब के पास रहता था, तब ये अभी ढंग से भौंकना भी नहीं सीख पाया था कि इत्तफाक से इस पर मेरी नजर पड़ गई और मैं इस पर अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हो गया। उधर मेरो नोब इससे बिछोड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने मेरो नोब के सामने 125 रूबल का ढेर लगा दिया तो वो कुछ न कह सका।
2: 125 रूबल?
1: हाँ, आपको अचंभा हुआ?
2: जी हाँ, इतने में तो हाथी आ जाता।
1: कुमारी निथालिया, मैं इसे हाथी का बच्चा ही समझ कर लाया था।
2: तब आपने कुत्ते के नहीं अपनी समझ के दाम चुकाए थे, नहीं तो मेरे बाबा मेरे लिए कालू 50 रूबल में लाए थे। और हमारा कालू आपके डब्बू से 1000 गुना अच्छा है।
1: मुझे तो इस पर भी संदेह है कि आपको 1000 तक गिनती आती है, नहीं तो आप अपने कालू का मेरे डब्बू से कभी मुकाबला नहीं करती।
2: मुकाबला हो ही कैसे सकता है, शेर का भेड़ से क्या मुकाबला।
1: जी
2: आइवन, हमारा कालू अभी बच्चा है। एक बुरा कुत्ता बनने में उसे कुछ समय लगेगा, लेकिन अब भी हमारे सारे प्रांत में ऐसा कोई कुत्ता नहीं जो जीदारी और फुर्ती में हमारे कालू का सामना कर सके।
1: तो सुन लीजिए कुमारी नितालिया, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके कालू का जबड़ा बहुत छोटा है और ऐसे कुत्ते बच्चों की गेंद भी उठाकर नहीं ला सकते।
2: जबड़ा छोटा है?
1: जी,
2: ये बात भी मैंने आज पहली बार सुनी है।
1: विश्वास कीजिए, आपके कालू का निचला जबड़ा उसके ऊपर के जबड़े की अपेक्षा बहुत छोटा है।
2: क्या आपने उसे कभी नाप कर देखा है?
1: मैं अब नाप कर दिखा सकता हूँ, आप उससे अपनी टांग पर कटवाइए। वैसे मैं ये मानता हूँ कि ऐसे कुत्ते जिनके जबड़े छोटे होते हैं वे दौड़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन शिकार पर उनकी पकड़ अच्छी नहीं होती।
2: जरा ये भी फरमाइए, आपका वो लंगड़ा खाज का मारा डब्बू
1: जी
2: किस राजघराने में से है, किस कुल का दीपक है?
1: आपको जब जरूरत होगी तो मैं आपको उसका गोत्र तक बता दूंगा, उसकी जन्म कुंडली भी दिखा दूंगा। अभी तो इतना ही सहन कर लीजिए कि डब्बू उस किस्म का कुत्ता है जो अपने मालिक के लिए आर्थिक संकट की स्थिति में समुद्र से मोती निकाल कर ले आते हैं, और आपका वो कालू घर वालों को काटे और चोर के आने पर दुम दबा कर भागे।
2: स्वामी भक्ति की ऐसी परिभाषा केवल आप ही कर सकते हैं, मगर हमारा कालू ऐसा नहीं है।
1: ना ऐसा नहीं है तो ऐसा वैसा होगा?
2: आप होंगे। होंगे क्या, आप हैं
1: जी।
2: भला ये भी कोई बात है, पहले हमारे बगीचों को अपना बताया और अब अपने खाद मारे लंगड़े डब्बू को हमारे कालू से बढ़िया बता रहे हैं।
1: अच्छे को तो अच्छा कहा ही जाएगा।
2: लेकिन आप ऐसा कह नहीं रहे, आपका दिल मानता है कि हमारा कालू कुत्तों का बेताज बादशाह है, लेकिन आप फिर भी अपने लंगड़े की शान बघारे चले जा रहे हैं।
1: यही बात तो मैं अपने डब्बू

0: आपके बारे में भी तो कह सकता हूँ।
1: लेकिन सच क्या है?
0: आप ही कहिए, क्या आपके कुत्ते का जबड़ा छोटा नहीं?
1: कहाँ छोटा है?
0: छोटा है।
1: नहीं है, नहीं है, नहीं है। और मेरा मेरा बस चले तो मैं आपके डब्बों को कमेटी वालों से गोली लगवा।
0: और मेरा बस चले तो मैं वही गोली फिर डूबने लगाओ।
1: आपको कुत्तों के बारे में इतना ही पता नहीं है कि
0: वो मेरा दिमाग फट रहा है। अब आप चुप हो जाइए।
1: जब तक आप ये ना मानेंगे कि हमारा कलवा आपके डब्बू से हजार गुना बढ़िया है, मैं कभी चुप नहीं
0: होऊंगी। अगर यही बात है तो बेशक चिल्लाइए, चीखिए, लेकिन मैं आपके उस मरियल कुत्ते की शक्ल के मेमने को कुत्ता नहीं कहूंगा। अगर वो आपकी संगत में कुछ दिन और रह गया तो वो दिन दूर नहीं जब वो बावला हो जाएगा। ओ मेरा कंधा, मेरी आंखें, अरे गणपति, गणपति, गणपति।
1: और आपका कुत्ता तो जैसे टांग तोड़वा कर अमर हो गया है, और अब उसे कुछ होगा ही नहीं।
0: ओ मैं कहता हूँ खामोश हो जाइए, दुख से मेरा दिल फटा जा रहा है।
1: अब मैं चुप नहीं होगी।
2: अरे अरे अरे, ये फिर क्या हो रहा है?
1: बाबा बाबा, आप सच सच कहिए, हमारा कालू अच्छा है या इनका लंगड़ा?
0: पहले आप ये बताइए, आपके कालू का जबड़ा छोटा है या नहीं? पक्षपात किए बिना कहिएगा कि कालू का जबड़ा छोटा है या नहीं।
2: है, लेकिन फिर क्या हुआ पता है? हमारे कालू जैसा बढ़िया कुत्ता सारे प्रांत में नहीं।
0: मेरे डब्बू को छोड़कर आप ऐसा दावा जरूर कर सकते हैं?
2: हाँ, तुम्हारा डब्बू भी बड़ा गुणवान है। उसके कान खड़े और शरीर गठीला है, पिछली टांगे पतली लंबी सुडोल है, लेकिन उसमें दो ऐसी त्रुटियां हैं जिसके कारण उसे कुत्ता कहना एक अच्छी नस्ल के कुत्ते का अपमान कर।
0: देखिए देखिए देखिए, मुझे दिल की बीमारी है, वास्तविकता को झुटलाने की कोशिश न कीजिए। कुत्तों की वार्षिक दौड़ में मेरा डब्बू राजा साहब के कुत्ते के बराबर रहा था, और आपका वो कालू दौड़ दौड़ कर पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया।
2: तो बेचारा और क्या करता, दौड़ शुरू होने से पहले राजा साहब के कारिंदे ने उसे हंटर जो मारा था।
0: अरे काश वो उसे गोली मार देता।
2: आइवन, ये भूलो कि तुम्हें दिल की बीमारी है। हाँ। और मुझे गुस्सा बहुत आता है। और गुस्से की हालत में मैं बुरा भला बल्कि
0: आप अपने कुत्ते की हिमायत में मुझे धमका रहे हैं। अरे मेरा दिल फिर बड़ा जोर धड़कने लगा। अरे हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल,
1: हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। इस दिल से ये जंगल में शिकार खेलने जाएंगे बाबा। अजी आप, मैं कह रही हूँ रसोई घर में बैठकर मक्खियाँ मारा कीजिए।
2: मक्खियाँ उड़ाने के लिए कहो बेटी, इनका दिल बड़ा कमजोर है। आइवन, मैं तुम्हें जंगल में जाकर शिकार खेलने से रोकता नहीं। क्या पता कोई जानवर तुम्हारा शिकार बनने से पहले तुम्हें ही अपना शिकार बना डाले।
0: अरे शिकारी को जानवर अपना शिकार बना ले और जानवर को अपना शिकार मैं बना लूं, ऐसा भी हो सकता है अगर किसी रात आप मेरे साथ जंगल में शिकार खेलने चले।
2: आइवन, मुझसे ऐसी बातें कहते तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
0: जब आप मुझसे ऐसी बातें बड़े गर्व से कहते हैं तो मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए?
2: तुम्हारा तो सर भर
0: गया। हां, देरी कितनी लगती है, लेकिन कारण भी तो बताइए।
2: एक मूर्ख क्या समझे,
0: और जो स्वयं न समझ सके और दूसरों को समझा न सके उससे तो आप कुछ कहेंगे नहीं।
2: मैं कहता हूँ जहर उगलने से बात आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा।
0: आप क्या सिर फाड़ेंगे, गलियों में बच्चे तक जानते हैं। और आए, आए, आए, आए, मेरी जान, कि आपकी पत्नी भरे बाजार में आपको पीट दिया करती थी।
2: और तुम भी तो अपनी उस नौकरानी से छिपते फिरते हो।
0: मेरी टांगे, मेरी टांगे आ गई, मेरा दिल, मेरा दिल कहाँ टूट गया। डॉक्टर,
2: कमीना, बेशर्म, गधा,
1: घोड़े पर सीढ़ी लगाए और स्वयं को शिकारी कहलवाए। पापा, जरा देखिए तो इन्हें हुआ क्या है। आइवन, आइवन, बाबा आइवन चले गए।
3: क्या निताली, निताली, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? खिड़की खोल दो, खिड़की खोल दो, तो मेरा दिल फट गया। बेटी तो मेरा एक काम करो।
1: क्या बाबा?
3: मुझे मेरा पिस्तौल ला दो।
1: जाने दीजिए बाबा, अब आप मरे को क्या मारेंगे?
3: अरे बेटी, मैं पिस्तौल अपने लिए मंगवा रहा हूँ।
1: अपने लिए?
3: हाँ, मैं आत्महत्या कर लूंगा।
1: नहीं नहीं नहीं बाबा, नहीं।
3: अरे पिस्तौल नहीं तो मुझे चाकू ही ला दो, मैं अपना गला काट लूंगा।
2: ला दो ना।
3: अरे आइवन तो अभी जिंदा है। आइवन
1: जिंदा है।
3: लो लो, पानी पी लो, पानी पी लो।
2: मैं कहाँ हूँ?
4: तुम जहन्नुम

0: में हो जो तुम्हारे आने से पहले जन्नत थी। हाँ? अब तुम घर से उठ के बैठो और नितालिया से ब्याह कर लो।
1: हाँ? क्या?
0: हाँ बाबा, हाँ नितालिया ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है और वो तुम्हें बहुत चाहती है।
1: क्या सच?
0: चुप चुप। नितालिया बेटी लाओ, अपना हाथ इधर लाओ।
2: पापा।
0: आइवन
1: जी, ये लो।
0: नितालिया का हाथ मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ और अब तुम लोग मेरा पीछा छोड़ो।
1: ओ बाबा, मैं आपका किस्मत से शुक्रिया अदा करूं। बाबा मैं बिल्कुल अच्छा हो गया।
0: अच्छा?
1: जी हाँ। तो वो बात क्या थी? मुझे कुछ कुछ तो याद आ रही है।
2: मैं बता। मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
0: और मेरा भी जी का जंजाल कटा।
1: हाँ याद आ गई। ये आपको मानना पड़ेगा कि मेरा डब्बू आपके कालू से कई गुना बढ़िया है।
2: ये कई गुना घटिया है
1: जी। नहीं।

0: मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
1: और मेरा भी जी का जंजाल कटा।
2: हाँ याद आ गई, ये आपको मानना पड़ेगा कि मेरा डब्बू आपके कालू से कई गुना बढ़िया है।
0: ये कई गुना घटिया है
2: जी। नहीं,
0: ये आपको मानना पड़ेगा।
2: मैं कहता हूँ बढ़िया है।
0: मैं कहती हूँ घटिया है
2: जी। नहीं, मैं कहता हूँ बढ़िया है। मैं कहता हूँ बढ़िया है।
0: बढ़िया नहीं है, घटिया है।
2: मैं कहता हूँ बढ़िया है।
1: तुम लोग
2: जी है,
1: मैं ही यहाँ पे।

अभी आप सुन रहे थे एंटन चेखव की रूसी कहानी द प्रपोजल का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर विवाह का प्रस्ताव। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे कामिनी कौशल, विनोद शर्मा और कमलाकर दाते। ये नाटक मधुप शर्मा के निर्देशन में विविध भारती के स्टूडियो में सन 1966 में रिकॉर्ड किया गया था। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

कांवर की महिमा अपरंपार है। श्रद्धा और भक्ति सहित जो भक्त भी ओंकारेश्वर के द्वार पर आता है वो सर्व सिद्धि को प्राप्त होता है। एक समय की बात है, एक दुखियारी इस मृत्यु लोक में यातनामय जीवन व्यतीत कर रही थी। तभी एक भक्त राज ने उस दुखिया को भगवान रुद्र के चरणों में कांवर अर्पित करने के लिए प्रेरित किया। उस स्त्री ने अपने मन में कांवर चढ़ाने का दृढ़ संकल्प ले भगवान शिव के चरणों में कांवर चढ़ाई और महादेव ने प्रसन्न होकर उस स्त्री को इस नाशवान जगत के रहस्य बताकर मोक्ष का मार्ग दर्शाया।